0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनल।

और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात के साथ आशुतोष भारद्वाज। सात बजकर 2 मिनट पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ रहेंगी रेनू भट्ट। 8 बजे हिंदी में मुख्य समाचार आप सुनेंगे। 8:02 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम लेकर आपके साथ होंगे आशुतोष भारद्वाज। 9:02 पर प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने रेनू भट्ट के साथ। 10 बजे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस आप सुनेंगे और 10:02 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का हरप्रीत कौर के साथ। ग्यारह बजकर 2 मिनट पर समय रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का। कंचन रहेंगी प्रोग्राम लेकर आपके साथ। 12 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस और 12:02 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का हरप्रीत कौर के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजना की समीक्षा की। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों से सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगेय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

बिल्कुल, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम सुप्रभात। और बिल्कुल सुप्रभात में आज आपके साथ मैं हूं आशुतोष, आकाशवाणी रेनबो पर आपके साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार और नई सुबह नई उम्मीद के साथ नई सोच के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और सुबह का वक्त बहुत बहुत खूबसूरत है, हर किसी को इसका इंतजार रहता है, कल चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन हर नए दिन की शुरुआत एक हम नई एनर्जी के साथ करते हैं और नई उम्मीदों के साथ करते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही दिन है जैसा कि आपने कल्पना की थी कल के दिन में, और आज बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि आपने कल सोचा था। और आज इस सुबह पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी में लगातार होती चली जाती है। बिल्कुल आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो कि अक्सर हमारी जिंदगी में लगातार हम उससे दो चार होते हैं, लगातार होते हैं क्यों। हम बात करने वाले हैं बदलाव के बारे में। बिल्कुल बदलाव हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मौसम भी बदलता है, समय बदलता है, हमारी उम्र भी बदलती है, हमारी जिम्मेदारियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरी बात हम खुद बदल जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम बदलाव को खुशी से स्वीकार करते हैं या फिर बदलाव आते ही हमारा पहला रिएक्शन होता है, अरे ये क्या हो गया, पहले तो सब ठीक चलता था, अब इस बदलाव को मैं कैसे हैंडल करूंगा, इसको कैसे मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि हम अक्सर बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसके बाद क्या होगा, और यही अनसर्टेनिटी, यही जो अनिश्चितता होती है ना, ये हमें डरा देती है और इससे हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। और लेकिन प्रकृति को देखिए, रात बदलती है सुबह आती है ना, पतझड़ जाता है तो बसंत आ जाता है, और बीज जब मिट्टी के अंदर अपना पुराना रूप छोड़ देता है ना तो तभी एक नए पौधे का जन्म होता है। और बदलाव बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि एक अंत नहीं होता है बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत होती है, और बिल्कुल उसको आपको एक पॉजिटिव वे में लेना होगा। और आज

कुल हम कोशिश करेंगे कि बदलाव से डरना नहीं है ये सीखेंगे, और उसे समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उसे अपनी ताकत बनाना होगा। सबसे बहुत बहुत जरूरी बात है। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ सुप्रभात में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं आज के सफर को। स्टे ट्यून, बहुत खूबसूरत सुबह है, इसको एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग।

ऐसी ही चीज़ें अक्सर हमारी ज़िंदगी में हो जाती है कि हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि उनसे हम ऐसे मिल जाएंगे, हमने बिल्कुल सोचा नहीं होता, और ऐसे बदलाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और कई बार बदलाव अच्छे भी होते हैं, कई बार हमारी परिस्थितियों के अनुसार नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उसमें मोल्ड करना आना चाहिए। और बिल्कुल आज का जो विषय है बदलाव को अपनाना हमें कैसे सीखना है, बहुत आसान होता है। और कभी आपने गौर किया है कि आपके पास पुराना मोबाइल होता है और तो आप एक नया मोबाइल लेने का आप विचार करते हैं, उसका मन करता है आपको, पुरानी जगह से नई जगह घूमने का मन करता है और पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े अच्छे लगते हैं आपको। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी आदतें बदलने की, तो हम कहने लगते हैं कि नहीं, रहने दो, मैं फिलहाल ठीक हूँ, है ना, मेरा ठीक ठाक चल रहा है और जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। क्योंकि बाहरी बदलाव हमें एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अंदर वाला बदलाव हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। बिल्कुल है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना बिल्कुल हम जानते हैं कि अच्छा है, लेकिन हम नहीं करते। एक्सरसाइज करना हम जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको टाल देते हैं। और नई स्किल सीखना, और हमें पता होता है कि इससे हमारा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन हमारा मन कहता है कि छोड़ो ना यार, कल करेंगे ना, कल से शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल वो कल कई बार महीनों और सालों में बदल जाता है और कभी कभी आता भी नहीं है, है ना। और हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और वो कई बार हम भूल जाते हैं और कई सालों तक वही चीज़ चलती चली जाती है। इसलिए आज एक छोटा सा प्रयास आपको करना है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है, बिल्कुल आपको ये मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिसे बदलने की मैं लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं, वो उसके बारे में आपको सोचना होगा। हो सकता है कि कोई वो आदत हो आपकी, कोई डर हो आपका, और या फिर कोई नेगेटिव थॉट हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसे आप लगातार टालते आ रहे हैं। और आज उस बदलाव की तरफ एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी छलांग ज़रूरी नहीं होती है। छोटा कदम उठाएंगे, लगातार प्रयास करते जाएंगे, तो वो बड़ा बदलाव अपने आप आ जाएगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 2.6 पर, आशुतोष आपके साथ है। अपनी घड़ियां मिला लीजिए, अगर आप निकल चुके हैं सफर पर कहीं घूमने के लिए, 6:12 और 58 सेकंड्स। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ सुप्रभात।

बिल्कुल। और ऐसे ही तरह तरह के गुब्बारे हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हर रंग के गुब्बारे हमारी ज़िंदगी में होते हैं, और वो हम पर निर्भर करता है कि हम किसको एक्सेप्ट करते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत आसान है। और जब भी आपको कभी नेगेटिविटी की और मतलब आप जाएँ तो इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो बहुत ईजीली आप उन जो सिचुएशन है उससे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, आपको बिल्कुल अपने आप से खुद से 3 सवाल पूछने हैं जब भी आप किसी नई किसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, कि इस परिस्थिति में क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आपका कंट्रोल है उस पर, और उस सिचुएशन से आप क्या सीख सकते हैं, और बिल्कुल एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं आप उस परिस्थिति में। तो बिल्कुल ये जो 3 सवाल है ना, ये आपको शिकायतों से समाधान की ओर ले जाएंगे, और बिल्कुल आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे कुछ भी नई सिचुएशन आपके सामने आएगी तो। और कई बार हम जब नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो हम यही पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और किसी को क्यों नहीं, है ना। तो इससे अच्छा है कि आपको खुद से पूछना है कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, है ना, क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर, क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में जाएंगे और बहुत अच्छे बदलाव आप अपने आप में देखेंगे, और हर सिचुएशन को आप बहुत आसानी के साथ बिल्कुल उसको सामना कर पाएंगे उसका। और बिल्कुल बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल लेनी है। बदलाव का मतलब है कि आपको सोच में अपनी थोड़ा सा बदलाव लेके आना है, बिल्कुल अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लेके आना है, अपने व्यवहार में सुधार लाना है, अपने किसी आदत को बदलना है, या फिर किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल लेना है ना। और मान लीजिए कि आप रोज सुबह सबसे पहले मोबाइल देखते हैं उठते हैं ना, तो आज से सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को दूर रखिए और देखिए कि कैसे आप उस पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और आप देखेंगे कि कैसे अपने आप उस एक नई एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, और आप एक नई सिचुएशन में आ जाएंगे, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बिल्कुल, इतना अच्छा मौसम है, खिड़की खोलिए, ताज़ी हवा लीजिए, और 2 मिनट शांत बैठिए और ख़ुद से पूछिए कि आज बिल्कुल क्या अच्छा हो सकता है, मैं क्या कुछ अच्छा कर सकता हूँ, है ना। बस इतना सा बदलाव है आपको लेके आना है, और हो सकता है कि यही छोटा बदलाव आपकी पूरी सुबह का मूड बदल दे, और आप एक बिल्कुल रिफ्रेशिंग सुबह का एक वेलकम करें। और आज बिल्कुल आप हमेशा किसी समस्या के बारे में अगर सोचते रहते हैं, तो आज से उस समस्या के साथ एक सोल्यूशन भी साथ में लिखिए, उसको सोचिए और उसको एक अच्छे निर्णायक मोड़ पर लेके आइए। और आप खुद से जो किसी और के जो करते हैं ना कंपैरिजन करते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती हम कर लेते हैं, है ना। और बिल्कुल ये सोचिए कि अपने आपने खुद कल में कितनी बेहतरी कर दी, जो कल आप थे और आज आप हैं उसमें कितनी बेहतरी आप कर कर लेकर आ चुके हैं अब तक। तो हर गलती आपके खिलाफ सबूत नहीं होती है, लेकिन कुछ गलतियां आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं, और इन्हीं अनुभवों को लेकर आपको आगे चलना है। और ये जो लेसन होते हैं ना लाइफ के, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।

हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं और बहुत सुकून मिलता है उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद। तो बस वही आपको फील करना है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए सुप्रभात आशुतोष के साथ।

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल आपने सही सुना, यह है आकाशवाणी रेनबो और बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं यानी कि आशुतोष, और एक बहुत ही अमेजिंग कहानी आपको सुनाने वाला हूँ अब बिल्कुल। और आप इसको सुनेंगे तो एक नया बदलाव महसूस करेंगे, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है। एक युवा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था और वो बिल्कुल अक्सर बिल्कुल थक हार के परेशान होके एक बुज़ुर्ग के पास गया और कहता था कि उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है और बिल्कुल मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरी ज़िंदगी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो जो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, फिर बोले कि अब इसको आप पी लीजिए। तो उस लड़के ने उस पानी को पिया और तुरंत बोला, ये तो बहुत खारा है। तो बुज़ुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए अब हम आपको एक झील के पास लिए चलते हैं। तो वहाँ पर वो दोनों गए और वहाँ पर उन्होंने उस झील में एक चम्मच नमक डाल दिया और फिर उस लड़के को कहा कि अब इस पानी को पियो। तो जब उस लड़के ने उस पानी को पिया तो कहा कि इसका स्वाद तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत नॉर्मल पानी है, तो बिल्कुल भी इसमें खारापन नहीं आया। तो बुज़ुर्ग ने उसको यही बात बहुत गहराई से समझाई कि समस्या नमक में नहीं थी, पानी की क्षमता के अनुसार वो हमारी ज़िंदगी में घुल जाता है और उसी से हमारी ज़िंदगी में खारापन आ जाता है। और ज़िंदगी में मुश्किलें भी बिल्कुल नमक की तरह होती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने मन को कितना बड़ा बनाते हो ये तुम्हारे हाथ में है। और बिल्कुल ये बहुत बहुत अमेजिंग बात उन्होंने बताई कि समस्या हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा नज़रिया होता है ना, ज़रूर बिल्कुल उस पर हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो अगर कंट्रोल हम जिस दिन अपने ऊपर ले आते हैं ना, तो उस दिन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और वो कंट्रोल बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने अंदर रखते हैं वो, और अगर आप बिल्कुल शांत मन से एक किसी सिचुएशन को देखेंगे ना, बहुत आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। रिएक्ट एकदम से ना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा समझिए और क्यों वो परिस्थिति आई और क्या उस परिस्थिति में आप कर सकते हैं अपनी ओर से, वो आपको करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ सुप्रभात, और इस सुबह को और भी अमेजिंग बनाने की पूरी पूरी कोशिश है हमारी। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

तो पानी का रंग बिल्कुल कैसा भी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी क्लियर कट होनी चाहिए, आपको सोच के रखना है। और बिल्कुल ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी नियम आपको बनाना है अपने लिए कि ख़ुद पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कंट्रोल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मौसम बदलता रहता है लगातार, और हम बीता हुआ समय वापस नहीं लेकर आ सकते हैं, और हम हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, हर परिस्थिति को अपने इच्छा के अनुसार अपने मुताबिक नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम क्या बदल सकते हैं? अपना रिएक्शन बदल सकते हैं, अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपना रवैया और अपनी कोशिश, ये सभी हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथ में होता है, और यही पॉजिटिव माइंडसेट बिल्कुल हमें एक नई दिशा में ले जाता है, और उस जो चेंज होता है ना, उस चेंज को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी एनर्जी ख़त्म मत कीजिए, अपनी जो एनर्जी है ना उसको सेव कीजिए और अच्छे कामों में लगाइए। और बिल्कुल खुद से आप ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकते हैं कि इस लाव मैं इस चीज़ को चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके साथ कुछ ऐसा आगे बढ़ कर सकता हूँ, इसको आगे करके अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको मोल्ड कर सकता हूँ और अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकता हूँ। और कभी कभी एक्सेप्टेंस हार नहीं होती, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है वास्तविकता को स्वीकार करके आगे बढ़ जाना। तो बिल्कुल हम भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, और यही आप बिल्कुल हौसला रखते हैं कि आप भी कुछ भी चेंज होता है ना तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे और ज़िंदगी को बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बनाएंगे अपनी। पूरी पूरी उम्मीद है हमें, आपके मैसेजेस भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और बिल्कुल बहुत अमेजिंग मैसेज आपके आ रहे हैं, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी हम बहुत सारा वेलकम कर रहे हैं सुप्रभात में। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ, हमारा नंबर है 9868107070। आकाशवाणी रेनबो बिल्कुल आपके साथ जुड़ा रहता है, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी, और वेव्स ओटीटी पर भी आप हमें सुन सकते हैं लाइव, और 102.6 तो हमारी फ्रीक्वेंसी है ही, इस पर आप ट्यून इन कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, और बिल्कुल इंटरनेशनली भी हम ऐप के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड हैं। स्टे ट्यून्ड, और एक अमेजिंग गाना फिलहाल आपके लिए हम यहाँ पे एक और प्ले करने वाले हैं हमारे स्टूडियो से, बहुत ही अमेजिंग गाना है, इसको सुनिएगा और बिल्कुल ज़िंदगी के सफ़र को एंजॉय करते चले जाइए।

बिल्कुल, ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है कि कैसी है ये ज़िंदगी। तो कैसी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है ये ज़िंदगी। इसको बस आपको फ़ील करना है, और जब फील करेंगे ना इसको और इसके जो आपके अनुभव हैं उनको आप दोबारा फ्लैशबैक में जाएंगे ना, तो एक अलग ही अनुभव आपको मिलने वाला है। एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और बदलाव को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका आप सोचते होंगे कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कैसे इसको अपनाएं हम, है ना। तो इसका बहुत आसान सोल्यूशन है हमारे पास, वो है कि हर दिन कुछ नया सीखते रहिए आप। और क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देते हैं ना, वो धीरे धीरे बदलाव से डरने लग जाते हैं, और बिल्कुल वही डर आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है, और वही फिर उनको एक ऐसा शॉक दे देता है कि कुछ भी चेंज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आज कुछ नया सीखिए, कोई नया शब्द, कोई नई जानकारी, कोई नई रेसिपी आपके मूड के हिसाब से, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आप सीखिए, कोई नई किताब पढ़िए, उसका नया पन्ना अपनी लाइफ में जोड़िए, और किसी जो एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसकी कोई सलाह मानिए, है ना। और या फिर किसी अपनी पुरानी गलती से एक नई सीख लीजिए कि आपने उस वक्त वो गलती की और आप उसको लगातार दोहराते चले जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा रुकिए, पॉज कीजिए, उससे सीखिए और कुछ चेंजेस लाइए। जब चेंज लाएंगे ना तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, और वही बदलाव आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल आपको हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल 1% बेहतर बनिए, और एक साल बाद यही छोटी छोटी जो 1% वाली आपकी लाइफ है ना, जो आपकी इम्प्रूव हो रही है, वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, और आप एक साल बाद अपने आप को देखेंगे कि ये मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कितना आसान है ना, बहुत आसान है, बस आपको छोटा छोटा परिवर्तन अपने अंदर लेकर आना है। और कुछ टाइम बाद जब आपके जो पुराने दोस्त होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे ना, तो वो कहेंगे अरे वाह यार, क्या चेंजेस आए आप तुम्हारे अंदर, कैसे हुआ, हमें बताइए। तो वो आपसे भी सलाह लेंगे, आपसे भी सजेशन लेंगे, और आप उनको भी गाइड कर सकते हैं एक अच्छे या पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ सुप्रभात, एक अमेजिंग ट्रैक खास आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, और मैं हूँ आशुतोष आपके साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल सुप्रभात में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा, कंफर्ट जोन। और बिल्कुल जहां सब जाना पहचाना है, अपने मुताबिक है, जहां रिस्क बहुत कम है और जहां हमें पता है कि क्या होने वाला है, और वहां रहना बहुत बहुत आसान होता है हमारे लिए। लेकिन ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और पहली बार मंच पर अगर आपको बोलना है तो अनकंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। आप कहीं नई जॉब शुरू करने वाले हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और किसी नए व्यक्ति से बात करना भी आपके लिए कई बार दिक्कत पैदा करता है। और कोई नई स्किल आप सीख रहे हैं वो भी, लेकिन जो अनकंफर्टेबल होता है ना, उसको हमेशा गलत होने का संकेत नहीं होता है, और कई बार ये ग्रोथ का संकेत भी होता है। और तो आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक छोटा सा कदम उठाइए और किसी एक ऐसे काम की शुरुआत कीजिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। और खुद से बिल्कुल आपको एक वादा करना है, एक प्रॉमिस करना है कि आपको परफेक्ट नहीं होना है, बस आपको एक शुरुआत करनी है, एक छोटी सी शुरुआत करनी है। और वो जब शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत इतना अमेजिंग सफ़र पर आपको ले जाती है ना, तो आप खुद से एक ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप से, और एक चेंज चैलेंज अपने लिए ला सकते हैं, अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। उसमें आपको अपने आप को चैलेंज करना है और पुरानी नेगेटिव सोच को बदलना है, उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है और एक छोटा सा नया कदम उठाना है।

बस अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि आगे और आपसे बात करूं, लेकिन जो हमारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, पूरन प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग हमें भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ वना मुथु भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, लेकिन FM फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे हैं। डोंट वरी, हमारी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। पंकज अमरावती महाराज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ डॉली इस वक्त दिल्ली से हमें सुन रही हैं। और बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है, और नज़रिया बदलते ही हमारे फैसले बदल जाते हैं, और फैसले बदलते ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल इस बदलाव से दोस्ती कर लीजिए और नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ और एक छोटे से कदम के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाइए। इस बदलाव को अपनाना सीखिए और मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और बदलते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी को एक बड़ा सफ़र बनाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम बिल्कुल उठाने पड़ेंगे। फिलहाल आशुतोष आपसे लेते हैं अनुमति। गुड मॉर्निंग डेली NCR में, फिलहाल रेनू आपके साथ जुड़ने वाली हैं कुछ ही पलों में। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। और फिलहाल एक अमेजिंग गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। और इस गीत को सुनने के बाद आपका दिल बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। बहुत खूबसूरत सुबह है, अमेजिंग एक मौसम बन चुका है, और फिलहाल इस गीत के साथ इसको और भी अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

नमस्कार, अब पेश है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच की 53वीं बैठक में 9 राज्यों की रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कनाडा की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। वे वहां कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग जी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे। ये थे इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल और मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट, लेकर आई हूँ गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। और हमेशा की तरह ढेर सारी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये गाना मुझे लगा कि इस समय पर एकदम एप्रोप्रिएट है चलाने के लिए, क्योंकि दिल्ली भी बस भीगी सी और भागी सी हमें नजर आ रही है।

कोई भी धुन आपके पास आ सकती है, कोई भी आवाज़ आपके पास आ सकती है, कोई भी चीज़ आपके सामने नज़र से गुजर सकती है जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये तो हुआ है पहले, और हो भी सकता है कि आपको ना भी पता हो। इसलिए हम आते हैं आपको बताने के लिए कि आज के दिन ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसने इतिहास में आज के दिन को स्पेशल बनाया, विशेष बनाया। और हम आपको बता दें कि आज ही के दिन 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कोलकाता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर हथियार और गोलियां लूटी थी, और भारत के क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। और ये ऐसी घटना है जिसके बारे में जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, और इसलिए ये सभी चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं। और इस लूट में मिले हथियारों का इस्तेमाल काकोरी ट्रेन कांड से लेकर गदर आंदोलन में भी किया गया, इसलिए आज का दिन खास है। और आज का दिन इसलिए भी खास है कि सन 1955 में सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली रिलीज हुई थी। और आज का दिन महिलाओं को समान अधिकार और अवसर दिलाने के लिए हर साल मनाया जाता है महिला समानता दिवस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन को इतिहास में खास बनाती है और जिन्हें जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन का एक इतिहास है। हर दिन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जिन्हें हम अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएगी। बस जरूरत है वो पन्ने पलटने की। मैं रेणु भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से।

बस कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है तो हम एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे ईद ए मिलादुन नबी की। और आज का ये दिन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में। और इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज और दुआएं होती हैं, लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नात पढ़ते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हैं, कई जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं। और शांति का संदेश देता है आज का ये पर्व, प्रेम भाईचारे अमन और मानवता का प्रतीक माना जाता है। और आज के दिन पैगम्बर साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। और अगर हम उनकी शिक्षाओं की और उनके बातों को याद करें तो वो मानते थे कि सभी इंसान बराबर हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मेहमानों को आदर सत्कार करना चाहिए और पशु क्रूरता के खिलाफ भी वो बातें करते थे। वो पशु क्रूरता के खिलाफ थे। सबको प्रेम से रहें और बड़ों का सम्मान करें, इसी बात पर जोर देता है आज का ये पर्व। और जब इतनी अच्छी बात ये पर्व करता है तो हमें आज के दिन की इस खूबसूरती को अपने अंदर सहेजना समेटना तो चाहिए। क्या कहते हैं आप?

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग चलिए एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट और ईद उल मिलादिन नबी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम आप

शुभकामनाएं देना चाहेंगे ओणम की, और ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी सुनने वालों को। और केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फसल उत्सव है ये, और ये पर्व मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्योहार असुर राजा महाबली के स्वागत और उनकी याद में मनाया जाता है, जिन्हें न्यायप्रिय और दानी माना जाता था। याद है ना आपको वो कथा वामन और राजा महाबली की। और ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है उत्तम दिन से और अंतिम और मुख्य दिन होता है थिरु वोणम, जो कि 10 दिन बाद आएगा। और इस उत्सव में लोग अपने घरों के आंगन में ताज़े फूलों से रंगोलियां बनाते हैं और पारंपरिक भोजन करते हैं, जिसमें केले के पत्ते पर 25 से अधिक प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोज परोसा जाता है। और नौका दौड़ भी होती है, वल्लम कली कहा जाता है, और स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दौरान। और इस दौरान ये जो बातें मैंने आपके साथ साझा की ना, तो आपको ज़रूर याद आ गया होगा कि किस किस तरह से ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को मनाया जाता है। आप ऐसे बने रहे हमारे साथ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आप जुड़े हुए हमारे साथ फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से और ऐप के थ्रू, इंटरनेट भी आपके जरिए भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं आप यूं ही हमसे जुड़े रहें, हमसे अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करते रहें। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमें ईमेल feedback@fmrainbow@gmail.com पर।

करुणा का भाव एक ऐसा भाव है जो हम सभी में होना चाहिए। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों के इमोशंस हैं जो हमें बाकी चीज़ों से प्रकृति में अलग करते हैं, और इमोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में जब हम बात करें एम्पैथी और सिंपैथी की। आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि समय हो चला है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिन्हें आज के दिन याद करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बात कर रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा की। रोमन कैथोलिक नन थी वो, जिन्होंने सन 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की उन्होंने स्थापना की और 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ, मरते हुए लोगों की मदद की, और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया। मदर टेरेसा ने जिस आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की, उसके लिए हमारा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। और हम सभी के मन में जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो बहुत बहुत श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हैं। पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मेडल ऑफ फ्रीडम से उन्हें सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं। और जैसे हमने कहा कि करुणा एक ऐसा भाव है जो हम हर इंसान में, हर व्यक्ति में होना चाहिए, तो जरा सी करुणा हमें आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर लेकर आएं। संवेदनशीलता हम अपने अंदर लेकर आएं। दूसरों को यदि पीड़ा हो रही है, और अगर हमारी वजह से हो रही है, तो ये तो और भी ज़्यादा हमें सोचने वाली बात है। अगर दूसरे व्यक्ति पीड़ा में है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। इस बात को आप याद रखें और जितना हो सकता है मदद का हाथ आप बढ़ाते रहें। हम एक और व्यक्तित्व का नाम आपके साथ साझा करेंगे, वो नाम है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, जिनकी आज जयंती है। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार रहे और उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, और हम इन्हें आज नमन करते हैं। और नमन करने के साथ अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में ये भी हम आपको बताएंगे कि इनकी जो इमारतें हैं वो इन्होंने कई इमारतें बनाई और संस्थान भी बनाए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इन्हें मिला प्रित्सर आर्किटेक्चर प्राइस, जो कि आर्किटेक्चर की दुनिया में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री और रॉयल गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। और रॉयल गोल्ड मेडल जब इन्हें सम्मानित किया 2022 में, तो ये ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हम इन्हें नमन करते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। और हमें पता है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप इसी तरह हमसे बने रहें, जुड़े रहें और सुनते रहें कर्नाटक डेली एनसीआर आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और अब हम आपके साथ बातें साझा करेंगे अवतार किशन हंगल जी की, जिन्हें AK हंगल के नाम से जाना जाता है और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रहे और अच्छे कलाकार रहे। और हम अगर इनका जब भी नाम लेते हैं तो शोले परिचय में इनकी जो भूमिकाएं वो हमारी आंखों के सामने तुरंत तैर जाती हैं। बहुत यादगार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, फिल्म रहे नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अवतार आदि। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कश्मीरी पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ 1 फरवरी 1917 को। और जब हम बात करते हैं किसी कलाकार की तो हम उसके साथ बस उनके अभिनय की ही बात करते हैं, और कुछ और बातें जब हम उनके बारे में जानते हैं तब हमें पता चलता है कि इनके जीवन में और क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए थी। क्या आपको पता है कि हम इन्हें कलाकार के तौर पर जानते हैं लेकिन भारत की आज़ादी में इनका बहुत योगदान है, और ये 2 बार जेल भी गए हैं और 3 साल ये जेल में रहे भी हैं। एक बार के हम एक स्वतंत्रता संग्राम का वाक्य आपके साथ साझा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पेशावर में काबुली गेट के पास एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हंगल साहब भी उपस्थित थे। अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, लेकिन चंदर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में उस गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और ये एक तरह का विद्रोह माना गया और चंदर सिंह गढ़वाली को जेल में डाला गया। इस बात का बहुत दुख हुआ हंगल साहब को। और दूसरी बार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में भी वो शामिल हुए और भी उन्होंने अपना समय और योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिया। जैसे हमने आपको बताया कि वो 3 साल जेल में भी रहे। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी फिल्मों को हम सभी याद करते हैं। बहुत ही उम्र में बहुत लेट कहा जाता है कि वो तब फिल्मों में आए, जैसे सब कहते हैं कि बहुत तुरंत तुरंत बहुत ही छोटी उम्र से आप अपने काम को, पसंद के काम को शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब वो हिंदी सिनेमा में आए थे तो उनकी उम्र जो है 50 के आसपास थी। 1966 में उन्होंने बासु चैटर्जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया था। तो जब आपका समय सही होता है तब आपको, जब आपको सही लगता है तब आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं। और कई सारी उन्होंने फिल्में की, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कई फिल्में की। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आप इसी तरह हमसे और हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी बातें अपने फिर बार हमसे साझा करते रहें।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक। और आप सभी को बता दें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पखवाड़ा चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 2026 की। 25 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक ये मनाया जाएगा। और आपको पता है ना कि कोई भी दिन, कोई भी हफ्ता, कोई भी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में जागरूकता लाने की ज़रूरत होती है और समाज के सभी वर्गों को ये बताया जाना चाहिए कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो नेत्रदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रक्तदान महादान माना जाता है, जीवन दान माना जाता है, नेत्रदान भी उसी तरह की उसी वर्ग में आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाला है, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मृत्यु के बाद भी वो अपनी जब नेत्रदान करे तो उनकी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति इस खूबसूरत दुनिया को देखेगा। और जितने भी भ्रम जुड़े होते हैं ना नेत्रदान से, उन सभी मिथ्स को और भ्रम को दूर करना भी इसका उद्देश्य रहता है। और कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बता दें कि नेत्रदान मृत्यु के लगभग 4 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया निकालना ज़रूरी होता है। पूरी आंख का नहीं, बल्कि सिर्फ कॉर्निया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। और भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना ऑर्गन या नेत्रदान करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आपके आसपास बहुत सारे कैंप्स लगे होंगे, या फिर आप किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी जा सकते हैं और ये महादान कर सकते हैं और इसके में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर हम अपने सभी सुनने वालों को ये भी बता दें कि बच्चों की आंखों की जांच के लिए चिल्ड्रन आई हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 29 अगस्त तक विशेष स्क्रीनिंग कैंप ही लगाया जा रहा है। और ये कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी के कमरा नंबर 110 में चलने वाला है। तो ये सभी बातों को आप ध्यान रखें और हमसे ऐसे ही जुड़ते रहें ताकि आपको ये सारी जरूरी बातें पता चलती रहें और आप ये बातें आगे भी स्प्रेड करते रहें। अच्छी बात है, जानने का यही तो फायदा है कि जो हमें पता चलता है हम उसे आगे फैलाएं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़।

0: सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक। लेकिन अब मेरे जाने का समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत बहुत जरूरी बात कि दिल्ली को कूड़े से आजादी, स्वच्छ दिल्ली के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, दिल्ली का जन अभियान, तो हम सबको इसमें अपनी भूमिका को निभाना है। और 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक ये चलेगा अभियान। और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हैं और कुछ ऐसे डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। आपको कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना है, गीला और सूखा कूड़ा अलग करना है, अपने घर दुकान के आसपास सफाई रखनी है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, स्कूलों के स्वच्छता अभियान से जुड़ना है, जो भी आसपास आपकी ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको उसे इनिशिएट करना है और उसे आपको इनकरेज भी करना है। सार्वजनिक जगहों पर आपको गंदगी नहीं फैलानी है भाई, इस बात का ध्यान रखें। नालियों में कचरा नहीं डालना है, प्लास्टिक और कचरे को पार्क में ना छोड़ें, सड़क पार्क और खाली प्लॉट पर भी कूड़ा ना डालें। हम देखते ना कि खाली जगह में नजर आ रही, तो हम सोचते हैं कोई तो देख नहीं रहा, किसी की जगह होगी, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं करना है, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पे कूड़ा दिख रहा है तो MCDK 311 ऐप पर आपको शिकायत करनी है, या swachhdilli2026@gmail.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। और मेरे जाने के समय आशुतोष स्टूडियो में आ गए हैं। आशुतोष रहेंगे आपके साथ 8 से 9 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे घंटे में। ठीक 9:02 पर आपसे मिलने में आऊंगी, दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर के। और 10:02 का समय है वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम का, और हर घंटे आपको न्यूज हेडलाइंस भी दी जाती है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच की 53वीं बैठक में 9 राज्यों की रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान के में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा में की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। वह वहां कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोम्पानिय के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेंचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापक विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% का जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण में फाइनल में जगह बना ली है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज श्रीलंका अपनी पहली पारी की फिर से शुरुआत करेगा। मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: एग्जैक्टली आकाशवाणी के साथ आपका जो सफर है ना बहुत ही अमेजिंग रहता है। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के अगले सफर में मैं आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और भागती हुई जिंदगी हम अक्सर आगे बढ़ने की जल्दी में रहते हैं, खुद के पास रुकना भूल जाते हैं ऐसे में। और बिल्कुल याद रखिए, जीवन में सुख शांति और सुकून पाने के लिए ठहराव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कभी कुछ पल रुक कर अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने मन की सुनिए और खुद से पूछिए कि क्या सच में मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि हर दौड़ मंजिल तक नहीं ले जाती, कभी कभी ठहराव भी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बेहतर विकल्प होता है हमारे लिए। तो आज थोड़ा ठहरिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत सफर को महसूस करते जाइए, क्योंकि यहां पर हम अमेजिंग आपके लिए एक जर्नी लेकर आते हैं और उस जर्नी में आपके लिए गाने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं हमारी और जानकारियां होती हैं और बहुत सारा इंफोटेनमेंट होता है। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बिल्कुल, अपनों का जब साथ होता है ना तो बिल्कुल ये जो समय होता है, ये मौसम होता है, ये और भी खूबसूरत हो जाता है। और बिल्कुल आज के इस खूबसूरत मौसम की बात करें तो बिल्कुल मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस जो फिलहाल इस वक्त आप फील कर रहे होंगे। और ज़्यादातर धूप खिली रहेगी और बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी। और बिल्कुल सूर्योदय आज हो चुका है 5:55 पर और सूर्यास्त होगा 6:49 पर आज। आज बिल्कुल आप छुट्टी का दिन एंजॉय कीजिए। और फिलहाल आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और सुनते रहना है हमारा आकाशवाणी रेनबो। और क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग गाने हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आपके इस जो मौसम को ना इसको और भी औसम बना रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से। और बहुत सारी आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें। और राजकुमार संतानी इस वक्त अकोला महाराज से हमारे साथ जुड़े हैं, अदरक वाली चाय पी रहे हैं और साथ ही साथ आकाशवाणी के साथ रेनबो के साथ बहुत ही अच्छा अपना समय बिता रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंस यार। और बिल्कुल मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ बदल रही है एक और तस्वीर। बिल्कुल स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 के मामले भी सामने आ रहे हैं, और लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जागरूक रहना है और थोड़ी सी सावधानी अगर आप करते हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए, तो संक्रमण से बचने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कोशिश आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और अगर तेज़ बुखार आता है, खांसी आती है, गले में खराश है, सिर दर्द है, नाक बहती है और बदन में दर्द है, कमजोरी महसूस करते हैं, तो अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं और बने रहते हैं तो ये सिर्फ सामान्य वायरल समझकर इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। डॉक्टर से सलाह लें और बिना सलाह के दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और बचाव के लिए आपको बहुत आसान तरीका अपनाना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि और खांसने छींकते वक्त अपना नाक और मुंह ढक कर रखें और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अनावश्यक जाने से बचें और ज़रूरत हो तो मास्क ज़रूर पहने और बंद कमरों में हवा का वेंटिलेशन बनाए रखें। और ख़ास सावधानी रखें अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और ख़ासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए, और पहले से जो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके लिए भी बहुत प्रिकॉशन आपको रखनी है, क्योंकि इनमें संक्रमण गंभीर होने का जोखिम ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, समझदारी से काम करना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं बदलनी है, और साथ ही साथ सावधानी आपको बरतनी है और साथ ही साथ स्वस्थ रहना है और सुरक्षित रहना है, यही हमारी कामना है आपके लिए। तब तक ये गाना आप गुनगुना सकते हैं। फिलहाल आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। घड़ियां मिला लीजिए अपने और 8:19 हो चुके हैं और साथ ही साथ 30 सेकेंड्स, बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइम्स आकाशवाणी

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

बिल्कुल, वेलकम है आपका एक बार फिर से। और भाई बहन का प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसकी डोर राखी के धागे से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और अगर इस रक्षाबंधन पर घर पहुंचने की राह में भीड़ की चिंता सता रही है आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और यानी इस बार घर जाने का सफ़र थोड़ा और आसान होने वाला है आपका। और इन विशेष ट्रेनों में दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ने वाली सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि दिल्ली रेवाड़ी, हज़रत निज़ामुद्दीन से मथुरा और हज़रत निज़ामुद्दीन से जिंद के लिए, पुरानी दिल्ली से अम्बाला और गाज़ियाबाद से अलीगढ़ जैसे रूट्स पर विशेष सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। तो बिल्कुल, अगर इस बार बहन की राखी बांधने का वादा किया है और या फिर आपको भाई का इंतज़ार है अपने, तो टिकट और ट्रेन का शेड्यूल समय रहते ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि राखी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बिल्कुल मिलने का बहाना है और रिश्तों को फिर से जीने का एक मौका देता है। तो अपने बैग पैक कर लीजिए और राखी संभाल कर रखिए, और मिठाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसके बिना तो वो त्यौहार अधूरा हो जाता है ना। और निकल पड़िए अपने अपनों के पास और सुरक्षित सफर करिए, और अपने भाई बहनों के साथ मनाइए खुशियों भरा त्यौहार रक्षाबंधन। आपको भी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं इसकी। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बिल्कुल, हल्की हल्की धूप अभी फिलहाल नज़र आ रही है, और आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते चलाते अक्सर कभी चालान आपका कट गया हो, तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अपडेट है इसके रिलेटेड मेरे पास। तो कई बार ऐसा होता है कि चालान हम हमारे दिमाग में पेंडिंग रह जाता है और हम भूल जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कब भरेंगे, कहाँ जाएंगे, इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा, कैसे होगा। तो अब पेंडिंग चालान वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, और दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा लंबित चालानों के निपटारे के लिए आसान बनाने की तैयारी चल रही है। और प्रस्ताव के मुताबिक 13 जिलों में 39 SDM कार्यालयों में चालान जमा कराने की सुविधा देने की योजना है, और यानी कि चालान के लिए दूर दूर तक भागदौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, लंबी कतारों से की परेशानी भी कम हो जाएगी आपकी, और काम भी आसान हो जाएगा और आपके नज़दीक हो जाएगा। और इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है फिलहाल, जिसे ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से जोड़ा जाएगा, और चालान जमा होते ही रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। लेकिन ध्यान दें कि अभी ये प्रस्तावित व्यवस्था है, बिल्कुल इसको ध्यान देना है कि अभी लागू नहीं हुई है ये, और इसको इसके लिए प्रस्ताव अभी भेजा गया और इसे लागू करने के ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है अभी। सो पेंडिंग चालान वालों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर ये बिल्कुल सही हो जाता है तो, और बस अपडेट का इंतजार कीजिएगा और मौका मिलते ही आपका चालान बिल्कुल आसानी के साथ आप उसको पे कर सकेंगे, क्योंकि सड़कों पर नियम मानना बहुत ज़रूरी है, और अगर चालान हो जाए तो इसे पेंडिंग रखना भी बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है इसको। और सुरक्षित चलिए, नियमों का पालन कीजिए, दिल्ली की सड़कों को बनाइए स्मार्ट भी और सेफ भी, बिल्कुल बहुत आसान के साथ ड्राइव कीजिएगा, और सबकी आपको टेंशन लेनी चाहिए, अपने भी सबके आसपास वालों की भी, और बहुत ही आराम से सुकून के साथ गाड़ी चलाइए और अपनी जिंदगी में जादू बरते चले जाइए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हम तो चलेंगे आपके साथ और बिल्कुल दिल्ली, जहाँ पर सुबह की चाय से लेके शाम की चहल पहल तक हर चीज़ का अपना एक अंदाज है, ख़ास अंदाज है। लेकिन सितंबर में यही दिल्ली बनने जा रही है दुनिया की एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मिलन का मंच, और बिल्कुल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 होने जा रही है, जिसमें करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल होंगे और समिट में जुड़े ज़्यादातर कार्यक्रम भारत मंडपम में होने की संभावना है, और जबकि कई विदेशी मेहमान नई दिल्ली में रुकने वाले हैं, और मेहमान आए और मेहमान नवाजी में हम पीछे रह जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और शहर उसके लिए तैयारी कर रहा है बिल्कुल, और जोरों पर तैयारियां चल रही हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है, फुटपाथ दुरुस्त किए जा रहे हैं, और बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, सड़कों पर फूलों वाले गमले और खूबसूरत लैंडस्केपिंग और रेलिंग्स पर पेंटिंग की सारी काम चल रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है और मजबूती से काम किया जा रहा है, और बिल्कुल 30 अगस्त को सुबह 6:30 बजे ब्रिस्क रन एंड राइड का भी आयोजन किया जाएगा, और बिल्कुल दिल्ली मेहमानों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, और बिल्कुल जहां पर दुनिया इसको देखने वाली है, अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने वाली है और शानदार मेहमान नवाजी बिल्कुल दिखाने वाली है दिल्ली। फिलहाल आप भी अपने इस मेहमान नवाजी को हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू करिए। फिलहाल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल, अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं लिसनर्स के। अजय झारखंड से, रेनू और मेरा गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं हम दोनों को, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली NCR से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुमन कर्माकर इस वक्त SM से हमारे साथ जुड़ी हैं, और साथ ही साथ राजकुमार भी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, डॉली इस वक्त हमें दिल्ली से सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल बस अब चलता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, रेनू आ चुकी हैं दिल की तरह, गाने नए पुराने लेकर, स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए, बिल्कुल गानों की एक से बढ़कर एक फहरिस्त यहाँ पर आपके लिए आती रहेगी, बैक टू बैक गाने रहेंगे यहाँ पर, रेट्रो भी रहेंगे, बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स भी रहेंगे, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी। आशुतोष लेते हैं अनुमति, थैंक यू सो मच, टेक केयर।

नमस्कार, पेश एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच की 53वीं बैठक में 9 राज्यों की रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कनाडा की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। वे वहां कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम तथा ईद मिलाद उन नबी पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बना ली है और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के 4th दिन आज श्रीलंका अपनी पहली पारी की फिर से शुरुआत करेगा। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे। ये थे इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं रेणु भाई, दिल के तराने, गाने नए पुराने में।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: तो जिस तरह से आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें। आप हमसे जुड़े हुए हैं फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। देयर आर सो मेनी मीडियम्स एंड वेज जिसके थ्रू आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और अपनी बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और तरीका है जो मैं बार बार आपके साथ शेयर करती हूं, वो है हमारा ईमेल एड्रेस। आप हमें जरूर ईमेल करें अपनी बात, अपनी फीडबैक्स। आपको करना है feedback@fmrainbow@gmail.com पर हमें मेल, feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको हमें मेल करना है और बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। और जो भी आपके मैसेजेस हमें आते हैं, आपके ढेरों मैसेज हमें मिल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक लेकर आई हूं मैं। इस गाने को सुनते हैं और अपने नॉनस्टॉप म्यूजिक का जो दौर है वो शुरू करते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दिल के पुराने गाने नए पुराने रेनू भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। और अब समय हो चला है कि मैं आपको दे दूं क्विक ट्रैफिक अपडेट। अगर आप आम्रपाली रोड पर हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, 11 मिनट का डिले है। दादरी मेन रोड पर आपको 7 मिनट का डिले मिलेगा। महरौली बदरपुर रोड पर है तो भी आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है। वजीराबाद रोड पर भी आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक नज़र आ रहा है। कालिंदी कुंज ब्रिज पर हैं तो आपका 10 मिनट का डिले है। इनके अलावा यदि कोई भी आप बात हमें बताना चाहते हैं दिल्ली की सड़कों से जुड़ी हुई, जहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या फिर हल्का फुल्का ट्रैफिक है, जो भी है सड़कों का हाल, आप हमें करें व्हाट्सएप 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है और बताना है दिल्ली के सड़कों का हाल। और इसके साथ ही मैं आपको एक ट्रैफिक अपडेट भी दे दूं कि सराय कालेखां के पास बारापुला फ्लाईओवर के विस्तार का निर्माण कार्य चल रहा है और ये कार्य कम से कम 2 दिन और चलने वाला है। ऐसे में आश्रम की ओर से जो जाते हैं कैरेज वे पर बहुत ही भीड़भाड़ है और वाहनों की गति धीमी बनी हुई है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वहां पर से जब आप लोग जाएं तो धैर्य बनाकर चलें और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चलें। सराय कालेखां के पास बारापुला फ्लाईओवर की बात कर रही हूं मैं, जिसके विस्तार का निर्माण कार्य चल रहा है जो आगे भी 2 दिन चलने वाला है। यदि आप वहां पर से जाते हैं, अगर आप जाते हैं तो आप प्रिकॉशन लेके चलें, अगर आपको जाना है वहां पर तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। और अब लगाते हैं रेट्रो का तड़का और लता मंगेशकर की आवाज में एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा गीत जो हम सभी को बहुत पसंद है।

0: भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और कल्ट सस्पेंस थ्रिलर्स में से एक फिल्म मानी जाती है ये, वो कौन थी? कौन थी आपको जरूर पता चलेगा जब आप ये फिल्म देखेंगे। अगर आपने देखी है तो डेफिनेटली आपको फिल्म पसंद आई होगी। बहुत पुरानी है समय में, 1964 में आई थी ये फिल्म, और नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद अपने गानों का सिलसिला जारी रखेंगे, आपको यूं ही हमारे साथ बने रहना है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: चलिए दिल के तराने गाने नए पुराने में अब हम आपको बता देते हैं रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम आपको पहले बता दें कि एक पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है और आज का विषय रहेगा डिसीजन फटीग। और हमारे एक्सपर्ट रहने वाले हैं जसमीत कौर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी माता सुंदरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। कंचन कानन रहेंगे आपके साथ और 3 बजे का समय हमारे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का, और ये भी पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है। और आज का टॉपिक रहेगा किडनी स्टोन मिथ्स एंड फैक्ट्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, आप प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 3 बजे, रेडियो डॉक्टर का समय 3 बजे है जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, और 1:02 पर रेनबो हेल्पलाइन आप सुन सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है दिल के तराने गाने नए पुराने में। आपके साथ हूं मैं रेणु भट्ट और आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और एक और रेट्रो म्यूजिक आप सभी के लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: ऑलराइट, अब आपको बता देती हूँ क्विक वेदर अपडेट कि क्या वेदर रहने की संभावना है आने वाले कुछ दिनों में। अगर हम करंट टेम्परेचर की बात करें दिल्ली में तो 32 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी लेवल आज भी ज़्यादा है, छुटपुट बारिश की संभावना है, बूंदाबांदी हो सकती है अगले आगे आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें। सूरज और बादलों के बीच में आप हाइड एंड सीख देखेंगे, लुका छुपी का खेल देखेंगे और उसके ठीक एक हफ्ते बाद की अगर बात करूं तो मंगलवार और बुधवार को भी बारिश होने के चांसेस। अभी बीच में हो सकता है कि कभी आपको दिन में बारिश दिखे, छोटी छोटी बूंदें हो जाए, फुहार हो जाए या होती है ना, वो होने की संभावना है। और अब ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है तो बार बार आपको बताया जाता है, याद दिलाया जाता है कि अपनी केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ही संभल कर रहने की ज़रूरत होती है इस मौसम में, किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी, इस बात का ध्यान रखें। बस एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके लिए गानों का सिलसिला हम जारी रखते हैं, आप यूँ ही सुनते रहिए दिल के तराने गाने नए पुराने रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: और अब मेरे जाने के समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं।
1: नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना।
0: अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, और कंचन कानन लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रिल्स 11:02 पर, और 12:02 पर आप फिर से वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम ही सुनेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे तमाम प्रोग्राम सुने 24x7 और साल के 365 दिन आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। और इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत। आप बने रहें आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो फ्रेंड्स, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो एट 102.6 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज अ वेरी स्पेशल शो, मैचलेस म्यूजिक आवर, एंड ऑन दिस एडिशन ऑफ एमएमएच यू ऑल आर विद योर चर्बी रेडियो फ्रेंड हरप्रीत। लेट्स बिगिन द शो विद अ वंडरफुल ट्रैक बाय मैरी हॉपकिन, एंड दिस वन इज दोज वर द डेज़।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ

0: इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Welcome back, friends. Now it's almost time for me to leave the studio. Well, time flies when the music is this good, isn't it so? And this brings us to the addition, to the culmination of this edition of Matchless Music Hour, where we celebrated classic hits, remember the great Dolly Parton, and of course, played some wonderful tracks for you. So now I'm leaving you with the last song of this edition. This is by Louis Armstrong, What a Wonderful World. Enjoy the song. This is me, Harpreet Kaur, signing off, and we'll join you shortly for

नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच की 53वीं बैठक में 9 राज्यों की रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। वो कनाडा की वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपनियो के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दिल्ली सरकार आज नई दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इसके तहत हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब $60 करोड़ के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम तथा ईद ए मिलाद उल नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका अपनी पहली पारी की फिर से शुरुआत करेगा। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे जिंदगी और फिल्म में बहुत अधिक समानता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है क्योंकि हमारी आपकी कहानियों की झलक होती है सिनेमा में। और सिनेमा की बातों को समेट कर हम आ जाते हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। मैं आपके साथ कंचन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और देखिए दोस्तों, बॉलीवुड में ना बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे दिल को छू जाती हैं। अब देखिए, झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सिंगर अमित कुमार ने हाल में ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो किशोर दा का एक बेहद लोकप्रिय गीत रिमझिम गिरे सावन गा रहे हैं। और वो जिस तरह से गा रहे हैं ना अमित कुमार इस गीत को, तो उसे सुनकर एक पल के लिए हम सबको किशोर दा की याद जरूर आ जाती है। और इस सावन के मौसम में अमित कुमार ने ये जो प्यारा सा गीत गाया है ना, वो सचमुच हम सबके दिल को छू जाता है। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं FM रेनबो पर ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

इतने प्यारे से गीत के साथ हम सभी खोते चले जाते हैं, है ना, और प्यारा सा मौसम है तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का जो बॉलीवुड सरताज का सवाल है ना, वो भी इसी गीत पर आधारित है। और आज का सवाल ये है कि ये जो गीत है रिमझिम गिरे सावन, वो किस फिल्म का है? तो जल्दी से आप अपना उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर अपने नाम के साथ पहुंचा दीजिए। और जो दोस्त सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपका FM रेनबो।

जी, इसी तरह से गुनगुनाते रहिए एफएम रेनबो के साथ। और आज बॉलीवुड में जन्मदिन है डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर का। एफएम रेनबो पर हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। 26 अगस्त 1968 को इनका जन्म हुआ मुंबई में। और यथार्थवादी और सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं मधुर भंडारकर। चांदी बार, पेज थ्री, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, कॉरपोरेट हीरोइन जैसी फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं मधुर भंडारकर। और 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही चांदी बार, पेज थ्री, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन जैसी फिल्मों के लिए इन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर मधुर भंडारकर को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। और ये गीत फैशन फिल्म से।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
11: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
12: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
11: इम्पॉसिबल सर।

0: अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेस। वैसे ब्रेक पर कुछ लंबे समय के लिए हम गए, खैर कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। और आज बॉलीवुड सरताज का जो सवाल है ना, वो एक बहुत ही प्यारे से गीत के बारे में आपको बताना है। जो गीत हमने आपको सुनवाया था किशोरदा की आवाज़ में, वो गीत रिमझिम गिरे सावन किस फिल्म का है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। और बहुत सारे श्रोता जो हैं वो बता रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से, और आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाएंगे ना, वो बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज। तो बनिए जल्दी से बॉलीवुड सरताज, क्या पता आज आप बन जाएं हमारे बॉलीवुड सरताज।

0: पिकअप। और देखिए, कई बार गीत के साथ हम इस तरह से खो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि क्या कहें और क्या ना कहें। वैसे एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म जो है ना, वो आने वाली है, और एक बच्ची को बचाने के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म गांधारी की, और इसी सवाल का जवाब देंगी वो एक्शन, इमोशन और रहस्य के साथ। फिल्म का जो ट्रेलर है वो मंगलवार को यानी कल 25 अगस्त को रिलीज हो गया है, और इसमें तापसी एक ऐसी माँ के किरदार में नजर आ रही हैं जो अपनी अगवा की हुई बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप सोच सकते हैं माँ की जो ताकत है ना, किस तरह से दिखाई गई होगी फिल्म में। और गांधारी है फिल्म का नाम, और इसमें तापसी पन्नू बनी है बानी, और उनकी बेटी मिष्टी अचानक गायब हो जाती हैं, और इसके बाद शुरू होती है एक माँ की बेचैनी से भरी हुई तलाश। और वो बैठती नहीं है, बल्कि खुद अपने बल पर जो है अपनी बेटी मिष्टी को खोजने के लिए चल पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो अपनी बेटी के करीब पहुंचने की कोशिश करती हैं, मामला जो है वो उलझता चला जाता है, और उसके बाद कई ऐसे राज मिलते हैं जो इस पूरे मामले को एक खतरनाक जाल में बदल देते हैं। और कौन उनका साथ देता है, कौन उनकी राह में कांटे जो है वो बिछाता है, यही सब कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है। कि जो ट्रेलर है ना, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर। वैसे इसके आगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि बहुत सारा सस्पेंस जो है ना हमने खराब कर दिया। तो ये फिल्म जो है ना, बहुत ही तरह तरह के जगहों पर शूट किया गया है, काल्पनिक शहर की भी जो है यहाँ पर बात कही गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये शहर जहाँ पर वो शूट हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो रहस्यमयी है, जहाँ डर है, खामोशी है, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ये फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है जी, कब रिलीज़ होने वाली है बताएं क्या? क्योंकि देखिए, आप जब फिल्म के रिलीज़ होने वाले डेट को जानते हैं तो आप पहले से प्लान करने लगते हैं कि इस में क्या किया जाए। छुट्टी का भी मौसम है थोड़ा सा जो है ना, राखी भी है, इसके बाद बहुत सारी छुट्टियां भी आ रही हैं, तो उन सब को देखते हुए आप फिल्म की टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म जो है वो कब रिलीज होने वाली है। तो पहले सुनते हैं ये वाला गीत।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।
0: जी, तापसी पन्नू को आप कहते हैं ना नूर नूर फूर फूर, लेकिन गांधारी जो है इसमें वो एक अलग किरदार में नजर आएंगी। ये फिल्म 3 सितंबर को रिलीज होने वाली है, तो इंतजार करेंगे ना आप इस फिल्म का?

0: आंखों आंखों
1: हम भी आपसे दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच अवेटेड फिल्म हैवान जो है वो आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म का टीजर पहले ही दर्शकों के बीच आ चुका है और अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। अब कैसा है ट्रेलर? फिल्म हैवान के बाद जो है ना उसकी बात अगर करें तो ट्रेलर में अक्षय एक हैवान बने हैं और जिनका मुकाबला हो रहा है फिल्म के हीरो सैफ अली खान से। ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शहर में हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है और एक व्यक्ति जो है लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ना जाने कितने बच्चे जो है वो तकलीफ में हैं, उनके बीच दहशत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हम सारा सस्पेंस जो है वो ख़राब करके रख देते हैं। वैसे फिल्म जो है वो 11 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है और सिनेमा

मोहरों में दस्तक देगी। तो अगर आप भी अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो अभी से थोड़ा सा प्लान तो करना बनता है। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और हमारे बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं इस पर भी हम नजर डालेंगे।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हमने आपसे पूछा था कि फिल्म रिमझिम गिरे सावन, जो बहुत ही लोकप्रिय गीत है किशोर दा का, और अभी हाल में अमित कुमार ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया है, तो इस फिल्म ये कौन से फिल्म का गीत है? तो आपके बहुत सारे उत्तर मिले हैं, इकबाल, शंकर, अनीता मुखी का भी सही जवाब है, मुरली प्रकाश जी का भी सही जवाब है, वहीं उपेंद्र वत्स जी का बिल्कुल गलत जवाब है, सावित्री और भगवती जी का सही जवाब है, रघु झा का सही जवाब है, और बहुत सारे उत्तर हैं। मंजरी द्विवेदी वो कहती हैं कि तो कुछ कुछ उलझन में हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं और अभी फ़ोन में भी नहीं देख सकती, और वो बिल्कुल उधेड़ बुन में हैं, थोड़ा गेस कर रही हैं, उन्हें लग रहा है कि उत्तर आ रहा है लेकिन पहुंचा नहीं पा रही हैं। वहीं मीना जैन का भी सही उत्तर है, लेकिन बहुत सारे गलत उत्तर भी हम तक पहुंचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप जुड़ते हैं एफएम रेनबो के साथ, यही बहुत अच्छी बात है। सुधा देवी जी का भी गलत उत्तर है, वो कह रही हैं शराबी फिल्म का, जी नहीं, ये शराबी फिल्म का गीत नहीं है। आप जुड़ी हैं एफएम रेनबो के साथ, पहली बार जुड़ी हैं, और आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा जो जवाब है बता देते हैं जल्दी से, और हमारा जवाब है, सही उत्तर है मंजिल फिल्म। ये फिल्म 1979 यानी 1979 में आई हुई फिल्म मंजिल, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी इस फिल्म में हैं, और एक सस्पेंस फिल्म है, तो इसी फिल्म का गीत है रिमझिम गिरे सावन। और आज के हमारे बॉलीवुड सरताज हैं कौन? मुरली प्रकाश जी दरभंगा से हमारे बन जाते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको पहली बार बॉलीवुड सरताज बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: जी बिल्कुल, ऐसी ही आवाज़ निकलती है हमारे आपके भी मन से जब धड़ाधड़ बारिश होती है और कोई ट्रैफिक में अपना फंसा होता है तो लगता है अब ना ना ना ना बिल्कुल भी बारिश नहीं चाहिए, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सूखते नहीं हैं और घंटों तक आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, बहुत सड़कों पर पानी होता है, तो ऐसी ही आवाज़ निकलती है। वैसे सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए ये रिलीज़ जो है ना तली हुई है। अब इंतज़ार करना होगा कि ये फिल्म कब रिलीज़ होती है। तो मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। आप सभी अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से और मुझे दीजिए विदा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।
1: Ready? One, two, one.

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
2: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
7: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
7: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत, माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके अंतर्गत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में विशेष वार्ता की, सह अध्यक्षता की। इसमें भारत और चीन सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर्स से भारत में निवेश बढ़ाने और कारोबारी अवसरों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा की यात्रा पर। सुश्री सीतारमण कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। ई-श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ईद मिलाद उल नबी और केरल में तिरु ओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में खेलों में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के 4th दिन का खेल जारी है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुदूर रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: यह है आकाशवाणी रेनबो और एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट भी होती है, एक टॉपिक भी होता है जिस पर हम राय लेते हैं, डिस्कस करते हैं, आप सबके सवाल भी लेते हैं, बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिलहाल आज हम सीखेंगे डिसीजन फटीग के बारे में। फैसले की थकान, ये कैसी थकान है भाई? फासले की थकान तो पता थी, जब चलना पड़ जाए दूर तो हमें लगेगा फासला बहुत है, उसमें थकान हो सकती है, लेकिन ये थकान कुछ नई है। कैसी थकान है इसके बारे में समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो कि हैं जसमीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। ये कहाँ है? माता सुंदरी कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, यहाँ पर है। फिलहाल मैटर ये करता है कि आपके सवाल कैसे लिए जाएंगे, वो फोन के द्वारा लिए जाएंगे और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए भी लिए जाएंगे। तो फटाफट नंबर घुमाइए और जानिए फैसले की थकान के बारे में, डिसीजन फटीग क्या होता है और इसके बारे में या इससे जुड़े हुए जो सवाल है वो आप फटाफट पूछ डालिए 2342108 या 2342108 पर आपको कॉल करना है। और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सिंपली अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं और कभी भी हम आपका सवाल इस शो के दौरान ले लेंगे, जो सेफ रहता है, कॉल ना मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9868107070 पर अपना सवाल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेज दीजिए, 9868107070। सबसे पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनका स्वागत करते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच बबिता
2: जी। तो जसमीत जी, ये बहुत अलग सा टॉपिक है, डिसीजन फटीग। क्या ऐसी भी थकान होती है, ये किस तरह की थकान है?
3: हाँ, ये एक बहुत अलग तरह की थकान है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ डिसीजन फटीग है क्या। एक उदाहरण से मैं शुरू करती हूँ। दो दोस्त हैं, एक जो है वो लॉन टेनिस प्लेयर है और दूसरा दोस्त चेस प्लेयर है। तो दोनों दिन भर अपने अपना गेम खेलते हैं और शाम को जब चाय पे मिलते हैं तो जो लॉन टेनिस वाला दोस्त है, जिसका गेम लॉन टेनिस है, वो कहता है कि मैं तो आज बहुत थक गया। तो जाहिर सी बात है, सारा दिन फील्ड में रहे हैं, थक गए हैं, थकावट हो गई है। लेकिन जो दोस्त चेस खेल रहा है वो कहता है मैं तो बहुत थक गया हूं, मेरे में तो चाय पीने की भी हिम्मत नहीं है। तो ये बात सुनकर लॉन टेनिस वाला दोस्त हंसना शुरू हो जाता है, अरे तुमने क्या किया, बैठकर चेस ही तो खेली है, मैं तो फील्ड में था। तो तब यहां से इस उदाहरण से मैं ये पता लगता है कि फटीग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल फटीग भी होती है। तो डिसीजन फटीग वो फटीग है जो आप मेंटली थक जाते हैं, निर्णय, जिसको जब हम निर्णय लेते हैं, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और चेस में आप बहुत सारे निर्णय लेते हैं, इसलिए आपको ज्यादा थकावट हो जाती है। सो दैट इज डिसीजन फटीग। सो एक मेंटल स्टेट है जहां पर आप थक जाते हैं, जहां आपको सीरीज ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
2: तो यहाँ डिसीजन जब बहुत सारे लेने पड़ जाएं तब भी आप थक सकते हैं। और ये डे टू डे लाइफ में किस तरह से होता है और किस तरह से इसको डे टू डे लाइफ से जोड़ेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या ये इतनी बड़ी है, क्या हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मौजूद है, इस पर भी चर्चा करेंगे और आपके जो सवाल है वो भी लेंगे। फटाफट कॉल करिए 2342108 या 2342104 पर या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल भेज दीजिए 9868107070 पर। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। फैसले की थकान बात कर रहे हैं आज रेनबो हेल्पलाइन में, जसमीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, माता सुंदरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से।

0: ये फैसले की थकान क्या होती है और ये कैसे आती है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मतलब डिसीजन फटीक क्या होता है, ये हमने समझ लिया। एक उदाहरण बहुत सुंदर सा दिया हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जसमीत कौर ने, जो कि फैकल्टी है माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने सवालों के साथ जुड़ें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और इलेबोरेट करना चाहेंगे और जसमीत जी समझना चाहेंगे कि आखिर आपने कहा कि चेस के एक गेम से आपने एक उदाहरण दिया कि हम मेंटली भी बहुत थक जाते हैं, थक सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं करते। हमें लगता है कि फिजिकली काम कर रहे हैं तभी हमें थकान होती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, जैसे हमने गाना अभी सुना, क्या करें क्या ना करें तो डे टू डे लाइफ में हम क्या इसी तरह की थकान की बात कर रहे हैं आप, कि हम क्या करें क्या ना करें, जैसी डिसीजन जब हमें लेना होता है तो भी हमें थकान होती है, या और किस तरह से रिलेट करेंगी आप इसको?
1: बबिता, आपने गाना बहुत ही बढ़िया चलाया था और बहुत एप्रोप्रिएट था, क्या करें you. क्या ना करें। अब मैं आपको एक अपनी डे टू डे लाइफ का उदाहरण बताती हूँ। आप शॉपिंग करने जाती हैं, ठीक है, आप शॉपिंग करने जब जाती हैं, वहां पर आप कई सपोज आप कुछ लेने जा रही हैं घर के लिए, आपको कोई किचन के लिए कोई सामान चाहिए, कोई बॉक्सेस चाहिए।
0: हाँ.
1: आपको दुकानदार कई तरह के बॉक्सेस दिखाता है, तो आप पसंद कर लेती हैं कि हाँ मुझे ये स्क्वायर टाइप का बॉक्स चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं इसमें कई कलर उपलब्ध हैं, आप कहते हो अच्छा ठीक है मुझे कलर्स भी दिखाइए। फिर आप कलर्स देखते हैं, फिर उसके बाद आप अपने दो सेकेंड आप ध्यान देते हैं कि मेरी किचन के साथ क्या कोऑर्डिनेट करेगा। सो आप देखिए किस लेवल पे आप डिसीजंस कर रहे हैं। अब मेंटली पहले आपका डिसीजन था कि डिब्बे लेने हैं, दूसरा डिसीजन कि दुकानदार ने बहुत सारी वैरायटी रख दी, तीसरा डिसीजन उसने बहुत सारे कलर्स रख दिए, चौथा डिसीजन आपको लेना है कि मेरी किचन के साथ क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, फिर लास्ट में आप ये सोचते हैं कि ये मेरी शेल्फ में आ भी पाएगा कि नहीं। सो सिक्स डिसीजंस यू मेड एंड यू डिड नॉट रियलाइज दैट योर ब्रेन वाज वर्किंग ऑल दैट टाइम। सिर्फ एक डिब्बे लेना ही काम नहीं था, बट अल्टीमेटली जो आप प्रोडक्ट लेकर आए उसके लिए आपको छह स्टेप्स में डिसीजंस लेना पड़ा। एंड सो योर माइंड इज गेटिंग टायर्ड द मोर कॉम्प्लेक्स यू गेट इनटू थिंग्स। सो दैट इज लाइक वन डे टू डे एग्जाम्पल।

0: जो आपको शेयर किया।
1: बहुत अच्छा। और कई बार हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हम इतना कुछ कर रहे थे मेंटली। हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, और कई बार डिब्बे भी नहीं लिए और घर चले आए।
0: बिल्कुल। और एक और आप बिल्कुल आपने सही कहा। और कई बार होता है आपने डिब्बे फाइनल कर लिए, फिर आता है पेमेंट का समय। तो आप सोचते हैं कैश दूं या क्रेडिट कार्ड से दूं या डेबिट कार्ड से दूं। अगर मैं डेबिट कार्ड से देती हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम होते हैं, और क्रेडिट कार्ड में मुझे वक्त मिल जाता है पेमेंट करने का और मेरे पॉइंट्स भी जुड़ते हैं। सो अगेन अगर हम वो बॉक्सेस के साथ डिसीजंस को जोड़े तो 6 की जगह हमारे 10 डिसीजंस हो गए।
1: और अगर मैम कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हम इतना सोचेंगे तो हम वैसे ही थक जाएंगे।
0: दैट्स राइट। और आजकल ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग थकते जा रहे हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग। आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण एक और देती हूँ। आपके मोबाइल फोन पे आप जब देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आप सोचते हैं पहले बहुत सारे अनरेड मैसेजेस हैं, आप सोचते हैं पहले उसका पढ़ूं या अपने घर वालों का पढ़ूं या दोस्तों का पढ़ूं या अपने प्रोफेशनल ऑफिस वालों का पढ़ूं। सो अगेन इट्स अ डिसीजन, यू नॉट रियलाइजिंग कि इम्पोर्टेंट क्या है, मैं उस पर फोकस करूं। वो हम हटते जा रहे हैं उस चीज से।
1: तो ये तो हमने समझ लिया डिसीजन फटीक क्या है, और अभी तक हमें डे टू डे लाइफ में हम क्या कुछ कर रहे हैं, शायद मेंटली हम सोचते भी कम है कि हम मेंटली किस तरह से बिजी रहते हैं 24 घंटे। छोटे छोटे बातों में इतनी बिजी हो जाते हैं कि मतलब जैसा आपने बताया कि एक छोटी सी खरीदारी के लिए हमने कितने सारे स्टेप्स में डिसीजन लिया है और सोचा है और किस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, तब जाके हम डिसाइड कर पाए हैं। ये वैसे नॉर्मली सबके साथ होता है मैम, या किसी के साथ बहुत ज्यादा होता है, किसी के साथ बहुत कम होता है, और कब सोचें कि अब जो है ये प्रॉब्लम बन गई है हमारे लिए?
0: हाँ, मैं आपने बहुत सारे सवाल एक ही उसमें पूछ लिए। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेती हूँ। जैसे ये होता तो हर एक के साथ है, लेकिन डिसीजंस हम सभी लेते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं डिसीजंस, लेकिन जब फटीग की बात आती है, थकान तब होती है जब आप चूज नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, सो यू आर मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ्रिज खोला, आपने फल खाने हैं, तो आपके दिमाग में पहले से ही होगा, आपका मन कर रहा है कि मैं आज बनाना खाऊं, मैं केला खाऊं, लेकिन फ्रिज खोलते ही आप चार फलों को देख के कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बनाना, जस्ट लुक एट बनाना एंड हैव इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो दिस इज वन थिंग, इट हैपन्स विद एवरीबडी, बट जब आप कई लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं तो उनको ये फटीग नहीं होती। पर जहां आप सोचते हैं, दूसरों का ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं, या आप रुक के डिसाइड करते हैं मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, सो योर माइंड कीप्स वर्किंग एट दैट टाइम, सो वो थकान आपकी बढ़ती जाती है। और इसमें देखा यह जाता है डिसीजन फटीग में कि अक्सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको आप बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब आपको मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आप काम नहीं आगे कर पाते हैं। और बहुत सारे और जो सिम्टम्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे तो आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको अनुभव करने को या देखने को मिल सकती है इसके साथ।
1: हाँ, और ये सिम्टम्स पर मैं बात करूं उससे पहले मेरे पास एक मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है, और जैसे आपने बताया कि इसकी वजह से बहुत इफेक्ट भी पड़ते हैं लाइफ में, और उस पर भी मैं चाह रही थी कि जाएं, लेकिन अभी जिस तरह से सवाल आ रहा है आ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ इसको ले लेती हूँ। कि थॉट्स आर कंटिन्यूसली रनिंग थ्रू माई माइंड इवन इन स्लीप, इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स आई स्टिल फील exhausted and tired, what to do? ये नाम नहीं लिखा है लेकिन सवाल बड़ा appropriate है।
0: This is a very very appropriate question Babita, but ये जो question है ना ये समाधान की तरफ जा रहा है। So can I take it towards the later part? आप पहले हम और चीजों की बात कर ले, because ऐसे समाधान वाले बहुत सारे बहुत valid question है, I will definitely address to this question, but थोड़ा सा पहले और symptoms की बात कर ले, फिर हम समाधान पे आएंगे।
1: तो symptoms की बात से पहले मेरे पास जो सवाल है ना वो थोड़ा सा explain करने के लिए आ रहा है कि कैसे वो अपनी wife को समझाए कि वो mentally बहुत थक चुके हैं। तो इस पर आ जाते हैं। मोहन का सवाल है कि ये इन्होंने चंडीगढ़ से लिखा है कि फिजिशियन है, रिसर्चर है, माय डेज आर फिल्ड विद इंटेंस फोकस एंड डीप वर्क दैट ऑफन लीव मी मेंटली ड्रेन्ड, बट बाय द टाइम आई रिटर्न होम इन द इवनिंग आई फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आई वांट टू एक्सप्रेस दिस टू माय वाइफ इन सिंपल टर्म्स। सो कैसे समझाएं, इन्होंने लिखा है।
0: देखिए

0: सर पहले तो आपको समझना है व्हाई यू आर हैविंग दिस फटीग एंड इफ यू अंडरस्टैंड देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू विद योर सेल्फ और ये आपकी फटीग कम हो सकती है और अगर आपकी आप खुद उसका समाधान ढूंढ लेते हैं ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर वर्किंग देन व्हेन यू विल कम होम यू विल नॉट बी टायर्ड You will be able to address to her issues also. You will be able to talk to her. तो वो आपको ये समस्या जो आप कह रहे हैं ना फटीग की आपको नहीं समझानी पड़ेगी बिकॉज आप इसको खुद ही मैनेज कर लेंगे. सो अगेन आई विल दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइंडिंग द solutions. सो solutions से ही रिलेटेड है ये वाला प्रश्न भी. सो वी विल कम टू दैट बबिता.
1: ठीक है, तो सिम्टम्स पे आ जाते हैं कि बिहेवियर में बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते होंगे जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है उनको, तो ये क्या क्या सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं?
0: हाँ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शाम को जब आते हैं वो इतने थके होते हैं. सो वन इज यू आर टायर्ड मेंटली, सो फिजिकली ऑल्सो यू फील एग्जॉस्टेड बिकॉज If your mind is not working cognitively, you are not able to do certain things. आप physically भी आपका मन ही नहीं चाहेगा उन चीजों को करने के लिए. दूसरी है इरिटेबिलिटी, आपको गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों पर. जैसे इन्हीं कॉलर की जो इन्होंने अभी प्रश्न पूछा उसी से रिलेट करती हूँ. इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरे से बात करे या वो अंडरस्टैंड करे. जब आप
1: नहीं ये चाहते हैं उसको कैसे समझाएं हम कि हम मैं इतना एग्जॉस्टेड हूँ, सिंपल टर्म्स में किस तरह से उसको समझाएं, उसे समझ में नहीं आता.
0: या सो दैट इज व्हाई अगर ये अपने ऊपर काम कर लेंगे तो उनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. और वो जैसे ये घर पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम, तो वो एग्जॉस्टन जब नहीं होगी आप थकेंगे नहीं तो आप बात भी करना चाहेंगे ना. सो इरिटेबिलिटी इज वन ऑफ द सिम्टम्स. देन एक और सिम्टम है ब्रेन फॉगिंग जिसको हम कहते हैं. जैसे धुंध होती है आजकल आप देखते हैं जब सर्दियों में धुंध होती है तो हमें क्लैरिटी नहीं रहती है. तो ऐसे ही जिन लोगों को ब्रेन फटीग होता है उनको ब्रेन फॉगिंग शुरू हो जाती है. मीन्स वो सोच नहीं पाते, वो अपना कुछ काम में उनको दिमाग नहीं लगता, अगर करते भी हैं तो गलत कर देते हैं. तो इस तरह से ये वाले अगर आपके सिम्टम्स हैं और आप डिसीजंस लेने में बहुत वक्त लगा रहे हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू जस्ट फील कि मुझे सब कुछ बंद करके अब सोना है. तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके हैं तो इट मीन्स डेफिनेटली यू आर फटीग्ड, आपको जो है डिसीजन फटीग हो रहा है.
1: अब इसका समाधान कैसे निकालेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर भी आएंगे और आप सबके और भी जो सवाल हैं वो भी लेंगे. तो फटाफट आपको किस तरह की समस्या आ रही है आप फटाफट लिख कर भेज दीजिए या करिए कॉल 2342108 या 2342108 पर. आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर. आज हम बात कर रहे हैं डिसीजन फटीग के बारे में, निर्णय की थकान जो होती है उसके बारे में. हमारी एक्सपर्ट जो बात कर रही है हमसे वो है डॉक्टर जसमीत कौर जो फैकल्टी है माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में. तो आप सबके सवालों के साथ आप फटाफट जुड़ जाइए. फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक और लौट कर आते हैं.

0: आकाशवाणी रेनबो और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ है डॉक्टर जसमीत कौर जो कि फैकल्टी है माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में और आप सबके सवालों का जवाब दे रही हैं और देने वाली हैं। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं डिसीजन फटीक पर, मतलब फैसला हम लें तो दिक्कत, नहीं ले तो दिक्कत, और अगर ले लेते हैं तो सही है या गलत, इस तरह की भी दिक्कत। मतलब मानसिक रूप से हम कितना कुछ सोच रहे होते हैं, चल रहा होता है हमारे दिमाग में, लेकिन हमें इस बात की कई बार खबर तक नहीं होती है और हम कहते हैं थक गए और लोग कहते हैं कि किया ही क्या है तुमने और ऐसी उलझने होती हैं हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है लेकिन सोचने का विषय है। और आज यशपाल जी भी ये कह रहे हैं, द्वारका वाले कह रहे हैं कि नाइस टॉपिक है और टोटली न्यू टॉपिक है उनके लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि इन्वेंटेड बाय साइकोलॉजिस्ट ओनली क्योंकि हमने इसके बारे में गहराई से सोचा नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं और शायद और अच्छे से समझ पाएंगे तो शायद हम इतना इरिटेट नहीं होंगे कोई अगर कहता है कि हम थक गए हैं तो तो इन्होंने लिखा है कि आई गेट डिसीजन फटीग मेनी टाइम्स व्हेन द मैटर ऑन विच डिसीजन इज टू बी टेकन इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, और सेकेंडली कैन इट हैपन ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप एंड अदर एसेंशियल विटामिन अबाउट और मिनरल्स, ये कहना चाह रहे हैं।
1: यशपाल जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, और बबीता जी मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक और उदाहरण लेती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि सुबह उठते हैं, अब अक्सर फीमेल्स के साथ जब हम अलमारी खोलते हैं तो बहुत सारे कपड़े टंगे हुए होते हैं, ओके, सो यू थिंक व्हाट शुड आई वेयर, और कुछ लोग कहते हैं आज सोमवार है तो मुझे ये रंग पहनना है, मंगल को ये रंग पहनना है, कुछ लोग ऐसे डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, ठीक है, वो एक ही कलर के कपड़े पहनते थे ताकि उनको डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो।
0: टाइम बचाते थे,
1: यस, योर ब्रेन इज डूइंग लेस ऑफ एक्टिविटी एंड द मोर यू आर गेटिंग कंफ्यूज। कई बार मैंने देखा है जो

0: वो कपड़े चुनने में भी मतलब 15-15 मिनट लगा देते हैं, और बाहर का मौसम देखकर आएंगे कैसा है, फिर कपड़ा पहनना है, फिर देखेंगे आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है. सो इतने जब आप उलझनों में उलझे रहेंगे, सो योर ब्रेन इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग वर्क एंड यस यू विल गेट फटीग्ड. और मैंने आपको उसके सिम्टम्स के बारे में बताया, और अब हम जो सबसे जरूरी बात है कि हम उसके समाधान कैसे करें.
1: बिल्कुल. तो इन्होंने कहा कि मिनरल्स और विटामिन्स की क्या कमी होती है.
0: हमारा ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे फटीग पर आता है.
1: ओके
0: ओके. सो लेट अस सी कि अगर मैंने इसको फटीग को हटाना है, फिजिकल फटीग के लिए तो आप आराम कर ले सकते हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन मेंटल फटीग के लिए आपको जो है इसके जो समाधान है वो कुछ अलग है. कोई इस तरह से अलग नहीं है, मतलब इट इज रिलेटेड टू फिजिकल ओनली. सो वन इज जैसे यशपाल जी ने कहा, बिल्कुल यशपाल जी आपका कहना सही है, खान पान योर लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर हैविंग you're getting up and in the morning, you know, you have 10 things to do. तो अगर वहीं पर आप प्रायोरिटाइज कर लें कि मुझे कौन सी चीज पहले करनी है, your brain becomes calmed. आपका ब्रेन काम डाउन हो जाता है.
1: ओके
0: ओके. और अगर आप उससे भी पहले 5 मिनट्स बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड जस्ट सिट विद आईज क्लोज्ड, टेक डीप ब्रेथ्स एंड स्पेंड दैट टाइम विद यू, दैट इज योर टाइम वेयर Even if thoughts are coming, just don't let those thoughts interrupt in your thinking process. सिर्फ आप अपना दिमाग शांत करिए और अपने अच्छे दिन की कामना करिए.
1: Okay.
0: So that is one thing what you can start your day with.
1: एक सवाल वैसे भी आ रहा है कॉल के जरिए, तो उनको भी ले लेते हैं. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: बबीता त्रिपाठी जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: जब वो बोर्ड के पेपर दे देते हैं उनको बड़ी राय मिलती है कि कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, स्कूल से कोई काउंसलिंग उनको मिलती नहीं. तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे, कृपया बताने का कष्ट करें. धन्यवाद. जय हिंद.
1: चलिए यहाँ पर मुझे लगता है ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके भी सवाल है.
0: सर ने बोला बच्चों को स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस भी उसी को हो सकता है जिसकी प्लानिंग सही नहीं है, जिसके डिसीजन सही नहीं है. अब जैसे अभी आपने आया, एक मैडम ने प्रश्न पूछा था कि बहुत सारी चीजें होती हैं करने को.
1: हाँ.
0: So, एक जो हमारा समाधान हो सकता है डिसीजन फटीग का, यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज. यानी अगर आपको 10 काम करने हैं, मैं 10 काम एक साथ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे डिसीजन लेना है कि प्रायोरिटी नंबर 1 पे क्या काम है, 2 पे, 3 पे, तो उस तरह से आपको काम करने हैं.
1: Okay.
0: और एक और आपको प्रैक्टिकल टिप इसके लिए बताती हूँ. आपके अगर 10 काम है, राइट डाउन दोज थिंग्स, कागज पेंसिल लेके उन चीजों को लिख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा काम मुझे प्रायोरिटी पे करना है. यू विल बी एबल टू मेक द डिसीजंस फास्टर एंड क्विकर.
1: ओके. तो और भी जो सवाल है वो आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जुड़िए अपने सवालों के साथ, क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके जो पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिसीजन मेकिंग में, आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके 9868-1070-70 पर.

0: हमने बहुत सारी बातें कर ली जिसमें कि हमें पता चल गया कि ये फटीग है क्या और किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह से बिहेवियर में हमारे झलकते हैं। लेकिन आप सबके जो पर्सनल सवाल हैं वो रह गए हैं जो आपको लगता है कि उसका जवाब चाहिए, तो उनका ले लेते हैं और साथ में सॉल्यूशंस और सारे क्या हो सकते हैं वो भी हम जान सकते हैं। मतलब मौके का पूरा फायदा उठाते हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि बिल्कुल रेडी है, डॉक्टर जसमीत कौर, और बताने के लिए कि किस तरह से इस फटीग से हम छुटकारा पा सकते हैं, यानी इसको अपने जो काम है वो आसान करके इस थकान से हम बच सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन फटीग। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि सुबह उठते हैं तो बहुत एनर्जी होती है, पढ़ने का बड़ा मन करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एनर्जी डाउन होती जाती है, क्यों?
1: और भी अगर एक दो सवाल हैं आप बबीता जी पढ़ दीजिए सो दैट आई कैन गिव अ कलेक्टिव आंसर।
0: ओके, तो ठीक है। नीता भी कह रही है कि उनको बहुत सारी चीजें एक साथ माइंड में आती हैं और कहती हैं कि चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे चीजें एक साथ होती हैं और सोचती हैं कि आज मैं ये काम कर लूंगी लेकिन वो लास्ट में हो नहीं पाता और फाइनली होता है कि कोई भी काम नहीं हो पाता। तो एक ही टाइम में इतने सारे काम करने की आदत क्या सही है, और कह रही कि हो गई है लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं है ऑब्वियसली, तभी उन्होंने क्वेश्चन किया है। और बाकी एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि रात में भी ऐसा लगता है, उनको इन्होंने नाम अभी भी नहीं लिखा लेकिन जो सवाल है बड़ा वैलिड है कि ओवरथिंकिंग है उनको कि रात में भी दिमाग चलता रहता है और ऐसा लगता है 12 घंटे सोने के बाद भी कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है।
1: ठीक, ये लगभग जो सवाल आपने बबीता जी पूछे हैं वो एक ही तरह के हैं कि हाउ टू मैनेज डिसीजन फटीग, जो दिमागी आपकी थकान हो रही है, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उनको कैसे मैनेज करें। सो नाउ मैं आपको कुछ ऐसी इसके जो है सॉल्यूशंस बताऊंगी जो कि विच आर क्विक सॉल्यूशंस एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू।
0: ओके,
1: सो सबसे जरूरी जब है हमारा डिसीजंस हम नहीं ले पाते या बहुत ज्यादा डिसीजंस में हम मतलब उलझे रहते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट

0: इम्पोर्टेंट टू रिचार्ज योर ब्रेन.
1: ओके,
0: तो जो रिचार्ज जो ब्रेन है वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप अपने मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग पे ध्यान देंगे. सो वो उसके लिए एक जो शब्द है वो मैंने कॉइन किया है वो है मी टाइम, एम और ई.
1: ओके,
0: मी टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मी टाइम का ये मतलब है कि वो समय जो मैं अपने साथ अपने उसके ऊपर बिताती हूँ, अपने ऊपर, और मेरा दिमाग जो है वो शांत रहता है. सो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा समय अपने साथ बिताइए. उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विच इज अ की टू जब आपका और डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आपका दिमाग जो है वो शांत है. एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, सिंपल आपकी जो रूटीन्स है, अपनी रूटीन्स को सिंपल बनाइए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए कि मुझे इतना वक्त कपड़े चुनने में या ज्वेलरी चूज करने में लग रहा है. मेक इट फास्ट. एंड सेकेंडली जो आप जो लोग घर से काम कर रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे भी घरों पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं या काफी ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, सो आई वुड से व्हेन यू टेक अ ब्रेक आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, टेक अ ब्रेक आफ्टर 20 मिनट्स, दैट इज कॉल्ड अ 2 मिनट ब्रेक. सो उस ब्रेक में आप ये नहीं कि अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करिए, बट उस ब्रेक में आप अपनी आईज क्लोज करके जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट एनीथिंग यू लाइक. जैसे अगर आपको कोई हिल स्टेशन पसंद है, कोई खाने में कोई चीज पसंद है, और इफ यू लाइक अ वेरी मतलब अगर आप पानी का झरना आपने कहीं देखा आपको वो पसंद है, जस्ट थिंक अबाउट दैट, बट डोंट थिंक कि मैंने इस 2 मिनट के बाद क्या करना है, फिर आपका दिमाग शांत नहीं होगा. सो दीज आर सम थिंग्स विच आर वर्केबल. एंड ऑफकोर्स जैसे बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, वो कहते 12 घंटे, सो सोने से कम 1 घंटा पहले कोई गैजेट का यूज ना करें. सो व्हेन यू डोंट यूज दैट योर माइंड स्टार्ट्स कामिंग डाउन. और जब आपका दिमाग शांत रहेगा आप सो पाएंगे एंड मॉर्निंग में आप फ्रेश उठेंगे. सो दीज आर सम हैंडी टिप्स विच आई कैन गिव यू एंड विच विल रिड्यूस योर मेंटल फटीग.
1: एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर किसी को मतलब फिर भी नहीं सही हो रहा है ये सारे चीजें करने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वो सही समय होगा जब वो ये डिसाइड करे कि अभी मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी है या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या कोई थेरेपी लेनी है, क्या करे वो?
0: देखिए, जो मैंने अभी आपको कुछ ऑप्शंस ये जो समाधान बताए हैं, सॉल्यूशंस बताए हैं, वेरी मच वर्केबल, आप खुद कर सकते हैं. लेकिन अगर आप 1 महीना करने के बाद भी आपको लगता है योर ब्रेन इज फॉगिंग, यू आर वेरी इरिटेटेड, योर स्ट्रेस levels are going up, your BP is going up, yes, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स है एलाइड प्रॉब्लम्स भी कुछ साथ में हो. आपने अपना जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12वीं का बच्चा है, उसने सारा साल पढ़ा नहीं है और अब ये सब सिम्टम्स शो हो रहे हैं, सो इट मींस यू डेफिनेटली नीड अ हेल्प. आपने अपना समय अच्छी तरह बांधा नहीं, अपना समय डिवाइड नहीं किया, और अब आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा चैप्टर की मैं तैयारी पहले करूं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी मैं पहले करूं. सो यू नीड हेल्प ऑफ एन अडल्ट. और अगर अडल्ट्स को ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उनकी इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, बीपी शूट अप हो रहा है, यस, दे नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और दे शुड ऑल्सो गो टू अ फिजिशियन सो दैट दे कैन हेल्प देम विद मेडिसिन और दे कैन प्रोवाइड देम सॉल्यूशंस, इजी सॉल्यूशंस विच विल हेल्प देम टू काम डाउन इन लाइफ.
1: और ऐसी सिचुएशन में जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सी बैलेंस डाइट, जैसे एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बहुत पुरानी कहावत है. और आप वहीं से देखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आप अगर योग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, सो इट्स अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल व्हाट यू आर लीडिंग. एंड व्हेन यू हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, विटामिन्स, अब सन बाहर धूप नहीं निकल रही है बट यू हैव टू चेक योर विटामिन डी लेवल्स, तो वो भी अगर B12 जो है, विटामिन, वो सब इन चीजों का जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, सही जो है नरिशमेंट होना चाहिए, बॉडी के लिए होगा और साथ ही साथ दिमाग के लिए भी, ये सारी चीजों का जो मेल जोल है अगर आप करेंगे, देन ओनली योर फटीग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल फटीग विल बी लेस

0: एंड यू विल बी अ गुड डिसीजन मेकर.
1: कहने का मतलब ये कि कहीं भी किसी भी तरह की थकान हो, चाहे वो मेंटल थकान हो या फिजिकल थकान हो, अगर आप बैलेंस अपने जीवन में ले आते हैं और सही से फिजिकली भी आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं और मेंटली भी उतना ही एक्टिव रखते हैं कि आपकी बॉडी को, आपके जो मेंटल लेवल है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तब तक सब कुछ सही है.
0: बिल्कुल.
1: तो मतलब बहुत ज्यादा सोचना तभी हानिकारक है जब आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं. प्रॉब्लम में नहीं आ रहे हैं तो सबके साथ नॉर्मल है.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि हम लोग भी नॉर्मली ये डिसीजन जो आपने बताया कि लेने में प्रॉब्लम तो आती है, किसी को थोड़ी सी ज्यादा आती है, किसी को थोड़ी सी कम आती है. आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे लग रहा है कि अभी जो है हम डिसीजन लेने में बहुत जल्दी करेंगे, या मतलब नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अब ये इस बात के लिए अवेयर रहेंगे कि हमारा दिमाग थक रहा है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: कि हम उस पर
0: ध्यान, क्विक डिसीजन में.
1: हाँ, अब महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि औरंगाबाद से इन्होंने लिखा है कि मैं डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता हूँ, ज्यादातर सही होता है, और लेकिन इनको लगता है कुछ जल्दी कर लेता हूँ. तो भाई आपसे टिप्स लेने के लिए मुझे आपको स्टूडियो में बुलाना पड़ेगा. आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, आप बताइए. ये तो अच्छी बात है ना कि डिसीजन जल्दी,
0: डिसीजन अगर आप जल्दी ले रहे हैं
1: और वो सही भी है.
0: हाँ, और वो सही भी है, इट मींस यू आर सॉर्टेड आउट. आपको मालूम है चार कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं या चार जूसेस पड़े हैं, मुझे कौन सा जूस पीना है, आपको जो पसंद है. ये नहीं कि मैं हर चीज टेस्ट करते रहूं.
1: स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम.
0: थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बहुत अच्छा लगा. डॉक्टर जसमीत कौर जो कि है फैकल्टी माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने आज बताया फैसले की थकान यानी निर्णय की थकान, डिसीजन फटीग पर बहुत अच्छे से इन्होंने हमें समझाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके अंतर्गत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की, जिसमें भारत और चीन सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर्स से भारत में निवेश बढ़ाने और कारोबारी अवसरों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कनाडा की यात्रा पर। सुश्री सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शंपानिये के साथ पहला आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए। यह भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों को खारिज किया। इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। ईद मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और खेल में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

मोहित चौहान और नेहा भसीन की आवाज में अभी आपने सुना एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना फ्रॉम द मूवी फैशन, प्यार है शायद। जी, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। हमेशा ना प्यार जैसा ही कुछ है जो हम महसूस करते हैं, और इसी के बारे में बात करते हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम सुन रहे हैं, इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर बुधवार दोपहर 2 से 3 करते हैं बात हम आपके हम सफर के बारे में और इस बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते के बारे में जिसे हम कहते हैं शादी। जी, शादी वैसे देखा जाए ना तो ये नहीं है कि एक बड़ी ही स्मूथ राइड होती है, ये बात तो खैर सबको पता ही है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत से जो है ना बहुत इस रास्ते में बहुत से पड़ाव ऐसे होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और देखा जाए तो प्यार उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है? नहीं, मुझे लगता है कि प्यार जो है ना वो सिर्फ एक बेस है जिसके ऊपर इस खूबसूरत रिश्ते का निर्माण होता है, और उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं होता कि आपको एक लाइफ पार्टनर मिल गया है, बल्कि ये कि आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जिससे आपकी हर अच्छी बुरी क्रेजी बातें जो है ना वो झेलने के लिए ना अलग से भगवान जो है ना हिम्मत दे देते हैं, और उसके साथ साथ उसे उन चीज़ों में मज़ा भी आता है। भाई, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर आपके रिश्ते में दोस्ती नहीं है ना तो फिर वो मज़ा जो है ना थोड़ा फीका सा पड़ जाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड बनना तो बहुत ज़रूरी होता ही है आपके लाइफ पार्टनर के लिए, ताकि आप लोग जो है ना एक दूसरे की बातों को एक ऐसे नज़रिए से समझ सकें जो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त के पास होता है, जहाँ एक दूसरे को जज नहीं किया जाता, जहाँ एक दूसरे की ना कमियाँ जो हैं वो थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करके सिर्फ दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझा जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हम बात कर रहे हैं आपके हम सफर के बारे में। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: एक पल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
8: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
7: इम्पॉसिबल
8: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
11: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
12: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
13: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
11: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
14: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
15: आज की रात मजा,
14: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
11: म्यूजिक मस्ती।
16: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
17: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
11: म्यूजिक मस्ती।
18: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
19: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो
0: खुशियों की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम में जो है ना गानों का और खूबसूरत बातों का एक मेल होता है, कुछ उसी तरह के खूबसूरत मेल को कहते हैं हम वो खूबसूरत रिश्ता, वो जिसे हम शादी का नाम देते हैं, जिसे हम अपने हम सफर का नाम देते हैं। इस बहुत ही खूबसूरत यात्रा की को हमने डेडिकेट किया है हमारा ये प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं इस समय मेरे साथ में, और हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में सुनते हैं आप इस प्रोग्राम को। और एक मजे की बात है कि दो अलग अलग लोग जब एक साथ आते हैं तो एक तरह से अगर हम म्यूजिकल टर्म्स में बात करें ना, तो दो अलग अलग लोग जब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं लेकिन धुन एक ही होती है ना, तो वो धुन जो है ना केवल एक नहीं रह जाती बल्कि उसमें दो लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना वो ऐड होकर वो एक बहुत बहुत ही अमेजिंग सी एक उसमें बात आ जाती है, और वो सिर्फ एक धुन ना रहकर एक बहुत ही खूबसूरत रागिनी जो है वो बन जाती है। वैसे देखा जाए तो अक्सर जो है ना हम लोग ये सोचते हैं कि भाई रिश्तों में जितनी ज़्यादा नज़दीकी आती है उतना ही जो है ना आपका स्पेस कम होता चला जाता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना वो कम होती चली जाती है। लेकिन इस चीज़ से अगर हम थोड़ा सा शुरुआत में ही केयरफुल रहे ना तो उससे बचा जा सकता है। कम से कम उस एक्सटेंट तक नहीं आने देते हैं हम बात जहाँ पर किसी इंसान को भी ये लगे कि उसकी तो कोई पर्सनल लाइफ बची ही नहीं है। जी हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को स्पेस देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बातों के बीच बीच में हम आपके लिए गाने बजाते रहते हैं ना, ताकि आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। और इसी का नाम तो है ना एक खूबसूरत जुगलबंदी जो हम यहाँ पर निभाते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि ये भी एक यात्रा है जो हम और आप मिलकर करते हैं। हम बनते हैं आपके हम सफर एक घंटे के लिए इस प्रोग्राम के जरिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और फिलहाल जो है ना थोड़ी ही देर में एक खास प्रस्तुति जो है वो आकाशवाणी रेनबो पर आने वाली है आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम हम कदम ये है सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी से जुड़े उस बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के लिए जो समय के साथ बढ़ता है, बदलता है और हर रोज़ ना उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इसीलिए तो एक पूरा प्रोग्राम है जो हमने डेडिकेट किया है इसको। फिलहाल इस प्रोग्राम को मुझे ख़त्म करना होगा यहीं पर, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता कि इस बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग सा गाना, ताल मूवी से मैंने आप सभी के लिए चुना है, और ख़ासतौर पर इस बारिश के मौसम में इस गाने को सुनना तो बनता ही है। आप सुनते रहिए बहुत ही अमेजिंग गाने को और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो को। फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
3: Don't tanak dum tanak dum don't tanak dum

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सके, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है
2: जी।
0: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
2: जी।
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि

0: नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं, वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों अजीत जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोता, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो

0: आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला

0: बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नील गाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा,
1: दीक्षा। आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे

गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का अंक फिर एक बेहद खास अंक हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर आम समस्या है जिस पर हम आज बात करेंगे, और वो है किडनी स्टोन, यानी जो हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है वो बहुत आम हम सुनते हैं और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, हम आमतौर पर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बताते हैं कि अरे ज्यादा पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा, या ये मत

0: खाओ वो मत खाओ, पर क्या हम सही एडवाइस एक दूसरे को देते हैं ये कई बार हम खुद भी नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए स्टूडियो में, उनसे हम सही तरह से जाने कि ये पथरी जो होती है किडनी स्टोन होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, और इससे जुड़े हुए जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो क्या है, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्या मिथक है और क्या इसके तथ्य हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में। नमस्कार और स्वागत डॉक्टर हेमंत आपका।
1: धन्यवाद मैम, नमस्ते।
0: और जैसा मैंने बताया कि आज का विषय आप पुनः एक बार सुन लें, किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स, गुर्दे की पथरी, इससे जुड़े हुए मिथक और इससे जुड़े हुए तथ्य, ये बात करेंगे हम आज डॉक्टर हेमंत गोयल से। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, किडनी स्टोन्स हम सुनते बहुत हैं पर ये होता क्या है और क्यों हो जाता है, ये दोनों कारण मैं जानना चाह रहे थे।
1: देखिए, किडनी स्टोन ये होता क्या है, जैसे कि कोई ये बेसिकली पथरी है ना। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है दो तरीके से निकलते हैं मेनली, एक हमारे मोशंस में और एक यूरिन के थ्रू। तो हमारे काफी वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू या हम ईटिंग के थ्रू या लिक्विड के थ्रू जो हम लेते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी निकालती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो, अगर हमारी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पानी को निकालने में असमर्थ हो, तो वो पानी की तरह वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे किसी भी नाले में, अगर वो पानी साफ है, नदी में पानी बहता है, तो उसमें पत्थर नहीं जमते। नाले में धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो इम्प्योरिटीज है वो जुड़ जाती है, पहले छोटी छोटी पथरी बनाती है, उसके बाद वो पथरी को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे सारी पथरियां जुड़ के एक बड़ी पथरी बन जाती है, और फिर जो यही यूरिन है उसको रुकावट कर देती है, तो किडनी का काम करने में रुकावट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है।
0: तो ये पता लगता है पथरी होती है कि मुझे इस तरह के कुछ, उनको लक्षण पता लगते हैं क्या डॉक्टर साहब?
1: देखिए, ये बहुत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लक्षण दो टाइम पे होंगे। एक होगा शुरुआत में जब वो पथरी हमारी अटक रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे लक्षण आते हैं जरूर कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा जब वो पथरी इतनी बड़ी हो गई है और उसने पूरी तरीके से यूरिन को रोक दिया है, तब आएंगे किडनी फेलियर के लक्षण। तो बीच में जनरली ये किडनी स्टोन साइलेंट होते हैं, तो ये डैमेज भी कर रहे हैं मगर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। तो इसके लिए जब परेशानी होती है तो ये कर देना कि हाँ अब तो मेरा दर्द खत्म हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि दर्द खत्म हो गया मतलब स्टोन निकल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये यदि देखनी है, अगर आपको पथरी है तो आप उसका फॉलोअप कराइए, नहीं तो बिना दर्द के ही आपकी किडनी को खराब कर देगी, तब पता चलेगा।
0: ओके, तो ये काफी सीरियस टर्न भी ले सकती है, अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल जाएं, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पर जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी जब होती है, जब शुरुआत होती है, क्या तब भी कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है कि इस तरह का हो रहा है मेरे साथ, कि बिल्कुल जब पेन के लेवल पर पहुंच जाता है तभी पता चलता
1: है? वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो छोटी पथरी है उसमें सिम्टम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि छोटी पथरी हमारी किडनी से जो आगे एक नली होती है पतली सी, यूरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें गिरने के चांसेस हैं। जब पथरी एक बार बड़ी हो जाएगी तो वो आगे नहीं गिरेगी, क्योंकि आगे की पाइप छोटी है। तो किडनी में फंस जाएगी। तो जब वो छोटी पथरी होती है शुरुआत में तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे ही वो यूरेटर में गिरेगी पेशेंट को पेन होगा, तो उसमें तो सिम्टम आ जाएंगे, मगर एक बार पथरी बड़ी हो गई
0: तो नहीं,
1: तो फिर सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो किडनी में ही बैठी है और किडनी में पेशाब रोक रही है और उसकी वजह से वो किडनी फूलती जा रही है और किडनी डैमेज हो सकती है। तो इनिशियल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। पेशेंट को पता होता है उसको 2 साल पहले पथरी का दर्द हुआ था, बट फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 2 साल पहले हुआ था, फिर तो मैं ठीक हो गया था, मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई खा ली जिससे मैं ठीक हो गया। फिर वो 2 साल बाद आता है कि जब पथरी बड़ी हो गई किडनी खराब हो गई। ये हमारे पास बहुत पेशेंट रहते ऐसे आते हैं, तो वो 2 साल पहले के दर्द को इग्नोर ना करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखें निकली है नहीं निकली है, वो बहुत जरूरी है।
0: चलिए और भी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल इस समय मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ जो उनके मन में चल रहा है वो जरूर आपके साथ शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आज हम किडनी स्टोन्स पर विस्तार से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, समय निकालकर डॉक्टर साहब यहां आए हैं, तो फायदा उठाइए और जरूर पूछिए आपके जो सवाल हैं। हम खास तौर पर इससे जुड़े हुए जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं उस पर भी डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, पर पहले एक सुंदर सा गीत सुन लें। चलिए ये गीत सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप है रेडियो डॉक्टर में, बिल्कुल होश हवास में रहिए, लापता मत रहिए और हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा लेके आता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। और आज इसी तारतम्य में हम आज किडनी स्टोन्स पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं, कॉल्स पर भी हम वेट कर रहे हैं आपकी, अगर आप हमसे पूछना चाहें तो जुड़ जाएं। पर डॉक्टर साहब, मैं यहां पर यह जानना चाहूंगी कि आपने लक्षण थोड़े से बताए कि किस तरह किडनी स्टोन के लक्षण दिख सकते हैं या उसको पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ उम्र दराज लोगों या वयस्कों में ही देखी जाती है समस्या, क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो बड़े बुजुर्ग या मिडिल एजेड लोगों को मैंने ज्यादा सुना है बोलते हुए। क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन हो सकता है?
1: अगेन ये सवाल, ये भी एक मिथ है कि ये बड़े लोगों को ही होती है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये स्टोन के पेशेंट आते हैं वो 20 से 50 साल के बीच में आते हैं, तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं स्टोन, मिडिल एज में भी दिखाई दिए जाते हैं और एल्डरली एज में भी देखे जाते हैं, पर सबसे कॉमन एज है 20 साल से 50 साल के बीच की उम्र की। तो सबसे कॉमन कारण तो यही है कि आदमी पानी कम पीते हैं या किसी प्रकार का फ्लूइड कम लेते हैं तो वो स्टोन्स बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते, तो या फिर वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि पसीने बहुत आ रहे हैं बट पानी का इंटेक कम है। जैसे अगर आप राजस्थान देख लीजिए तो वो एक स्टोन बेल्ट बोली जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीने इतने आते हैं बट पानी का इंटेक उतना नहीं है, तो वहां पर जनरली स्टोन, बड़े बड़े स्टोन पाए जाते हैं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर हमारा पसीने इतने नहीं निकलते, ठंडे इलाके, तो वहां स्टोन कम पाए जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, मगर सबसे कॉमन 20 से 50 साल की उम्र में होते हैं और वो किसी भी उम्र में पाए जा सकते हैं।
0: पर इसका कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि पेरेंट्स को है तो चांसेस बढ़ते हैं कि बच्चों को हो जाए?
1: देखिए, जेनेटिक नहीं होता इसमें जनरली, इसमें मगर फैमिलियल बोलेंगे, जो हेरिडिटरी फैक्टर इसमें है वो डाइट रिलेटेड है। जनरली देखिए, एक फैमिली में एक तरीके की डाइट ही फॉलो की जाती है। अगर आप गुजराती लोगों में देखेंगे तो वो कॉमन डाइट है, अब राजस्थानी में देखेंगे वो एक डाइट है, साउथ इंडियन होंगे तो उनकी डाइट सेम है, तो इट्स मोर रिलेटेड टू डाइट की डाइट से, कि वो डाइट तो वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, पानी का इंटेक भी वो वैसे ही लिया जाएगा, है ना। किसी की डाइट में जैसे हम जब जैसे इसमें बोलते हैं कि नमक का इंटेक, है ना, सोडियम अगर हमारी डाइट में ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस हैं स्टोन बनने के। तो हम जो प्रिकॉशन पेशेंट को बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए, सोडियम थोड़ा सा कम लीजिए, जैसे हम मसाले हो गए, चटनी हो गई, अचार हो गए, इसका इंटेक हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम बंद मत करिए, कैल्शियम मॉडरेट कैल्शियम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंगे कैल्शियम इंटेक तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सैलेट कम करें, आप पेशेंट बोलते हैं ऑक्सैलेट क्या होता है, ऑक्सैलेट जैसे चोको पाउडर है, कोको पाउडर है, इन सब चीजों में ऑक्सैलेट लेवल ज्यादा होते हैं। आजकल हर जगह AI आ गया है, कभी भी आप ये चीजें डालेंगे कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, तो वो डाइट में चेंज करने में बहुत समय लग जाता है, मगर आप इनिशियली अगर हम आज भी ट्राई करेंगे 2-3 महीने में हम उसको अपनी हैबिट में
0: बहुत अच्छे से मजबूत इरादा करना पड़ता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना।
1: ये अगर मैं बचपन से मेरे घर में सब लोग अचार खा रहे हैं तो उसको छोड़ना भी 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में बहुत आसान चीज नहीं है। तो मगर जब आपको रिकरेंट, आपको पता है कि ये इतना सीरियस ले सकती है मूड, तो फिर आपको जब उसकी अवेयरनेस आ जाएगी तो वो चीज छूट जाएगी
0: जी। तो बेसिकली खान पान और पानी, ये दो चीजें इसके मेजर फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं।
1: साथ ही साथ अगर डायबिटीज भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, वो भी फैमिली में चलता है, तो डिजीजेस जो फैमिली में चलते हैं उनमें इंसिडेंस स्टोन के ज्यादा होंगे, पर से स्टोन जेनेटिक नहीं होता।
0: तो डायबिटीज अगर किसी को है तो क्या उसको पथरी भी होने के चांस?
1: बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और खासकर यंग एज में बहुत कॉमन है। हमारे पास जितने भी 20-30-40 साल के लोग आते हैं स्टोन के साथ, फर्स्ट टाइम स्टोन फॉर्मर, तो डायबिटीज बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं कि उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन भी कॉमन, थोड़े इंसिडेंस ज्यादा है। तो डायबिटीज का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये फैमिलियल होता है, तो आपको जिसको डायबिटीज है उसको स्टोन के चांसेस भी ज्यादा है और उसको स्टोन की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा है,
0: तो उन्हें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा,
1: ज्यादा ध्यान देना
0: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान पान की बात बताई, कैल्शियम और ऑक्सलेट की बात बताई, जो ज्यादातर सुना जाता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में बीज हों तो उसको नहीं खाना चाहिए, ये कितना ये मिथ है कि ये फैक्ट है?
1: ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि ये भी हमारे से पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं कि जिस भी चीज में बीज है तो उससे स्टोन बन जाते हैं, ये बिल्कुल मिथ है। कोई भी बीज हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर यूरिन में नहीं जाता, है ना, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है। और वो सब हमारा जो GI सिस्टम है, जो हमारा ओरल सिस्टम है, वो इतना अच्छा है कि जो भी यूजलेस चीज होगी उसको वो मोशन में निकाल देगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेनली इसमें जो आप क्या चीज खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब बहुत सारे यंग लड़के होते हैं जो जिम जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो सप्लीमेंट में क्या ले रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, हैवी मिनरल्स ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी, हमारी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे पानी ज्यादा लेना है, कैल्शियम मॉडरेट इंटेक लेना है, नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं लेना, मॉडरेट लेना है, एनिमल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो एनिमल प्रोटीन अगर ज्यादा लेंगे तो उसमें फिर क्रिएटिनिन और ये सब चीजें ज्यादा होंगी जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी होगी, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। तो आपको नॉर्मल एनिमल प्रोटीन लेना है, तो ये सारी ऑक्सेलेट आपको नॉर्मल ऑक्सेलेट लेना है या ऑक्सेलेट रिस्ट्रिक्शन करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डाइट में देखोगे कि मेरी डाइट में ये किस चीज में ज्यादा है और तब आप कम कर पाओगे। जो नॉनवेज खाता ही नहीं उसे मैं बोलूंगा नॉनवेज कम खाओ, तो खाता ही नहीं है, तो ये तो उसको खुद ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी।
0: और बहुत मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो इजी तो नहीं है कि ये सोचना कि मैं ये मॉडरेट खा रहा हूं या मेरा एक्सेस हो रहा है, तो क्या कोई टेस्ट कराकर फिर आदमी उस हिसाब से करे, क्योंकि बहुत आम बात है आजकल लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, आयरन सप्लीमेंट लेना, कि अब चले 50 प्लस हो गए हैं तो ये लेना शुरू कर दीजिए, ये कमी ही होगी, B12 ले लिया, विटामिन डी ले लिया, इट्स सो कॉमन, तो क्या ये भी नुकसानदायक हो सकते हैं?
1: तो देखिए मैम, क्या होता है कि हम अपनी डाइट में हम तोल के या ग्राम से तो खा नहीं सकते
0: जी।
1: तो डाइट तो हम वही लें जो हम ले रहे हैं, जिसके हमें हैबिट है, हम उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। कि मैं अगर कोई हमें, जैसे एक बहुत बड़ी मिथ है कि दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, वो कहते हैं कैल्शियम होता है दूध में, दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, दूध में बहुत अच्छा लिक्विड कंटेंट है, इट इज वो बहुत न्यूट्रिशियस है, उसको पीने से कहीं से भी स्टोन नहीं होते। तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज से हो सकते हैं। अगर मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रहा हूँ, तो अगर हमारी मेरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने दो दी है तो मैं एक ले लूँ, मैं मॉडरेट अमाउंट लूँ, तो मुझे हमें पता है। अगर मैं कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बहुत हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं प्रॉब्लम यह है कि स्टोन हो गया, तो हम ये बनाते हैं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, इस वजह से स्टोन हो गया, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इतना पसीना वहां पर बहा रहे हैं, उतना फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे, जिसकी वजह से स्टोन है। तो हर इंडिविजुअल को अपना ना खुद ही बॉडी लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि कहां वो गलती कर रहे हैं, और फिर इसमें जो हेल्प कर सकते हैं डाइटिशियन हेल्प कर सकते हैं। डाइटिशियन बता सकते हैं कि आपका जो खा रहे हैं, आप तीन दिन का उन्होंने बोला कि आप क्या क्या खा रहे हैं बताइए, तो वो उसमें देख लेंगे कि इसमें थोड़ा कैल्शियम कम कर दीजिए इसमें, तो वो डाइट का मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो डाइटिशियन आपको
0: तरह से कस्टमाइज होना चाहिए,
1: कस्टमाइज होना चाहिए, आप जनरल नहीं बोल सकते, मगर हम मोटी मोटी ओपिनियन तो दे देते हैं पेशेंट को, बट अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और देखना चाहे तो वो डाइटिशियन को बता सकता है ये मेरी डाइट है, इसमें मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मॉडरेट कैल्शियम ऑक्सेलेट कम होना चाहिए और एनिमल प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए, मेरा फ्लूइड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। बट एक इंटेलिजेंट पेशेंट समझ जाता है कि सोडियम कैसे कम करना है, कैल्शियम मुझे बहुत ज्यादा नहीं लेना, मुझे एनिमल प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना, मुझे फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है। बट घूम घुमा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूइड इंटेक है। फ्लूइड इंटेक अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, हाइड्रेशन इतना कि आपका यूरिन साफ आ रहा है, आपका क्लियर यूरिन आ रहा है, मतलब आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, तो आपको स्टोन होने के चांसेस भी कम है, और अगर स्टोन हो जाते हैं तो वॉश आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है।
0: तो कितना यूरिन इंटेक होना चाहिए?
1: यूरिन का देखिए, आपका फ्लूइड इंटेक जो है वो मौसम के हिसाब से है, आप किस जगह पे रह रहे हो,
0: मतलब वाटर इंटेक भी मौसम के हिसाब से,
1: मौसम के हिसाब से, क्योंकि जितना आपका पसीना बहेगा, जितना वाटर लॉस हो रहा है उसके उसी हिसाब से होगा। अगर आप बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं, या गर्मियों में हम बोलते हैं पेशेंट कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, मगर यही सर्दियों में हम बोलते हैं 2.5 से 3 लीटर या 2.5 से 3.5 लीटर पानी एडिक्वेट है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पानी पी रहे हैं, जब आप कम पानी पियेंगे तो यूरिन थोड़ा येलोइश आएगा, तो ज्यादा येलोइश आ रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं, अगर यूरिन आपका पानी की तरह आ रहा है मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं। उसके ओवर एंड अबव ज्यादा पानी पीने का कोई फायदा नहीं है,
0: तो ये सेल्फ चेक किया,
1: ये सेल्फ चेक कर सकते हैं, यूरिन का कलर देख सकते हैं, वो पानी की तरह है तो आपका हाइड्रेशन अच्छा है।
0: ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ, अपना नाम बताइए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपना नाम बताइए, क्या पूछना चाहते हैं फिर पूछिए।
2: मैम मेरा नाम महेश है। मैम मेरा भाई है, उनके पति है मैम, तो कभी दर्द होता है तो इतना दर्द होता है कि उस टाइम हम खुद होपलेस से हो जाते हैं। उस टाइम मतलब क्या करना चाहिए कि दर्द थोड़ा राहत हो जाए, जैसे हॉस्पिटल दूर है तो फिर वहाँ तक थोड़ा राहत मिल जाए।
1: देखिए, ये बिल्कुल कॉमन गलती जो सब करते हैं वही आप कर रहे हैं। जब आपको पता है स्टोन है तो आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं कि जब वो दर्द हो तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं। आज जब दर्द नहीं हो रहा तो आप इलाज क्यों नहीं करा रहे? तो यही गलती जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से जब आदमी का किडनी फेलियर हो जाती है तब उनको लगता है कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि भाई हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको पता है आपके मरीज को स्टोन की प्रॉब्लम है, अब आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं, तो यही तो वेट नहीं करना आपको, अब आज दिखाइए डॉक्टर को, वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, सीटी स्कैन कराएंगे, बताएंगे आपके मरीज को इलाज की जरूरत है नहीं है।
0: तो आपको समझ में आ गया, आपको लेके जाना है फौरन है ना डॉक्टर साहब, उनके फर्दर चेकअप्स कराने हैं और जैसा डॉक्टर साहब बताएं उनको फर्दर ट्रीटमेंट कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी। और ये एक हमें मैसेज आया है ओम प्रकाश खंडेलवाल जी ने लिखा है उज्जैन से कि यूरिन करने के बाद तुरंत क्या पानी पिया जा सकता है।
1: देखिए खंडेलवाल जी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप पानी और यूरिन मतलब कोई रिलेशन नहीं है, आपको जब पानी पीना है तब पानी पीजिए। तो यूरिन की तो जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसमें उसको आप टाइम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, तो आप पानी ठीक पी रहे हैं
0: जी। देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से, नमस्कार। और डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमें अच्छी लग रही है, तो बहुत धन्यवाद। यही बात हमें लिखकर भेज रहे हैं हितेंद्र दास जी आसाम से, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सही जगह पर मैसेज कर रहे हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर हमें भेजिए। और जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें निरंतर सुनती हैं और लगभग प्रतिदिन प्रश्न पूछती भी हैं, धन्यवाद जोया जी। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर बिकॉज I feel thirsty and then go to pass urine frequently. Do that impact kidney? एक ही उनका क्वेश्चन है। और when I'm unable to go to toilet as stuck in traffic jam, do give a bit of pain in my right kidney. Is that alarming?
1: देखिए रोहित जी, इसमें ना दो सवाल हैं। एक तो है कि आपको प्यास बहुत लगती है और आप यूरिन बहुत भर जाते हैं
0: जी।
1: तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन भी ज्यादा जाएंगे, तो डायरेक्टली रिलेशन, अगर 10 लीटर पानी पीऊंगा तो 8 या 9 लीटर यूरिन आएगा, है ना। 8-9 लीटर के लिए मतलब हर आधे घंटे में

0: करना पड़ेगा अगर आप टाइम के हिसाब से लगाएं तो। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न ये है कि प्यास इतनी क्यों लगती है, उसके दो कारण होते हैं। या तो किसी को आदत होगी ज्यादा पीने की, जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं कि अब आदत हो गई है कि मुझे ज्यादा पानी पीना है ना। दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्यास बहुत लगती है। सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज है, डायबिटीज में प्यास भी ज्यादा लगती है और यूरिन भी ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेकअप करा सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायबिटिक है आप या प्री डायबिटिक है जिसकी वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है। दूसरी बात जो आपने बोला कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं और आपको उस टाइम पे आप यूरिन नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो आपकी किडनी में तो नहीं मगर ब्लैडर में जरूर पेन होगा, क्योंकि वो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा अनलाइकली है कि किडनी में पेन हो, मगर आपका जो नाभि का एरिया उसके नीचे आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आपका पेशाब की थैली ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं वो यूरिन से भर गई है, तो उस वहां पर पेन हो सकता है। तो उसका तो यही है कि अगर यूरिन पानी ज्यादा पी रहे हैं तो यूरिन ज्यादा बन रहा है, ब्लैडर जो हमारा स्टोरेज है उसमें स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जब वो भर जाएगा ज्यादा तो पेन होगा।
1: पर इन्होंने ये भी लिखा है डॉक्टर साहब कि कभी ज्यादा देर हो जाती है तो राइट साइड में किडनी में पेन होता है, तो
0: ऐसा बड़ा अनलाइकली है। कभी कभी ब्लैडर का पेन रेफर कर सकता है राइट साइड में, बट थोड़ा सा सुपरा प्यूबिक पेन ज्यादा कॉमन है ऐसी कंडीशन में।
1: अच्छा, फिर भी एक बार दिखाएं तो
0: दिखाना तो चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीना और यूरिन ज्यादा, पानी ज्यादा पीने के साथ तो यूरिन ज्यादा आ सकता है, बट पानी ज्यादा क्यों पी रहे हैं उसके लिए चेकअप कराना चाहिए।
1: और एक ये हमारे पास प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि मेरी पुत्र वधु के कुछ साल पहले पथरी का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन कहा जाता है कि वापस पथरी बन जाती है, क्या हर साल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अगर हम हर साल कराएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड का?
0: देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, ये भी एक मिथ है कि एक बार पथरी निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। देखिए कम से कम जिसको पथरी बन रही है उसको 50% चांस है कि उसको लाइफ में फिर से पथरी बनेगी।
1: क्यों तो ऐसा क्यों है?
0: क्योंकि उनकी ना डाइट चेंज होती है।
1: अच्छा।
0: ना उनका पानी पीने का ये चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, और जो उनको टेंडेंसी
1: बॉडी टेंडेंसी
0: जो टेंडेंसी से उनको बनाता वो तो करेक्ट नहीं किया, वो वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं। तो इसलिए देखा गया जिनको पथरी बनती है उनको 50% फिर से लाइफ टाइम में पथरी बनेगी। तो इसके लिए जिनको पथरी बनी है कम से कम उन लोगों को हर साल अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो हर साल कम से कम अल्ट्रासाउंड करा लें तो पता चल जाएगा पथरी जब बनी इनिशियल फेज में पता चल जाएगी पथरी बन गई। तो जिनको स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ उनको पक्का कराना है। प्लस मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पेशेंट हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो आयुर्वेदिक दवाई ले ली और उससे मेरी पथरी निकल गई है ना, तो ठीक है आपको डॉक्टर ने बोला बिना अल्ट्रासाउंड किए कि पथरी निकल गई, ये बहुत गलत है। आपको कोई भी दवाई दे, हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बिलीव करते हैं हम भी, तो आपको दवाई दी आपकी उन्होंने बोला पथरी निकल गई, फिर भी अल्ट्रासाउंड करा के उस चीज को आप वेरीफाई कराइए पथरी निकली या नहीं निकली। 90% केसेस में पथरी नहीं निकली होती और पेशेंट को बाद में पता चलता है जब वो बहुत लेट हो चुका होता है।
1: जी, और इसका कोई और ट्रीटमेंट भी हो सकता है जैसे कि होम्योपैथी, और अभी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी क्लेम किया जाता है, आयुर्वेदिक में भी क्लेम किया जाता है, तो इस तरह से क्या एलोपैथी में भी कोई दवाई है या सिर्फ सर्जरी ही एक सोल्यूशन है?
0: मैम देखिए इसमें फिर दो चीजें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर पथरी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लोगों में मिथ है कि भाई किडनी स्टोन में अल्ट्रासाउंड में पथरी आ गई अब तो ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। जनरली 6 mm से छोटी पथरी, जो हमारे पास जितने भी अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 50% पेशेंट में 6 mm से छोटी पथरी होती है जो इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड पे मिल जाती है। मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड कराऊं क्या पता उसमें 3-4 mm की पथरी आ जाए। तो 6 mm से छोटी पथरी को जनरली अगर वो अड़ नहीं रही, वो रुकावट नहीं कर रही, बहुत छोटी पथरी भी कभी कभी रुकावट कर सकती है मगर जनरली नहीं करती, तो उस केस में उनको हमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में हम उनको दवाइयों से, एल्कलाइजर से, अपनी डाइट से, अपना लिक्विड इनटेक से वॉश आउट कर सकते हैं। किडनी का बॉडी का भी अपना नॉर्मल मैकेनिज्म होता है छोटी छोटी पथरी को निकाल देने का, वो निकल जाता है। हम उन पेशेंट को बोलते हैं आप मॉनिटर करिए, कोई दर्द हो तो आइए, नहीं तो 3-6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करिए, बहुत चांसेस है ये निकल जाएगी। सिर्फ बड़ी पथरियों के लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है या जो पथरी फंस रही है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। तकरीबन 2 cm से छोटी पथरी का बिना ऑपरेशन के भी इलाज कर सकते हैं।
1: जी, तो अलग अलग किस तरह से सर्जरी की जाती है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, साथ ही साथ आकाशवाणी के प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम फोन लाइन पर हैं। हेलो,

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, सतीश गाजियाबाद से।
1: जी सतीश जी, बताएं क्या
0: मैंने
1: पूछें?
0: रेडियो अभी खोला है।
1: जी, आपको विषय पता चल गया है ना?
0: हाँ, मैं उसी विषय पे ही बात करूंगा।
1: जी बताएं।
0: एक्सपर्ट कहते हैं कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। तो क्या अगर किसी को कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो भी नॉर्मल आ रहा है, तो उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कोई मेडिसिन की जरूरत है?
2: थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वैसे हम रीनल स्टोन्स की बात कर रहे हैं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी नमस्कार।
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी प्रश्न पूछे राजेंद्र जी।
3: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्ते।
3: पहला सवाल तो है कि आज से ना 6 महीने कबल मेरी डाइट जो है 24 घंटे में मैं यही कोई 10 बजे खा जाया करा, 2 फुलके सुबह, 4 दिन में 4 शाम को। पर अब मैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 ही फुलके खा पा रहा हूँ और मेरे पेट में ना मतलब गैस बनती है और पेट भारी भारी हैवीनेस रहती है और जलन गर्मी भी पेट में होती है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई पेट में तो कई पार्ट्स में जो है वो पथरी हो सकती है, तो क्या ये किडनी स्टोन के सिम्टम हो सकते हैं?
2: ये किडनी स्टोन का सिम्टम नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर के सिम्टम है, तो पेट में जो छाले हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए मेडिसिन या गैस्ट्रो में दिखाना पड़ेगा, ये किडनी स्टोन के सिम्टम नहीं है।
3: ये है किडनी स्टोन से क्या थायराइड या टॉन्सिल का कोई कनेक्शन है?
2: किडनी स्टोन का
3: थायराइड किसी को है, टॉन्सिल तो किडनी स्टोन से रिलेशन है?
2: जनरली डायबिटीज से होता है और पैराथायरॉइड से होता है, एक ऑर्गन होता है थायराइड के पीछे पैराथायरॉइड, तो वो जिसमें बढ़ जाता है उसमें बहुत ज्यादा स्टोन के चांसेस होते हैं, मगर थायराइड से जनरली डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि पेन, जैसा ये भी बता रहे थे अभी कर्णपुरा से राजेंद्र जी कि इनको अनइजनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है, कई बार ये भी देखा जाता है कि पेन हो रहा है, आपने बताया है कि पेन होता है जब स्टोन होता है, और कुछ लोग जो है पेन किलर खा लेते हैं, उनको ये लगता है पेन हो रहा है, पेन किलर खा लेंगे हमें आराम मिल जाएगा, या उन्हें पता नहीं लगता कि इसके लिए मुझे जाना ही चाहिए, तो पेन किलर इस तरह से कोई हैबिचुअल खा रहा है जब पेन होता है तो कितना हार्मफुल हो सकता है?
2: मैम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी दवाई वो खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अगर देखिए कोई भी दवाई हम 2-3 दिन के लिए खा रहे हैं तो जनरली वो रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, वो दिक्कत नहीं है, बट कोई भी दवाई आप लंबे टाइम के लिए खा रहे हैं या आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ रही है तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए पेन किलर आपका दर्द तो कम कर देंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि थर्ड कॉमन कॉज रीनल फेलियर का पेन किलर इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। तो जो लोग ये ब्रूफिन या पिंक कलर की दवाइयां खाते हैं कि भाई मेरे को दर्द होता है मैं तो दवाई खा लेता हूं, तो ये तीसरा सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है। लाखों से ऊपर लोग हैं जिनकी पेन किलर खाने की वजह से किडनी फेलियर होती है, और एक किडनी नहीं दोनों जाती हैं जब जाती हैं।
1: अच्छा।
2: तो उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है या ट्रांसप्लांटेशन पे आना पड़ता है, तो बड़ी मेजर चीज है। आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उनको पता है, बताएंगे कि सबसे दो चीजें वो पूछते हैं कि आप बार बार दवाई दर्द की दवाई तो नहीं खाते थे और आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं खाई पेन किलर के लिए? जो चूर्ण वूर्ण होते हैं इसमें बहुत हैवी मिनरल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं सॉरी, तो उन हैवी मेटल्स से एक्चुअली जो तो कोई आप दवाई लें उसके बारे में आपको कहीं लिटरेचर पता होना चाहिए कि आप ये 6 महीने के लिए दवाई खा रहे हैं, तो ये उन दवाइयों में इतना हैवी मेटल्स होता है कि जिसकी वजह से पेन आपकी किडनी फेल हो जाती है, और ये बहुत कॉमन हम देख रहे हैं यंग बच्चों में, 25 साल 30 साल के बच्चे, उनकी एक हिस्ट्री होती है मैंने किसी झोला छाप टाइप डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली थी पेन आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, वो एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है, उन्होंने बस कहीं से सीख लिया और उन्होंने कुछ दवाई दे दी। तो प्रॉपर मेडिसिन में हर चीज रिसर्च के साथ होती है, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च की वाली दवाई दे देते हैं, लोग खा लेते हैं किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, पेन किलर का रेगुलर यूज ना करें, वो पेन किलर सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि कभी आप घर बैठे हैं और आपको पेन ज्यादा दर्द हो गया तो आपने दवाई खाई और डॉक्टर के पास चले गए।
1: जी ये बहुत जरूरी बात है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
4: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में जी नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
1: जी
2: नमस्ते
4: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: नमस्ते जी
4: डॉक्टर साहब, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था अपने आप की, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्टोन की वजह से करवाया था, तो मेरा अल्ट्रासाउंड निकला कि आपका यूरिन का रिटेंशन हो जाता है 3 बार, मतलब क्योंकि एक बार में यूरिन नहीं निकलता तो रह जाता है।
2: स्टोन तो आपको नहीं है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
4: यूरिन का रिटेंशन हो जाता है एक बार में, नहीं होता
2: नहीं, क्लियर? अगर आपको सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाने चाहिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे अगर यूरिन रुक रहा है अंदर तो वो बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं है। किसी को 100 ml रुक सकता है, किसी को 50 ml रुक सकता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं। जब तक आपको परेशानी ना हो कि आपका यूरिन धीरे धीरे हो रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में 3-4 बार

0: उठना पड़ रहा है, फ्लो कम है आपको, स्ट्रीम पुअर है, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज सिर्फ प्योरली अल्ट्रासाउंड पे अगर पीवीआर बढ़ा हुआ है तो उसमें जनरली कोई भी डॉक्टर आपको कोई बोलेगा कि आप ठीक हो।
1: थैंक यू।
0: ठीक है जी।
2: जी, ये हमारे पास एक मैसेज है, वैसे ये स्टोन से रिलेटेड तो नहीं है, आप देखें अगर आप जवाब देना चाहें तो। ये 49 इयर्स की हैं सुमन देवी, और ये लिख रही हैं कि मेरी मम्मी का नाम सुमन देवी है और उनको किडनी में मल्टीपल सिस्ट हैं, और इनको बताया है एडीपी केडी पीकेडी शायद बताया है डॉक्टर ने, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं?
0: देखिए, इसमें आपको जो मल्टीपल सिस्ट और एडीपी केडी बताया तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो डॉक्टर ने बता दिया होगा कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। अदरवाइज ये सिस्ट कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, तो आपको एक रेगुलर फॉलोअप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रहना चाहिए, जो अभी ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का मेडिकल वाला इलाज करते हैं। तो इसमें सर्जरी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर करिए कि कल को हाइपरटेंशन बनती है तो ये किडनी डैमेज हो सकती है, अदरवाइज ये ठीक चलेंगी।
2: हमारे एक साथ हमारे एक कॉलर है। हेलो।
3: हेलो,
2: नाम बता।
3: नमस्कार सर
2: जी।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
3: सर, ये जो इसका किडनी का जो ऑपरेशन होता है आजकल कते रोबोटिक या एआई से ये पॉसिबल है? और दूसरा जो है, ये जैसे किसी को ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी है, वो उसको तो बिना पेन किलर खाए हुए रह ही नहीं सकता होल लाइफ?
0: देखिए, ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी या न्यूरोजेनिक पेन होगा तो उसके लिए उस वो वाली दवाई पेन किलर दिए जाएंगे जो किडनी को डैमेज नहीं करते। जब भी डॉक्टर आपको देते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो वो ऐसी दवाई देते हैं जिससे किडनी डैमेज ना हो, है ना। मैं आपको उन पेन किलर्स की बात कर रहा हूँ जो कॉमन पेन किलर है, वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। बट ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी हो गया या आपको गाबापेंटिन दे रहा है कोई, तो वो वाले पेन किलर है जो किडनी को डैमेज नहीं करते। हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट आपको वही दवाई देगा, है ना। कोई भी डॉक्टर आपको 6 महीने के लिए पेन किलर ऐसा नहीं देगा जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाए। आज की डेट में जो नई थेरेपीज आ रही हैं, है ना, मेडिकल में जो ऑपरेटिव थेरेपीज आ रही हैं समय समय के साथ, पहले जो हम ऑपरेशन करते थे, समझ लीजिए अगर हमारे को कोई 10,000 का खर्चा आता था तो आजकल 1,00,000 का खर्चा आता है। तकनीक, बेहतर तकनीक आ गई है, वो महंगी भी है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अब कौन कहां पर कितना पैसा मांगता है वो तो हम यहां पर हमारा डिस्कशन नहीं है, मगर ट्रीटमेंट महंगे हो गए हैं क्योंकि अभी हर चीज भी महंगी आ रही है। कि अगर आपका जहां तक आपका सवाल है, रोबोटिक इसमें नहीं होता मगर एंडोस्कोपिक होता है, जैसे लेजर या RIRS जो टेक्निक बोलते हैं, उसको लेमैन में रोबोटिक बोल देते हैं, बट रोबोट का एक्चुअली इस्तेमाल इन स्टोन की सर्जरी में नहीं होता, वो किसी और सर्जरी में होता है।
2: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर्जरी की बात चल रही है तो हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, कि इसका ट्रीटमेंट के लिए किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको क्या है। जैसे ये बोल रहे हैं AI है, या आपने बताया एंडोस्कोपिक ही होता है, बट होते क्या क्या है उसमें?
0: देखिए, जो पहला सवाल है कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अल्ट्रासाउंड पे स्टोन आ गया तो मतलब आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटे स्टोन होंगे या फिर जो स्टोन नहीं अड़ रहे तो उनको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको हम बस आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 6 महीने में उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जब पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट में 3 तरीके के ट्रीटमेंट मेनली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं बिना ऑपरेशन वाली, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ESWL, वो एक ट्रीटमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से कम स्टोन में, अब ये बात नहीं है कि 2 सेंटीमीटर सब 2 सेंटीमीटर के कम स्टोन में हम ESWL दे देंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी है, मशीन से बिना ऑपरेशन के हम स्टोन तोड़ सकते हैं। एक तो वो ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट है कि जो हम कमर से एक छोटा सा इंसिजन लगा के 0.5 सेंटीमीटर का, जिसको PCNL बोलते हैं, उसमें किडनी में कितने बड़े स्टोन हो वो हम निकाल सकते हैं। तो और तीसरा ट्रीटमेंट है जो आपके इंसिजन के बिना बोलते हैं, कि वहां पर हम अगेन 2 सेंटीमीटर के जो छोटे स्टोन है जो ESWL से नहीं टूट सकते, वो हम RIRS के थ्रू, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट ढूंढने में, जो ये सारी टेक्निक जिसके पास है, और लेट हिम चूज, उसको चूज, आपने आपकी रिपोर्ट देख लिया, अब उसको देखने दीजिए, आप उनसे पूछिए आपके पास ESWL भी है, RIRS भी और PCNL भी है, अगर उनके पास ये तीनों चीजें, तो आप उन पे छोड़ दीजिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप बताएंगे कि मैंने AI से पढ़ लिया कि मेरे को तो ये ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पर डॉक्टर, वहां डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, बट हाँ उसके बाद ऑप्शन सारी होनी चाहिए। मैं एक जगह बैठा हूं जहां पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तो फिर तो मैं पेशेंट को एक ही ऑप्शन दूंगा। आपका काम है ये देखना कि हाँ इनके पास सारी ऑप्शन है, उसका ट्रीटमेंट उन्हें डिसाइड करने दीजिए।
2: जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सलमा बेगम जी ने, जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून शाली मैम एंड डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अगर पित्त की थैली में स्टोन होता है तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इलाज है, और स्टोन अगर किडनी में है और दर्द भी नहीं है तो उसको क्या सिस्टम हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया हो? तो ये सारी बातें हमने अभी कवर कर ली है मेरे

0: हिसाब से, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये काफी चीजें डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में भी था कि एक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जब पुरानी बात करें खान पान से लेकर रहन सहन, बच्चों का एक स्टाइल डिफरेंट हो गया। उसी तरह की एक बात हमारे एक श्रोता भी पूछ रहे हैं कि पहले बहुत कम सुनने में आता था खान पान जो समय था या जो सारे लोग मेहनत करते थे चलते थे तो पथरी कम सुनने में आती थी, अभी आजकल क्या फास्ट फूड का जमाना है इसलिए पथरी ज्यादा सुनने में आ रही है, ये पूछना चाह रहे हैं नरदेव सिंह चौहान कोटदार।
1: ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है कि आज की डेट में खान पान तो खराब हुआ ही है, तो सब हर चीज देखिए समय के साथ साथ चीजें अच्छी से, पहले जो हमारा देसी लाइफ स्टाइल था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं गांव से और 80 साल में भी हट्टे कट्टे होते हैं और मुझे पूछते हैं हम क्या खाएं, हम तो उनको ये बोलते हैं जो खा रहे हो वो खा लीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा ले आइए क्योंकि वो ही ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो है ठीक है ना, मगर आप जो एक दूसरी चीज बोल रहे हैं कि एक और इसका एंगल है कि पहले इतने अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते थे, इतनी इमेजिंग ही अवेलेबल नहीं थी गांव में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था स्टोन हो रहे होंगे मगर क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रहे तो वो इंसिडेंस कम लगता है। तो क्योंकि आज की डेट में दो तरीके से स्टोन बढ़ गए, एक तो हम बहुत अल्ट्रासाउंड बहुत इजिली अवेलेबल हो गए, कोई भी अल्ट्रासाउंड जाके करा सकता है, उसको पता चल जाता है स्टोन, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। और दूसरी चीज है लाइफ स्टाइल डेफिनेटली खराब हुआ है, पिज्जा और ये सारी चीजें, हम ज्यादा नमक की और पानी की इंटेक बहुत कम हो गया, बच्चों को याद ही नहीं रहता कि या हमको भी याद नहीं रहता था बहुत टाइम पहले तक जब हम पढ़ते थे कि कब हमें पानी पीना है, हम सुबह जाते थे शाम तक पढ़ते रहते थे और पानी का इंटेक कम होता
0: जी,
1: था
0: जी, जी। तो ये सॉल्ट जैसे आपने कहा सॉल्ट भी रीजन हो सकता है, तो वो सॉल्टी फूड्स और ज्यादा लेते हैं।
1: कॉलेज आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं कितने स्टूडेंट्स को आदत है पानी की बॉटल कैरी करने की, हार्डली 5% होंगे, 95% सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं बैग लेके, तो वो हैबिट होनी चाहिए कि आप अपनी पानी की बॉटल कैरी कर रहे हैं और बीच बीच में हाइड्रेशन मेंटेन रखें।
0: जी जैसे पहले सिखाया जाता था कि निकल रहे हैं बाहर तो पानी पी के निकलो, घर आ रहे हैं तो पियो, तो शायद कुछ आदतें ऐसी हैं जो अगर हम दोबारा से शुरू कराएं घर में बच्चों।
1: कहीं ना कहीं मतलब आप देखिए कॉलेज स्टूडेंट कोई पानी की बॉटल ले जा रहा है तो वो एक तरीके से उसको एक सिंबल आ रहा है कि ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पानी की बॉटल ला रहा है, टिफिन ला रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया,
0: नेगेटिव हो रहा है,
1: पहले पॉजिटिव होता था कि अपनी पानी की बॉटल ला रहे हैं अपना टिफिन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो हैं
0: जी। अच्छी हैबिट्स को हम अगर कोशिश करें कि बढ़ावा दें तो ज्यादा अच्छी बात है। और जैसे स्ट्रेस की भी बात करते हैं, स्ट्रेसफुल बहुत लाइफ है, लोग अननेसेसरी स्ट्रेस भी लेने की आदत पड़ चुकी है, तो क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्ट करता है और स्टोन को बनाने में मदद करता है?
1: देखिए ओवरऑल तो बॉडी की हेल्थ को खराब करता ही करता है स्ट्रेस, कि अगर आप देखें कि जिसको टेंशन लेने की ज्यादा आदत है वो हमारे लिए भी एक डिफिकल्ट मरीज होता है, क्योंकि वो हर चीज को बहुत, उसको ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से नहीं लगता। एक हैप्पी पेशेंट जो हमारी बात समझ रहा है और स्ट्रेस कम ले रहा है तो उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा लगेगा, बट डायरेक्टली स्ट्रेस ऐसे रिलेटेड नहीं है, बट स्ट्रेस के साथ आपकी डाइटरी हैबिट भी चेंज होती है ना, स्ट्रेस के साथ आपका फ्लूइड इनटेक भी चेंज होता है और बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जो इनडायरेक्टली आपको डिजीजेस से ज्यादा प्रोन बना लेते हैं, जिसमें से स्टोन भी है
0: जी। तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं लेकिन कुछ सवाल आपके मन में अभी भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप फटाफट हमें कॉल करिए, हमें मैसेज करिए, यहां पर एक ब्रेक लेकर फटाफट हम भी वापस आते हैं और जितने प्रश्न बचे हैं उसको जल्दी जल्दी से डॉक्टर साहब से पूछेंगे।

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। कार्यक्रम अब समापन की ओर है, थोड़ा सा समय बचा है। किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स पर काफी सारे बातें हमने नई भी जानी और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। एक हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे भी बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न पूछ लें।
1: जी मेरा नाम जियाउर रहमान है।
0: जी
1: मैडम नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार, पूछिए।
1: एक आदत है, एट प्रेजेंट आई एम एट द एज ऑफ 74 इयर्स। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब खाना खाता हूँ, एक तो गर्म खाना खाता हूँ
0: जी,
1: और उसमें पानी जो है बीच में पीता रहता हूँ, शुरू में भी पी लेता हूँ बाद में भी पी लेता हूँ। अमूमन ये सुनने में आया है कि खाना खाने के बाद में जो पानी एक डेढ़ घंटे बाद या आधे घंटे बाद पीना चाहिए, अगर ऐसी आदत है, ये मेरी आदत जो बनी हुई है 74 साल में, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अशी वहां कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो अशी कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस आदत से मेरी?
2: देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो सब चीजें ठीक है ना, मगर जनरली ये बोला जाता है और बोला भी जाता है और ये सही भी है कि आपको खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है कि पानी पीने का टाइम और खाने का टाइम अलग किया हुआ है। खाना जाएगा वो उसको उसको कच्चा कच्चा वो

0: पार्ट्स में जाएगा, फिर स्टमक अपना काम करेगा उसको डाइजेस्ट करने में। तो फूड बेटर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है अगर उसका साथ पानी ना पिया जाए। पानी पी लेंगे तो जल्दी से आगे चला जाएगा। तो जनरली मिक्स नहीं करना चाहिए, मगर आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इसलिए आपको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: जी धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब ये सुना जाता है कि पहले जैसे आप कह रहे हैं कि देर से पीना चाहिए आधा घंटा गैप करके, पर आजकल ये भी कहीं मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ कि बीच में सिप सिप करके पीना चाहिए तो अच्छा रहता है।
0: देखिए सिप करने में वो एक अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा फूड के साथ वाटर इंटेक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गंदा नहीं मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसमें बहुत फ्लूइड इंटेक है। अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 से 4.5 लीटर सिर्फ हमारी जो जीआई ट्रैक है वो एक दिन में डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो वो पानी ऑलरेडी सिक्रीट कर रहा है, वो फूड में मिक्स हो रहा है और तभी वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो रही है। तो हमें अलग से पानी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर किसी वो हैबिट पर है। जनरली हम छोटे बच्चों में तो ये बात मना करते हैं कि जिनको अपने बारे में नहीं पता कि भाई जब आप पानी साथ साथ में मत पीते रहिए, है ना, या फिर कि बहुत लोगों को आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की कि उसका निगला ही नहीं जाता उनको, वो ज्यादा निगलने के लिए है कि गले से नीचे जाने के लिए।
1: अच्छा।
0: तो फूड आप ऐसा लीजिए जो थोड़ा सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड सबसे अच्छा है। बहुत सॉलिड फूड लेंगे तो उसको फिर अच्छे से चबाइए दांतों में, तब वो जा पाएगा। अब आप रोटी ले रहे हैं और उसको मोटा मोटा निगलने की कोशिश करेंगे तो बिना पानी के नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खाने में गलती कर रहे हैं, पानी इसलिए हेल्प कर रहे हैं।
1: ओके चलिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मैसेज के माध्यम से भी हैं, देखते हैं कितने हम ले पाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं ये कि KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न जो मुझे आपसे सॉल्व कराना है कि मेरी पत्नी की उम्र 49 ईयर्स है, उसे रात को नींद डिस्टर्ब रहती है क्योंकि 2-3 बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जबकि 9 बजे के बाद वो पानी नहीं पीती है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, और शुगर बीपी नहीं है।
0: देखिए अगर रात में 2 से 3 बार उठना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, 1 तक हम नॉर्मल मान लेते हैं। 2 से 3 बार अगर उठना है तो डेफिनेटली उनका एक वर्कआउट, डायबिटीज नहीं है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो रात में पानी भी ज्यादा नहीं पी रही। तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं रात में पानी कम कीजिए, अपना शुगर का टेस्ट कराइए, दोनों ही चीजें नहीं है उनकी। तो उनका डिटेल वर्कअप होगा जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड होगा, यूरोफ्लो होगा, यूरिन रूटीन कल्चर होगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि रात में उनका यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पेशेंट में कहीं ना कहीं कार्डियक चेकअप भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली हमारा दिन में यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रात में कम होता है, एक एज के बाद रात का बढ़ जाता है, तो वो जनरली 50 साल के बाद बढ़ता है। जैसे अभी 49 की एज में अगर बढ़ रहा है तो इनका कार्डियक चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार इनका डिटेल्ड यूरोलॉजी चेकअप भी कराना चाहिए कि रात में यूरिन ज्यादा बन क्यों रहा है, बन रहा है इसलिए ज्यादा बार बार जाना पड़ रहा है।
1: जी बिल्कुल, और बस एक ये बात और मैं जानना चाह रही थी कि बार बार जैसे किडनी स्टोन होता है तो किडनी के अलावा भी कहीं कहीं और ये स्टोन बन सकता है किसी कारण से, बॉडी की कोई टेंडेंसी हो तो?
0: देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो मैंने आपको बताया किडनी स्टोन हमारा किस किस वजह से बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि किडनी में या किडनी के नीचे यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, प्रोस्टेट आता है, ये सब कनेक्टेड है, इनमें कहीं पर भी रुकावट होगी तो पेशाब जो यूरिन बन रहा है वो रुक रहा है तो उसमें स्टोन बन सकता है। तो जैसे पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किडनी के आगे एक नली होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, या ब्लैडर के आगे प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट वाले पेशेंट जो होते हैं जिनको रुकावट होती है तो उनके ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर ब्लैडर की प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में स्टोन बना तो आपसे स्टोन मत निकलवाइए, आपको प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो स्टोन फिर से हो जाएगा।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इसमें कारण का भी इलाज होगा और उसकी वजह से बने हुए स्टोन का भी इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है।
1: जी यही मैं चाह रही थी कि आप श्रोताओं को बताएं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो बहुत सारी आज हमने किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स की बातें समझी जानी, और बहुत सारी बातें और मिथक जो है डॉक्टर साहब ने क्लियर भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ रहे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और

घर की फुलवारी तक हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
3: अच्छा,
2: कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की, जिसमें भारत और चीन सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है, अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए, यह भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
4: जी हां, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूं एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अभी मैं फिल्म डर का एक गीत सुन रहा था जिसके बोल थे जादू तेरी नजर, और वो गीत सुनते सुनते मेरे दिल और दिमाग में शाहरुख खान का वो भयानक किरदार घूमने लगा जहां शाहरुख खान जूही चावला से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर जूही को उनके इस प्यार से लगता है डर।
5: बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। I love you, किरण।
4: दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या यही प्यार है? क्या इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत? दोस्तों, आज करेंगे इसी विषय पर बातचीत, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

0: जी हाँ, क्या यही प्यार है? आइए जानते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, डर फिल्म में शाहरुख खान ने जूही चावला का जीना दूभर कर दिया था, क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, और आज का युवा भी अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। क्या इसी को प्यार कहते हैं?
1: मुझे तो लगता है कि आजकल की पीढ़ी बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उनको पता ही नहीं प्रेम का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मालूम होता कि प्रेम क्या है तो आए दिन हम समाचार पत्रों में ये खबरें नहीं सुनते कि एक आदमी ने एक लड़की से इतना प्रेम किया कि जब उसका विवाह भी हो गया तब उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जाकर उसका कत्ल किया। और वो भी कैसे कत्ल किया? उसको बहाने से अपने स्कूल के बाहर बुलाया, बोला तुम्हारे हस्बैंड मिलने आए हैं, तो वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए स्कूल के गेट के बाहर आई। और उस आदमी ने, जो एक वक्त उसका प्रेमी हुआ करता था, उसने उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार चाकू मारा और उसकी हत्या करी। एक और समाचार में मैंने पढ़ा कि एक लड़का अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और एक बार उसको शक हुआ कि शायद उसके दोस्त के साथ उसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसने उनको सुन लिया बात करते हुए, और उसने अपनी पत्नी की हत्या वहीं के वहीं कर दी। क्या यही प्यार है? प्यार में क्या हत्या की जाती है?
0: यही तो हैरान करने वाली बात है कि प्यार में तो त्याग और बलिदान होता है, लेकिन आजकल जिससे प्यार करते हैं उसी की जान लेते वक्त इंसान हैवान बन रहा है।
1: वही तो मैं कह रही हूँ संतोष, आजकल के जवान लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, हवस क्या है और प्रेम क्या है इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो किसी के साथ अपना हुकअप करेंगे, अपना शारीरिक संबंध बनाएंगे, और फिर कुछ समय के बाद वो छोड़कर उसको एक्स प्रेमी का खिताब दे देंगे और आगे दूसरे रिश्ते में चले जाएंगे और फिर तीसरे रिश्ते में चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता
0: जी।
1: कई बार जवान जोड़ों को लगता है कि वो अलग हो गए, लेकिन जिस तरीके से इंसान की रचना की गई है वो इतना आसान नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, वो एक बंधन बन जाता है। और शायद इस गलतफहमी में युवा पीढ़ी हो कि हम आसानी से छोड़ देंगे रिश्ते को, आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अक्सर वो तोड़ा नहीं जाता है और लोग उस रिश्ते में बंधे रह जाते हैं। और यही कारण है कि वो आक्रोश उनके अंदर गुस्सा बन के ऐसा उबलता है कि वो खून कर देते हैं और जेल तक उनको हो जाती है, चाहे जिंदगी भर बैठ के वो फिर अफसोस करते रहें। तो ये सब जो इमोशंस होते हैं, ये जो अट्रैक्शन होती है, ये जो सोशल मीडिया में कि आप रिश्ते बनाएं, रिश्ते तोड़ें, आप अपना सोचें, मतलब एक लिव इन रिलेशनशिप रखें, आप साथ रहें भी लेकिन आपकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं हो, आप फ्री भी हो, मतलब आप साथ रहना भी चाहते हैं, आप एक बंधन में बंधना भी चाहते हैं लेकिन आप एक बंधन में बंधना भी नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से विवाहित दंपत्ति बंधते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेवारियाँ होती हैं, एक दूसरे के बीच में उनका विश्वास और प्रेम होता है, आप वो भी नहीं करना चाहते, आप एक आर्टिफिशियल किस्म की रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जिसके तो फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और बहुत खतरनाक परिणाम भी होते हैं।
0: बहुत अच्छी बात बोली है आपने विनीता जी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आज युवाओं को क्या राय देना चाहेंगी?
1: मैं कौन होती हूँ जी राय देने वाली संतोष, आजकल के जवान लोग समझदार।

0: चाहती हूँ कि खुद ही सोचें, स्वयं ही सोचें, इनकी पीढ़ी है, इनकी ज़िंदगी है, बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को, और जो हमारे बड़े लोगों ने जो विवाह परिवार जैसे सुंदर इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ख़तरनाक उनके परिणाम भी भुगतते हैं। अभी हाल ही में मुझे पता लगा, एक लड़की, उसने विवाह किया, छुपा के किया था, फिर वो गर्भवती हुई, फिर बच्चे को जन्म दिया, फिर कुछ समय के बाद उसको अपने पति के साथ नहीं रहना था तो वो पड़ोसी के साथ चली गई। पड़ोसी के साथ फिर उसने अपना अलग घर बसाया, कुछ समय वो वहाँ रही, फिर उसको लगा नहीं मेरा पहला पति ही अच्छा था, तो वापस पहले पति के पास आई और इसमें खून हो गया और ये केस अभी न्यायालय में है। तो न्यायाधीश इतने विचलित होकर, इतने परेशान होकर यही सुन रहे थे कि ये होता कैसे है, एक जवान लड़की इतने बड़े बड़े निर्णय अपने इमोशंस पे डिपेंड करके ले कैसे सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में हैं जो जवान लोग हवस को या हॉर्मोन्स को या केवल एक शारीरिक अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं
1: जी।
0: प्रेम तो जीवन भर का संबंध होता है जो कि परिवार में विवाह के रूप में ही सुंदर दिखता है, और बहुत विश्वास, बहुत धैर्य और बहुत ही प्रेम के साथ इस विवाह को निभाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि हम सीख सकते हैं और ये युवा पीढ़ी के हाथ में है कि खुद ही समझे, सोचे कि प्रेम के नाम पर अगर खून होने लग गए, अगर हत्याएं होने लग गईं, तो क्या यही प्यार है?
2: क्या यही प्यार है?
3: क्या यही प्यार है?
1: जी हाँ, यही सोचने और समझने की जरूरत है कि हम जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं उसी की जान हम कैसे ले सकते हैं।

0: दोस्तों, इस विषय पर डॉक्टर राजेश छाबड़ा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर राजेश छाबड़ा है। वायलेंट क्राइम्स विद इन द फैमिली, जिसको हम डोमेस्टिक होमिसाइड्स भी कहते हैं, के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। रोज मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कुछ न कुछ समाचार देखने को या सुनने को मिलता है कि आदमी ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने आदमी को, जिसको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, कि हत्या कर दी। इनके जो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें आपस में इनके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या आपस में ये जेलसी फील करते हैं एक दूसरे से, या ये फील करते हैं दैट आई हैव बीन बिट्रेड। ये पेशेंट वो भी होते हैं जो एक्यूट साइकोलॉजिकल स्टेट से पास हो रहे होते हैं, या डिप्रेशन के पेशेंट हुए, बहुत ज़्यादा एंग्शियस एंग्जाइटी वाले केसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में लैंड करते हैं। कुछ पेशेंट इसमें ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहल अब्यूज़ के कारण जो है, जिनकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत कम हुई हुई है, और उनके आपस में बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ, वो इतना एस्केलेट कर जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए जो है ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। बात करें अगर इनके समाधान की, तो यदि आप ऐसे किसी पेशेंट को जानते हैं जिनको कि ऐसे मनमुटाव चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स में से पास हो रहे हैं, तो उनको तुरंत ही किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प के लिए आप किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास जरूर भेजें। वो प्रॉपरली इवेल्युएट करके आपको जो सुझाए कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, दवाइयाँ लेनी है, या आपको दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो जरूर कीजिए।
0: दोस्तों, विनीता शॉ और डॉक्टर राजेश छाबड़ा की बातें सुनकर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्यार में किसी की जान लेना सही है? जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं उसके साथ ऐसा

व्यवहार क्या जायज है, खुलकर बताइए अपनी राय 7678438471 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 7678438471। इस नंबर पर आप मैसेज, फोन या ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: और दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम वो वाला लेकर आई हूं आप सभी के लिए, जो बहुत खास है, जो हमारे यंगस्टर्स के साथ जुड़ा है और खास तौर पे उनकी कैंपस लाइफ के साथ जुड़ा है। अल्फा जेन, जी हां, अल्फा जेन प्रोग्राम आप सुनते हैं 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर रोज। और इसमें हर रोज हम लेकर आते हैं हमारे यूथ के लिए कुछ ना कुछ नया, और खास तौर पे जो बुधवार का दिन होता है वो हमने रिजर्व कर रखा है आपकी कैंपस लाइफ के लिए। तो कैंपस कॉलिंग, ये है वो हमारा स्पेशल एडिशन जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार को। सो अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग में आज हम किसको लेकर आए हैं आप सभी के लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम पहुंचे एक बहुत ही रिनाउंड विमेन्स कॉलेज, नाम है इसका गार्की कॉलेज, साउथ कैंपस में जो है ये प्लेस्ड है। और यहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और उन्होंने की वहां के स्टूडेंट से बहुत सारी बातचीत, और मुझे यकीन है कि ऋचा ने बातें तो की ही, लेकिन उसके साथ साथ मजे भी बहुत किए। अगर आपको भी जानना है कि वहां पर क्या कुछ हुआ, तो चलिए आइए सुनते हैं ऋचा की बातचीत गार्की कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ। आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और ये प्रोग्राम है अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन।
2: अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ गार्की कॉलेज, और उस कॉलेज की बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियां मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम ध्वनि खन्ना है, और मैं गार्की कॉलेज में बीए प्रोग्राम परस्यू कर रही हूँ।
2: तो आप कौन सी सोसाइटी से यहाँ पर हैं?
3: यहाँ पर मैं डांस सोसाइटी से हूँ, जिसका नाम स्पार्क्स है, एंड यहाँ पे मैं

0: कंटेम्प्रेरी बैले एंड जैज की ट्रेनिंग भी लेती हूँ। तो अब तक आपने कहीं प्रोफेशनल लेवल पर कहीं परफॉर्म किया आपने?
1: यस, आई एम ट्रेन्ड प्रोफेशनली इन कथक एंड आई हैव डन मेनी शोज आउटसाइड।
0: कब से स्टार्ट किया आपने लर्न करना?
1: मैंने स्टार्ट करा था बाय द एज ऑफ 6, बट बैले जैज एंड कंटेम्प्रेरी मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट करा है सोसाइटी के थ्रू ही। सो इट वॉज लवली गेटिंग टू नो दीज डांस फॉर्म्स थ्रू द कॉलेज।
0: अगर आपने क्लासिकल सीखा हो तो आप कोई भी डांस फॉर्म को बहुत इजीली सीख सकते हैं, इज इट ट्रू?
1: यस एक्चुअली, जब बेस आपका स्ट्रांग है, क्लासिकल डांस फॉर्म इज वेरी स्ट्रांग, तो आप किसी आप वर्सेटाइल आपकी बॉडी हो जाती है, तो आप किसी भी डांस फॉर्म में जंप कर सकते हो एंड इट गिव्स यू द स्टेबिलिटी दैट यू नीड टू डू एनी डांस फॉर्म।
2: मेरा नाम सानवी है और मैं मैथ्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं नज़ाकत सोसाइटी से हूँ, नज़ाकत द इंडियन डांस सोसाइटी ऑफ गार्की कॉलेज।
0: तो कौन सी डांस फॉर्म करती हैं आप?
2: मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ कथक में एंड फोक में राजस्थानी कर सकती हूँ, भांगड़ा कर सकती हूँ, विच इज द फोक डांस ऑफ पंजाब।
0: आप मैथ्स, आपने बताया कि आप मैथ ऑनर्स कर रही हैं, विच इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स आई कैन से, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत टफ है, और उसके साथ साथ कथक किसी डांस फॉर्म परस्वे करना, ये दोनों चीजें कैसे आप बैलेंस कर रही हैं?
2: हम सोचते हैं कि जो मैथ्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट आप कथक में कोई भी टुकड़ा ले लो, टुकड़ा बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको मैथ्स की यूज लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर मैं आपको एक ताल बताऊं, तीन ताल है, तीन ताल 16 मात्रा की होती है, तो उसमें मैथ्स यूज हो रही है, तो डांस में ही मैथ्स इतनी यूज हो जाती है कि मैथ्स ऑनर्स को डिफिकल्ट लगनी ही बंद हो जाती है।
0: आप ये कह रही हैं कि जो कथक है यानी उसमें भी मैथमेटिक्स है?
2: हाँ जी, कथक इज फुल ऑफ मैथ्स। तो आप कथक का कुछ भी ले लो, आप टुकड़ा लो, आप परन लो, आप चक्करधार परन लो। चक्करधार परन इस किसी भी एक चीज को तीन बार रिपीट करना, वो परन तीन बार रिपीट होती है, तो उसमें मैथ्स ही भरी हुई है।
0: का मतलब ये हुआ कि जिसका मैथ्स वीक है वो कथक नहीं कर सकता?
2: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कथक शुरू तो करिए, आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी।
3: मेरा नाम नैना है और मैं BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ।
0: अपने मन को शांत रखने के लिए आप क्या करती हैं?
3: तो मैं क्लासिकली ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड मैंने भरतनाट्यम 6 क्लास से शुरू किया था एंड उसके बाद से मेरे पास जितने भी मेरी स्ट्रेसेस होती हैं वो सब बस्ट करने के लिए मैं डांस अपना यूज करती हूँ।
0: अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अक्सर तौर पर हम लोग सक्सेस स्टोरीज को मोटिवेशनल मान के चलते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है कि फेलियर स्टोरीज भी उतनी ही मोटिवेशनल होती हैं?
3: फेलियर स्टोरीज मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि ज्यादा मोटिवेशनल होती है, क्योंकि आप हर जिंदगी के दौर में नहीं जीत पाते हो एंड आपको ये भी सीखना पड़ता है कि हर जीत में हार और हार में जीत होती है।
0: आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम मनस्वी बोरा है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ गार्गी कॉलेज से।
0: बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं?
4: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ।
5: मेरा नाम श्रेष्ठा है, मैं BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कर रही हूँ गार्गी कॉलेज से।
0: हाउ एवरी डांस फॉर्म इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर?
5: पहले तो मुझे लगता है कि एक डांस फॉर्म जहाँ से पैदा होता है सबसे ज्यादा वो डिपेंड वहीं पे करता है। जैसे आप देखोगे इंडिया का जो भी डांस फॉर्म है, क्लासिकल या फोक, वो जगह जगह पे डिपेंड करते हैं। वहाँ का किस चीज से म्यूजिक बनता था, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, तार है या मिट्टी का है, उस तरीके से बीट बनती है, उस पर उनका डांस डिपेंड करता है। फिर आई थिंक वेस्टर्न में भी ऐसा ही सेम चीज है। जैसे आप देखोगे जैज वगैरह, बैले वगैरह, ये आया है अफ्रीका से, जब उनका ऑपरेशन टाइम चल रहा था। हिप हॉप भी तब से आया है, तो आई थिंक उनका जो इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका था, जो सर्कमस्टेंसेस थे अराउंड देम, दे इन्फ्लुएंस ह्यूजली कि डांस कैसे डेवलप होता है एंड हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स।
0: थैंक यू सो मच हमसे बात करने।
2: थैंक यू सो मच।
0: एक स्टूडेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम रिद्धिमा ग्रोवर है एंड मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ इन गार्गी कॉलेज।
0: रिद्धिमा, आज की जो एक युवा लड़की है उसका अपने पैरों पर खड़ा होना कितना मायने रखता है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो, या करियर, या उसकी पहचान क्या है उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना?
6: सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग वुमेन लाइक अस टू स्टैंड ऑन आवर फीट। आई मीन वी आर स्टडिंग इन गार्की कॉलेज एंड वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ अपलिफ्टमेंट एक्टिविटीज फॉर वुमेन। वी आर ऑल्सो वेरी सपोर्टेड बाय आवर फैकल्टी एंड बाय आवर प्रिंसिपल एंड थ्रू दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्किंग इन एन एनवायरमेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड विद आवर करियर। वी ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन एंड वी ऑल्सो गेट द अवेयरनेस। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
0: इन एक्टर सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली द सोसाइटी डू?
6: मैम, वी आर एन एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी। So we tackle social issues like upcycling, textile waste and child education. हमने बहुत ज्यादा gap देखा है children education में. Like उनको math, SST, English जैसे subjects पढ़ाते हैं but उन्हें जो actual extra curricular subjects हैं जो actually हमें job लेने के लिए चाहिए वो हम नहीं पढ़ा पाते तो हम उस पर focus करते हैं जैसे कि personality development हो गया public speaking हो गया हम ऐसे subjects लेते हैं and we help underprivileged children with these subjects. So this is one of the issues we tackle. We also tackle women empowerment through awareness of breast cancer and after support and after support surgery.
7: हेलो मेरा नाम वर्षा सिंह है मैं गार्गी कॉलेज में थर्ड ईयर की कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अफिलिएटेड टू इनएक्टस गार्गी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी दिस ईयर तो इनएक्टस के अंदर हमारे वैसे तो तीन प्रोजेक्ट्स हैं मेजर प्रोजेक्ट्स और एक जो प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट कवच वो हमारा R&D इनिशिएटिव है अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया है उसके अलावा हमारे तीन प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट विकास प्रोजेक्ट रचना और प्रोजेक्ट नीव सो जब से इनएक्टस गार्गी कॉलेज में शुरू हुआ है दैट इज 2014 से तो प्रोजेक्ट विकास रचना और नीव ने तीन मेजर प्रॉब्लम्स को टैकल किया है एक तरीके से सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट रचना आता है प्रोजेक्ट रचना के थ्रू हम फैब्रिक वेस्ट जो होता है टेक्सटाइल वेस्ट जो होता है उसको टैकल करते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट नीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट मेजरली प्लास्टिक वेस्ट लास्टली हमारा एक पायलट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट कवच का जैसे कि रिधिमा ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोजेक्ट को बट इट इज मोस्टली रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड पोस्ट सर्जरी सपोर्ट टू वीमेन हु हैव एंड्योर्ड सच प्रॉब्लम्स
0: थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए
7: थैंक यू सो मच
8: मेरा नाम विजेता है मैम मैम मैं अवनी सोसाइटी का पार्ट हूँ अवनी एक इन्वायरमेंट रिलेटेड सोसाइटी है गार्गी कॉलेज हमारी सोसाइटी का मेन फोकस यही होता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए काम करें हमारी सोसाइटी का जो मोटो है वो है होप होप स्टैंड फॉर हार्मनी ऑन प्लैनेट अर्थ हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि अगर हम एक अच्छे फ्यूचर की होप लगाए बैठे हैं तो हमें काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा
0: बिल्कुल हमें आज से ही शुरू करना होगा अगर मैं ये कहूँ कि जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं है जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं
8: मैम आई पर्सनली बिलीव कि चेंज छोटी छोटी चीजों से ही आता है हमें जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी चीज करनी है मेन बात है जैसे टैब है पानी का टैब बंद कर दे पौधों में पानी डालें और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें कम करने की कोशिश करें जैसे हम गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसे कम कर सकते हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे वो इन आदतों को डालने की जरूर कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच हमसे बात करने के
8: थैंक यू सो मच मैम
9: वाकई में बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई क्योंकि यहाँ पे जो है ना बातचीत का स्कोप जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा है क्योंकि 1967 में इस्टेब्लिश हुए इस कॉलेज में यानी कि गार्गी कॉलेज में करीब 24 कल्चरल और नॉन कल्चरल सोसाइटीज हैं जहाँ पे बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हैं और अलग अलग कॉजेज के साथ भी जुड़ते हैं और इंटरेस्ट को डेवलप करने के साथ साथ समाज को बेहतर बनाने की सोच रखना ये सभी चीजें जो है ना ये अगर आपको एक साथ कहीं मिलती हैं तो वो है हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस और इसी को डेडिकेटेड है हमारा ये प्रोग्राम नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए ढूंढ कर यूनिवर्सिटी का एक और कोना और मुलाकात करवाते हैं आपकी उस कोने से उस यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स से सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो न तेज बारिश से दिक्कत न ट्रैफिक का झंझट नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत घंटों का सफर मिनटों में
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन अभी आई है
3: बेटा कुछ खा लो मेरठ आते आते शाम हो जाएगी
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा आप बस खाना तैयार रखिए
3: इतनी जल्दी
2: देश बदल रहा है मम्मी अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
5: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप मेरे यानी स्वाति के साथ और हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ जो पहुंची साउथ कैंपस के एक बहुत ही रिनाउंड वुमेन्स कॉलेज कार्की कॉलेज और वहां पर उन्होंने इकट्ठा की बहुत सारी जानकारी बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे लोगों से की उन्होंने मुलाकात उनकी मुलाकात हुई वहां की टीचर्स से भी तो आइए जानते हैं कि वहां के टीचर्स से उन्होंने क्या बात की
6: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस कार्यक्रम में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज और मेरे साथ इस कॉलेज की एक टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एफएम रेनबो पर
7: थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम डॉक्टर नीना कुमार है और मैं प्राणी विज्ञान पढ़ाती हूँ यहाँ पर
6: मैम आज कॉलेज आने वाली लड़कियों के सपनों में और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनमें आपको क्या बदलाव दिखाई देता है पहले के कंपैरिजन में
7: पहले मुझे ऐसे लगता था बच्चों को ऐसा सिर्फ फील होता था कि उनको बस एक डिग्री लेनी है लेकिन आजकल की जो छात्राएं हैं उनके मन में ये भी धारणा है कि उनको डिग्री लेने के बाद आगे भी कुछ करना है और वो बड़े बड़े पदों पर जाना चाहती हैं
6: मैम आपकी नज़र में आज की जो यंग विमेन है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है
7: मुझे लगता है कि उनका इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी ताकत है
6: हम कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ये तो कोई कहने की बात नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हर एक लड़की को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि वो समाज में एज अ सोसाइटी एज अ फैमिली मेंबर वो उसे डेवलप कर सके
7: कि सबसे पहले उनके अंदर पेशेंस सीखना बहुत जरूरी है इस जनरेशन के लिए भी जरा सा छोटा सा कोई काम नहीं हुआ तो उनको ये सीखना है कि थोड़े टाइम के बाद भी हो सकता है यस और नो नहीं करना है
6: क्या बात है मैम कहने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे टीचर्स ही स्टूडेंट्स को राह दिखाते हैं और उन्हें उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये आपकी सलाह न केवल आपके स्टूडेंट तक सीमित रहेगी बल्कि भारत के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए
8: थैंक यू सो मच मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ
6: मैम आज के टाइम में जहाँ पर लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं वहां ये कहना भी जरूरी है कि सफलता और असफलता जो करियर के दो मायने हैं उन्हें भी स्टूडेंट्स को लेना आना चाहिए और जो ऐसी लड़कियां हैं जो असफलता के डर से बड़े सपने नहीं देखती आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी
8: तो हम तो ये समझाते हैं उनको कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने फेलियर से डील नहीं किया है हम अपने इनफैक्ट अपने फेलियर्स के बारे में उनको बताते हैं क्योंकि आई थिंक फेलिंग इज अ वेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस आई थिंक वी ऑल हैव फेल्ड इन सम वे और द अदर एंड आई थिंक मोर देन शेयरिंग आर स्टोरीज ऑफ सक्सेस वी शुड ऑल्सो शेयर आर स्टोरीज ऑफ फेलियर इट्स ऑल्सो ओके टू फेल इन फुल पब्लिक ग्लेयर इट्स ओके टू फॉल डाउन इन फुल पब्लिक व्यू एंड टू गेट अप टू पिक योरसेल्फ अप टू डस्ट योरसेल्फ ये डरने की क्या बात है जैसे हम सब फेल हुए तुम थोड़ा बहुत हो गए चलते बढ़ो आगे चलते चलो
6: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने मैम जो लड़कियां होती हैं उनके सामने पढ़ाई के बाद करियर बनाने के अलावा एक जिम्मेदारी और होती है और वो जिम्मेदारी है परिवार तो मैम पढ़ाई प्रतियोगिता परिवार और ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप कैसे किया जाए बैलेंस कैसे किया जाए इसके लिए आपकी उन्हें क्या सलाह रहती है
8: जो माँ घर पे रह के काम कर रही है और जो फादर बाहर जाके काम कर रहे हैं हम उनको समझाते हैं कि दोनों काम इक्वली वैल्यूएबल है जो घर में काम हो रहा है वो अनपेड है अनएक्नॉलेज्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं है पापा को तो सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडेज होली दिवाली क्रिसमस ईद छुट्टी मिल रही है, मम्मी को कोई छुट्टी नहीं मिल रही है. एंड वी टेल देम दैट यू हैव टू ग्रो अप टू बी रिस्पॉन्सिबल, बस अपने वो घर का चूल्हा चौका करें तो ये गलत होगा.
6: ये 3 साल में आपको क्या लगता है कि गार्गी कॉलेज से बच्चा क्या जरूर सीख के निकलता है?
8: लार्जर वर्ल्ड की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, वेदर इट इज क्लाइमेट चेंज, वेदर इट इज टुवर्ड्स आर ओन यू नो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, वेदर इट इज टुवर्ड्स यू नो हैविंग एन ओपिनियन ऑन थिंग्स. और ऐसे ना वो समझें कि क्योंकि वो लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनको ओपिनियन होने का राइट नहीं है. हम चाहते हैं कि वो सब जगह जाएं, सब जगह बोलें, सिर्फ सुने ना, डिस्कस भी करें, कंट्रीब्यूट करें.
6: हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
8: थैंक यू सो मच. थैंक यू रिचा.
6: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज, और मेरे साथ इस कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है. बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो के इस कार्यक्रम में.
9: थैंक यू. मैं अभिस्परा हूँ, गार्गी कॉलेज के छात्र परिषद की अध्यक्ष, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट.
6: कैसे मतलब आपने सोचा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है कॉलेज का या लीडरशिप में जाना है, कैसे ये थॉट आया आपके मन में?
9: थॉट तो ये मेरे मन में मेरे घर से आया है. मेरे फादर आर्मी ऑफिसर है, तो उनको देखा देखी एंड मेरी मम्मा को देखा देखी मैंने लीडरशिप में ही रहे हैं. वो बहुत लोगों का ध्यान रखा है उन्होंने, तो उनसे ये मुझ में आया है. और मैंने अपने कॉलेज में ये करने का इसलिए सोचा क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो आसपास देख के लगता है कि नहीं इधर कुछ अलग होना चाहिए, एंड उस चीज को देखने का चेंज करने का एक ही तरीका होता है और सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप उस चेंज को खुद लाएं.
10: मेरा नाम देशना जैन है, मैं छात्र परिषद की उपाध्यक्ष हूँ. मैं अभी करेंटली थर्ड ईयर में हूँ एंड आई एम परस्यूइंग बीएफ लाइफ साइकोलॉजी ऑनर्स.
6: एक वुमेन्स पॉलिटिक्स में कैसे मेजर चेंज ला सकती है, बीइंग अ वुमेन पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है?
10: आई फील एज अ वुमेन बिकॉज वी आर कंपैरेटिवली मोर इमोशनली अवेयर एंड मोर इमोशनली कॉम्पिटेंट, तो आई फील कि हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके अपने डिसीजन ले सकते हैं. बिकॉज आई फील बिकॉज हम लोग बहुत हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है दैट इज़ क्वाइट ओपन क्वाइट वाइड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंसिडर करके जिसके बारे में सोच के सेंसिबली डिसीजन ले सकते हैं.
11: मेरा नाम अदिति कुमार है, मैं गार्गी कॉलेज थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं बीए प्रोग्राम में एनरोल.
6: तो ये बताइए कि आज की जो लड़की है वो अपने करियर के फैसले लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंस उसे आपको क्या लगता है कहाँ से आता है? एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से या उसके दिल से?
11: टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक आता ये इंसान के अंदर से ही है, पर उससे ज्यादा आई फील लाइक इट कम्स फ्रॉम अदर गर्ल्स दैट दे सी एज वेल. सो व्हेन दे सी अदर गर्ल्स सक्सीड इन लाइफ इन साइंटिफिक एरियाज, इन टेक एरियाज, इन फाइनेंस एरियाज, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन इंडिया स्पेशली.
6: एब्सोल्युटली. अच्छा, कॉलेज लाइफ में पढ़ाई, करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपने ड्रीम्स के बीच बैलेंस करना आपको कितना टफ लगता है? आपको क्या लगता है कैसे आप इसे मैनेज कर पाएंगी?
11: अभी स्टूडेंट होने के बाद भी

0: थोड़ा सा टफ तो है, पर आई थिंक 2 साल स्टूडेंट होने के बाद थर्ड ईयर में थोड़ा सा बैलेंस आया है, टाइम मैनेजमेंट करना आया है, और आई थिंक पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ लॉट ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स.
1: आपको फैमिली में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है?
0: मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और हर चीज में सपोर्टिव हैं, मेरे इंटर्नशिप्स को लेके, मेरी सोसाइटी को लेके, मेरे पढ़ाई को लेके मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं.
2: हेलो, माय नेम इज श्रेया, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन गार्गी कॉलेज.
1: ओके, एक मैं वर्ड बोलूंगी आपको और उसके लिए आपको एक वर्ड देना है, ठीक है? यानी कि मैं एक शब्द बोलूंगी, उसे सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है आपको वो बताना है. ओके, कॉलेज लाइफ,
0: एंटरटेनिंग, सक्सेस, मीनिंगफुल, लव, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, करियर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी,
1: मनी,
0: नीडी,
1: ड्रीम
0: टू बी इंडिपेंडेंट,
1: फेलियर,
0: इनएविटेबल.
1: क्या बात है, सारे जवाब तुरंत.
3: हेलो, मेरा नाम रिशिता है, मैं गार्गी कॉलेज में थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ. मैं बीए प्रोग्राम में पढ़ती हूँ और मैं इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी की.
1: तो मैं कुछ शब्द बोलूंगी और उसके बाद आपको उस शब्द से जुड़ा हुआ एक शब्द बोलना है. ओके,
0: योर फ्यूचर इन वन वर्ड,
3: सक्सेसफुल,
0: दिल्ली,
3: होम,
0: अटेंडेंस
3: मैंडेटरी,
0: एग्जाम्स
3: गुड रिजल्ट,
0: मंडे मॉर्निंग
3: टायरिंग,
0: बेस्ट फ्रेंड
3: क्लोजेस्ट,
0: फर्स्ट सैलरी
3: फॉर माई पेरेंट्स,
0: मम्मी,
3: होम.
0: योर कॉलेज इन वन वर्ड,
3: safety space.
0: Your generation in one word,
3: motivated.
1: Wow, that's really great. यहाँ आके मुझे लग ही रहा है वो vibrations हैं. All of you are really motivated. Thank you so much हमसे बात करने के लिए.
3: Thank you so much. Hello, मेरा नाम संस्कृति शर्मा है, मैं थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट की स्टूडेंट.
1: तो पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में?
3: पॉलिटिकल साइंस के बाद मैंने एमए करने का सोचा है, उसके बाद पीएचडी, एंड देन मैं आगे रिसर्च में या फिर प्रोफेसरशिप में एकेडेमिया में जाना पसंद करूंगी.
1: गार्गी कॉलेज ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे एक बूस्ट दिया है?
3: आई थिंक मैं जब स्कूल में थी तब मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती थी और मुझे बहुत ज्यादा एक स्टेज फ्राइट भी था. बट आई थिंक जब से मैं गार्गी में आई हूँ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली है, जैसे लीडरशिप की भी, जैसे मैं अपनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, तो अब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और यू नो टू हाउ टू यूज दैट प्लेटफॉर्म, सो दैट इज व्हाट गार्गी हैज गिवन मी.
4: मेरा नाम कनिका नरसिंघानी है, मैं गार्गी कॉलेज में बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ एंड आई रिप्रेजेंट गार्गी कॉलेज एज पार्ट ऑफ यूफनी द वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी.
1: एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? जॉब और स्टार्टअप?
0: जॉब.
1: सक्सेस या सेटिस्फेक्शन?
4: सेटिस्फेक्शन.
1: मनी और पैशन?
4: पैशन.
1: बुक्स, पॉडकास्ट?
4: बुक्स.
1: एआई अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस?
4: चैलेंजेस.
1: एक स्किल जो हर किसी को सीखनी चाहिए?
4: नेटवर्किंग.
1: तो गार्गी कॉलेज में आकर आपने म्यूजिक को कैसे सीखा या म्यूजिक की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
4: सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स सीट्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा स्टूडेंट्स एंड आई एम एन ईसीए स्टूडेंट थ्रू वेस्टर्न म्यूजिक कैटेगरी. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ यूफनी व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड आई फील लाइक इससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं बिकॉज यूफनी एज अ सोसाइटी बहुत अलग अलग काइंड ऑफ म्यूजिक गाते हैं. हम एक पीस तैयार करते हैं जिसमें हम वेस्टर्न क्लासिकल गाने की कोशिश करते हैं, पॉप सॉन्ग्स गाने की कोशिश करते हैं, जैज, और इससे मुझे लगता है जब से मैं आई हूँ मेरा जो म्यूजिकल सेंस है और जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है.
1: ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है एंड द वेस्टर्न म्यूजिक, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर?
4: आई फील लाइक एक्सपोजर वाइज बहुत अलग अलग होते हैं दोनों, दोनों का सिंगिंग टेक्निक स्टाइल बहुत अलग होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कई चीजें बहुत कॉमन भी है जैसे कि सारे गामा पा धनी सा वेस्टर्न म्यूजिक में डोरे मीफा सोला टीडो हो जाएगा, पर एट द कोर ऑफ इट आई फील लाइक म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट.
5: मेरा नाम आयशा जेटली है, मैं बी कॉम ऑनर्स पढ़ रही हूँ, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड आई एम द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यूफनी.
1: ओके, तो आप भी सिंग करती हैं?
5: हाँ जी.
1: ओके, तो अब आप म्यूजिक की बात कर रही हैं तो हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे आप दोनों से.

0: बहुत बहुत गुड विशेस आप लोगों के लिए। करियर है आपका, डांस में बने, सिंगिंग में बने, या आपका जो आप चाहते हैं वो बने, सक्सेसफुल हो, ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
1: थैंक यू मैम।

0: दिल धड़कने दो, इन आंखों को सपने देखने दो, इन अरमानों को पंख लगने दो। जी यही है वो एनर्जी, यही है वो वाइब्स जो कि हमारे कैंपसेस में आपको मिलती है। हमारे जो जेंसी हैं वो वहां पर नई नई सपने देखते हैं, दुनिया को बदल डालने के इरादे रखते हैं, और ये सारी की सारी बातें जो उनकी है, जो उनकी अकेडमिक से जुड़ी हैं, इंटरेस्ट से जुड़ी हैं, उसके साथ साथ आने वाली जिंदगी से जुड़ी हैं, इन सब चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ना हम लेकर आते हैं हर बार समेट कर आप सभी के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं आप सभी तक। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और इसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं साउथ दिल्ली का एक बहुत ही लीडिंग विमेंस कॉलेज है गाकी कॉलेज, और वहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और वहां पे की उन्होंने ढेर सारी बातचीत, बहुत सारी आप सुन चुके हैं। आइए अब मुलाकात करते हैं वहां की प्रिंसिपल से ऋचा के साथ।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज, इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद, और आपका भी यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम वंदना लूथरा है, मैं पिछले 9 महीने से यहाँ पे प्राचार्य का काम कर रही हूँ, इससे पहले मैं भौतिक विभाग में एक प्रोफेसर थी।
1: मैम कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं?
2: हमारा कॉलेज तीनों तरह की स्ट्रीम्स में कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और एजुकेशन सभी हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, और टोटल मिला के हमारे 20+ कोर्सेज हैं यहाँ पे।
1: मैम क्या कॉलेज कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ऑफर करता है?
2: हमारे यहाँ पे एड ऑन कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इस तरह के काफी कोर्सेज टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं और अलग अलग विषयों पे भी होते रहते हैं।
1: किस तरह आप लोग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं बाहर के वर्ल्ड के लिए?
2: हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप्स को काफी तवज्जो दी जाती है, और इसके हिसाब से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर में अभी हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेन किया जा रहा है। प्लेसमेंट हमारा हर साल बढ़ रहा है, जैसे अभी इस बार हमने एक स्पेशल ड्राइव सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए किया, जो कि इन एडिशन था जो हम रेगुलरली करते हैं।
1: आप जानती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे विमेन कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे में आपके हिसाब से गार्गी कॉलेज कैसे स्टैंड आउट करता है?
2: हम यहाँ पे जो भी हमारे आउटगोइंग स्टूडेंट होते हैं उसमें ये ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि या तो वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं या फिर उनको जॉब मिल रही है। अगर ये करके हमारे एक हैवी परसेंटेज जो है इन दोनों में जा रहा है, तो वही उसी से हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो अपने पैशन के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बना रहे हैं। ये दोनों चीजें एक पैरामीटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने किसी पैशन को आगे परस्यू करना चाहते हैं।
1: मैम आप गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो जरूर आपके लिए कोई बहुत ही मोमेंट रहा होगा जो आपके लिए बहुत प्राउड का होगा, वो प्राउड मोमेंट आपके लिए कौन सा है?
2: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक मोमेंट नहीं है, बहुत सारे मोमेंट डे टू डे बेसिस पे आते रहते हैं। जैसे अभी इस साल में हम अपना 60वां साल मना रहे हैं, और हमारे को अभी भारत सरकार में डाक विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमारे कॉलेज के नाम पे एक स्टैंप जारी की है, कमेमोरेटिव स्टैंप, एज वन ऑफ द 4 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेन कॉलेजेस। इसके अलावा जब हमारे बच्चे हमें बताते हैं कि उनका अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट हो रहा है, कोई बच्चा हमारा एयरफोर्स में जा रहा है, कोई बच्चा अगर हमारा यूपीएससी में जा रहा है, या कोई बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है और वहां पे अलग अलग तरह से अपनी जो उसने प्रतिभा है उसको दिखाने की उसको मौका मिल रहा है, तो वो सारे जो मोमेंट्स हैं आई वुड से कि वो सारे एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं।
1: मैम आप आज एक प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ कार्यरत हैं, तो मैम जब कभी आप स्टूडेंट्स को देखती हैं अपने कॉलेज में आसपास, तो अपने कॉलेज डेज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है?
2: सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि कॉलेज में रहते हुए आप हमेशा अपने आप को उसी एज का ही समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें यही दिखाते हैं कि उस टाइम पे हम इसी तरह के थे और ऐसा करते हैं, तो वो यादें हमेशा याद ही रहती हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम लोग इकट्ठे मिलके मूवी देखने जाते थे, और जैसे ही कोई अच्छी मूवी रिलीज होती थी तो एक ग्रुप बन जाता था और ये डिसाइड होता था कि कब जाना है, तो वो सब चीजें अब वो फिर से याद ताजा हुई जाती है करने।
1: मैम आप एक स्टूडेंट रही थी, अब आप एक बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज की आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन जब स्टूडेंट होंगी तब कुछ ना कुछ आपके गोल्डन मंत्रास होंगे जो आज आपने स्टूडेंट्स को आप पास ऑन करती हैं, आपके वो गोल्डन मंत्रास क्या हैं?
2: मैं यही स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको पैशन के साथ करिए। जब आप पैशन के साथ करते हैं तो आपकी बाकी की आसपास की प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी, और जैसे जैसे टाइम आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करिए। अगर इवॉल्व करते हैं तो आपका यू आर प्रोग्रेसिंग विद द टाइम्स, एंड इफ दैट हैपेंस ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट। एंड टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सभी को आई थिंक अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका काम जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड दैट हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर ऑल।
1: बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, न केवल ये आइडिया मिला कि आप एक कितनी बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके बाद भी एक स्टूडेंट आपके अंदर आज भी जिंदा है जो फिर से वो भी जाना चाहता है, जो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच।
0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, और आज ये स्पेशल एडिशन आप तक पहुंचा हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ फ्रॉम द विमेंस कॉलेज गार्गी कॉलेज। जी हाँ, ये कॉलेज जो 1967 में 207 स्टूडेंट साथ ही 16 फैकल्टी मेंबर्स और केवल दो कोर्सेज के साथ शुरू हुआ था, आज एक बहुत लंबा सफर जो है वो तय कर चुका है। हिस्ट्री पीछे जा चुकी है, फ्यूचर में आगे पॉसिबिलिटीज बिखरी हुई हैं। आगे इवॉल्व होना, आगे अपडेट होना और आगे बढ़ना, यही मंत्र है जो अल्टीमेटली जो है हमें हर कॉलेज से मिलता है कि समय के साथ बदलते रहें, आगे बढ़ते रहें और नई नई पॉसिबिलिटीज तलाशते रहें, नए नए आसमान आप खोजते रहें। इसी बात के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम जो है यहीं पर समेटना चाहती हूँ, समय इजाजत नहीं देता। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गार्गी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है ये, और हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने की ये सारी मेहनत, सारी बातचीत आप तक पहुंचाने की। फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित कहा है और कहा है कि भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है और कहा है घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया जाए। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। ई श्रम पोर्टल को आज पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, हमारी दिल्ली में है ना भारत के हर राज्य के लोग मिल जाएंगे और इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए आबादी के हिसाब से तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट

बंगाल के लोग सबसे ज्यादा लोग आते हैं और रहते भी हैं। तो वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो केरल से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली आते हैं, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर सबसे आखिर में नंबर आता है कर्नाटक का। कहने का मतलब यही है कि दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, हर राज्य के लोग, हर धर्म में आस्था रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। प्यार, मोहब्बत, सद्भाव सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए दिल्ली सबके दिल में धड़कन बनकर धड़कती है। दोस्तों, आज सिटी लाइट्स में हम आपको दिल्ली की चकाचौंध में उन जगहों पर ले जाएंगे जहां आज हो रहा है कुछ खास। जी हाँ, खास। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, प्रोग्राम सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

जी हाँ, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिना नहीं जीना। वैसे कहते हैं ना कि सावन के महीने में तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि और हर कोई यही चाहता है कि उसका प्रियजन उसके संग रहे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सावन के झूले भी ना उस तन्हाई को महसूस करने लगते हैं। लेकिन वो तन्हाई तब खुशी में बदल जाती है जब अपनों का संदेश पहुंचता है, तब चेहरे पर खुशी देखने लायक होती है ना। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप है जिसके जरिए आप अपना संदेश तुरंत पहुंचा देते हैं या फोन कर लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन एक जो सिस्टम था बहुत जमाने से था जिसकी आस हम सब देखा करते थे, वो था डाक विभाग के द्वारा जब चिट्ठी आती थी पोस्टमैन लेकर आता था, है ना। वैसे समय के बदलते परिवेश में जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो वहीं हमारे देश में 2025 में डिजी पिन मतलब डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी, जिसको भारतीय डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और इसरो के NRSC के साथ मिलकर विकसित किया था इस डीजी पिन को। अगर आप अपना 10 अंकों का डीजी पिन पता करना चाहते हैं तो सरकारी डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना डीजी पिन पता कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिजी पिन का पता क्यों करना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पारंपरिक पिन कोड होता है हमारे पास, जैसे दिल्ली का है अगर 110001 यहाँ का है आकाशवाणी का, और वैसे ही आपके एरिया का है, तो जब उसी कोड के द्वारा पत्र पहुंचते हैं आपके घर तक, उस कोड से पूरे इलाके का पता चलता है, लेकिन डिजी पिन से बिना भटके सीधे आपके घर के दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, डिजी पिन के द्वारा। और यह हम आपको बता दें कि यह डिजिटल मैप और GPS सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है, जिससे नेविगेशन आसान हो जाता है। इसीलिए डिजी पिन का पता सबको होना चाहिए। 4x4 मीटर की सटीक लोकेशन मात्र 10 अक्षर के कोड से बता देती है डिजी पिन। तो बस डिजी पिन का पता करिए, आप डाक विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप पता कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर, एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, सावन में मौसम बदलता है ना, तो सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि न्यूज में, अखबार में, टीवी में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी हमने न्यूज में भी आपको बताया कि आजकल H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले काफी देखे जा रहे हैं और हर शहर में देखे जा रहे हैं। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है और इसमें ये लक्षण ये होते हैं कि तेज बुखार आता है, खांसी है, गले में खराश है, बदन दर्द और थकान जैसे ये लक्षण नजर आते हैं। ये खांसने और छींकने से फैलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी रखने की जरूरत है। आप हाथ साबुन से धोएं, भीड़ में जब निकलें तो मास्क जरूर पहने और बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने आप दवा ना खाएं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, हम हिंदुस्तानियों का काम क्या होता है कि डॉक्टर एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, हम उस प्रिस्क्रिप्शन को रख लेते हैं और बार बार उसी दवा का सेवन करने लगते हैं। अब बिना बताए हुए या तो हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं और उनसे दवा ले लेते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस समय ऐसा जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए आप खुद से दवा ना लें, बल्कि आप डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप दवा लें। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर, आनंद लेते रहिए मधुर मधुर गीतों का, क्योंकि और भी ढेर सारी जानकारियां हम लेकर आ रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप लोगों के लिए है, जो फिल्म हमने लिया है दिलवाले से, अरिजीत सिंह की आवाज है और बहुत ही प्यारा सा गीत है, दिल के करीब, बार बार सुनने का मन करता है। आप भी आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सिटी लाइट्स, और अभी आप सुन रहे थे मीका द्वारा गाया ये गीत जो मैंने प्ले किया था। और आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि ये गीत है गिनी वेट सनी फिल्म का। आप सोच रहे होंगे कि ये तो गीत मीका का 1998 में रिलीज हुआ था। जी हाँ, जिसे मीका ने खुद गाया था, लिखा भी था और कंपोज भी किया था, और इसी गीत से मीका को एक पहचान भी मिली थी, है ना। आप सोच रहे हैं ना। वैसे एक बात बताऊं, इस गाने में 2020 में दोबारा रिक्रिएट किया मीका सिंह ने नेहा कक्कड़ ने। लेकिन एक बात तो सच है कि इनोवेशन है ना, होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। अब देखिए, दिल्ली शहर में बारिश होती है, दिल्ली क्या पूरे कहीं भी बारिश होती है, तो जो मौसम विभाग होता है वो मौसम बता देता है कि कब कब बारिश होनी है। लेकिन अगर हर घर में एक इस तरह का एक रेन डिटेक्टर बन जाए, ऑटोमेटिक अगर वो बन जाए, तो आप सोचिए कि कितना फायदा होगा। सबको पहले ही पता चल जाएगा कि अब बारिश होने वाली है। अक्सर तो परेशान तब हो जाते हैं ना, कपड़े हम बाहर रख देते हैं सूखने के लिए और बारिश अचानक आ जाती है। अच्छे कपड़े सूख चुके थे लेकिन बारिश ने सत्यानाश कर दिया, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं बड़े टैलेंटेड हैं हमारे दिल्ली शहर में भी और हमारे हिंदुस्तान में भी, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि वो कुछ अपना दिमाग सोचते ही रहते हैं। और ऐसे ही एक है नवा शकेब हैं, जो वो 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने एक अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी तरह का एक ऑटोमेटिक रेन डिटेक्टर की खोज की है। जी हाँ, उन्होंने बनाया। हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर,
0: नमस्कार। नवा शकेब
1: जी,
0: अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ, फ्रॉम सेंट पेडेलस कॉलेज।
0: अच्छा, ओके। अच्छा एक बात बताइए ना भाई, ये जो ख्याल आया, जो खोज आपने की है, दिल्ली वालों को बताइए कि ये खोज कैसे की, आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया?
1: एक्चुअली रिसेंटली अभी हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ने साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करा था, तो उसके लिए हमारे क्लास टीचर डॉक्टर परवेज अली सर ने हमें काफी मोटिवेट करा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि नॉर्मल हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज करा जा सके।
0: नहीं, वो तो उन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया, सजेशंस भी दिए होंगे और आपको इंस्पायर भी किया होगा। लेकिन कुछ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जैसे मेरे साथ अनुभव ये हुआ है, बहुत अक्सर होता है अक्सर कि हम जब छाता लेकर नहीं जाते तभी बारिश शुरू हो जाती है ना। या कपड़े हमने सुखाए हैं छत पर और बारिश सूख गए हैं, बस हमने कहा अभी नहीं, हम 10 मिनट बाद जाके उतार लेंगे, लेकिन तभी देखते हैं कि बारिश हो जाती है। लेकिन आपने जो रेन डिटेक्टर बनाया है, वो भी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपकी मम्मी का पापा का कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ना इसे?
1: जी, ये बहुत कॉमन की प्रॉब्लम है, मम्मी भी अक्सर बोलती है कपड़े उतारो और ये वो भूल जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने और मेरी टीममेट्स इप्सिता, अन्वेषा और शानवी, हम सब ने मिल करके सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि काफी अच्छा उसका इम्प्लीमेंट करा जा सके।
0: तो मतलब चार लोग आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट है, चारों ने मिलकर ये बना लिया?
1: जी,
0: मिलके बनाया है। अच्छा, हमारी शुभकामना है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप सरकार द्वारा संचालित कई बेहतरीन योजनाओं, प्लेटफॉर्म से वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और अपने प्रोजेक्ट का पेटेंट कराने का भी मौका प्राप्त कर सकती हैं, है ना?
1: अच्छा जी।
0: अच्छा एक बात और बताइए, और क्या करने का इरादा है इसके अलावा?
1: और इसके अलावा बस इसी तरह से इनोवेशन करने का, एंड देन लाइफ को और बेटर और इजी बनाने का प्लान है फ्यूचर में।
0: अच्छा, क्योंकि दिल्ली शहर में है ना बहुत ट्रैफिक हो जाता है, खोज करिएगा इस विषय पर भी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ट्रैफिक बहुत स्मूथली चलता रहे और लोग अपने घर से दफ्तर पहुंचते हैं, दफ्तर से जब घर आते हैं तो वो जल्दी पहुंच सके।
1: बिल्कुल।
0: चलिए नवा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आप बिल्कुल लाइव थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और आपने बताया कि बारिश आने से पहले, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मौसम विभाग जो होता है वो हमें बता देता है कब कब बारिश होगी, हम इंतजार करते हैं, लेकिन आपका इनोवेशन ये बता देगा पहले से ही कि बारिश शुरू हो चुकी है और घर को भी कवर कर देगा, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवा हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम सिटी लाइट्स विद एसआर बोले तो संतोष राव, और अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, कुछ देर में, और एक खास प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली शहर में और बस खत्म होने वाला ही है वो प्रोग्राम, और इसी का हम इंतजार भी कर रहे हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से देखें तो हमारी सुरक्षा में लगी फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा करती है। और अभी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और इसीलिए दिल्ली में सुरक्षा की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। आप सबका सहयोग भी जरूरी है। वैसे जरूरी तो मनोरंजन भी होता है जिंदगी में, है ना, और इसीलिए दिल्ली में रोजाना कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो बहुत ही खास होता है। और आज राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र भारत मंडपम दिल्ली में एक बहुत ही खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर प्रिंसिपल क्यूरेटर एम अंसारी जी। फोन लाइन पर आइए, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप सर?
1: हाँ बस बढ़िया।
0: अच्छा, आज बहुत बहुत मुबारक हो इस जो इनॉग्रेट हुआ है, हम कह सकते हैं आम पब्लिक के लिए जिसके शुरुआत किया गया है, प्रागैतिहासिक जीवन दीर्घा, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए जरा।
1: यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र पर एक हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक लाइफ जो प्रागैतिहासिक दीर्घा है वो दर्शकों के लिए खोला गया है। और ये दीर्घा तब जो लुप्त हो चुका है, जो संसार लुप्त हो चुका है, उसका वहां पे ले जाने का एक प्रयास है। जो लाखों वर्ष पहले जो मौजूद थे जीव जंतु, वहां की एक रोमांचक झलक ये प्रस्तुत करता है। तो ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत पहले लुप्त हो चुकी हैं हमारे ग्रह से, और अलग अलग भूवैज्ञानिक काल की मशहूर प्रजातियां हैं इसमें, जैसे ट्राइलोबाइट या विशाल बिच्छू, और शुरुआती पक्षी जो हैं, या और साथ में अब उसके बाद जो डायनासोर का युग था, और अंत में हम लोगों ने नियंडरथल थे को समाप्त किया है। तो जिस क्रम में उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उद्विकास हुआ था, उस क्रम में इसको दिखाया गया है
0: जी। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी आई होंगी।
1: हाँ, चुनौतियां ऐसे कह सकते हैं कि विजिटर का ये एरिया ऐसा होता है कि थोड़ा विजिटर को रोक करके और फिर हम गैली को ये रिनोवेट करते हैं या बनाते हैं, तो थोड़ा विजिटर को थोड़ी परेशानी होती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा और बहुत टफ टाइम टास्क था हमारे पास, मतलब 6 मंथ में इसको करना था, तो वो हमारे सामने एक चुनौती थी कि इतने कम समय में हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम ने किया इसको, और ये अभी सुविधा दिल्ली वालों के लिए ये उपलब्ध है, तो अधिक से अधिक लोग आकर इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: अच्छा, मैं ये देख रहा था जो आपने इनविटेशन भेजा है उसमें देख रहा था, तो गैलरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम करोड़ों साल पीछे चले गए हों।
1: जी जी।
0: अच्छा, जो मेहनत की है, जो आपने कहा 6 महीने के अंदर आपने ये समय लगाया, शोध किया, तो आपके इसके अंदर जो सबसे मुख्य आकर्षण क्या है
1: इसमें? बहुत से डिजिटल इंस्टॉलेशंस भी हैं, एक बड़ा सा साइक्लोरामा है जो कि आपको पूरे जीवन की यात्रा, जो जीवन गाथा है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और मानव के आने तक, पूरा ही उसमें दर्शाया गया है। वो 70 फीट का एक साइक्लोरामा है डिजिटल।
0: ओके।
1: और बाकी आपके डायनासोर्स हैं जो सब एनिमेटेड हैं, रोबोटाइज्ड हैं, तो आपको सजीव लगेंगे। और बच्चों के लिए ये दीर्घा हमारे पास पहले से थी, लेकिन ये बहुत पुरानी हो गई थी, तो इसको हम लोगों ने रिनोवेट किया है ऐसे कह सकते हैं, और ये दर्शकों के लिए फिर से खुल गई है।
0: अच्छा, इसमें VR और 3D जैसी आधुनिक तकनीक भी है?
1: 3D फिल्म तो हम लोग अलग से दिखाते हैं, वो भी सुविधा हमारे पास है, और हमारे एक VR थिएटर भी है जिसमें आप स्पेस यात्रा कर सकते हैं। तो जितने लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं वो सब सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये जो हमारी दीर्घा है प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी, इसमें एनिमेटेड मॉडल्स हैं, और एक हम लोगों ने आइस एज डायोरामा बनाया है कि वहां पे आपको जाने से ऐसा लगेगा कि आप आइस एज जो कि 50,000 या 60,000 पहले जो ठंड और ऐसा आभास होता था, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आइस एज में पहुंच गए हैं। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर के और लास्ट तक ये दिल्ली इसको डिपिक्ट करती है, इसको दर्शाती है, दिखाती है।
0: अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए कोई खास व्यवस्था की गई है कुछ?
1: स्कूल के बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं तो एक गाइडेड टूर हम लोग अरेंज करते हैं उनके लिए, तो ताकि बच्चे इवोल्यूशन को और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को, ये सब जो चीजें हैं उसको डिमोन्स्ट्रेशन के जरिए देख सकें। और डिस्काउंटेड टिकट भी है स्कूल ग्रुप्स के लिए। जी जी।
0: अच्छा अच्छा, टाइमिंग क्या है सर?
1: सर हमारा म्यूजियम 9:30 to 6 है, ओपन रहता है, और मतलब टिकट तो थोड़ा 5:15 तक मिलता है, तो 9:30 to 6 हमारा टाइमिंग है। हमारा ये भारत मंडपम गेट नंबर 4 के पास हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। जी, ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद हमारा एक जो पेरेंट बॉडी है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंदर।

0: में है
1: जी। और
0: जी।
1: सबसे नजदीकी अगर हम मेट्रो की बात करें, मेट्रो स्टेशन, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है।
0: जी सुप्रीम कोर्ट है और ये इंद्रप्रस्था दोनों के बीच में है ये, तो
1: अच्छा, ओके।
0: वैसे आने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सीधा इस हाथ में आता है तो सुप्रीम कोर्ट से आने में सुविधा होती है, और जाने के समय में विजिटर इंद्रप्रस्था वाला मेट्रो ले लेते हैं।
1: अच्छा, बंद बंद कब होता है अंसारी जी, आम पब्लिक के लिए?
0: ये बंद नहीं है, ये तो हम लोग ओपन है पूरे दिन, मतलब पूरे साल ये हमारा सेंटर ओपन रहता है, बस 2 दिन होली दिवाली के दिन बंद रहता है,
1: अच्छा, ओके।
0: बाकी जी जी
1: मतलब संडे टू
0: बाकी हाँ
1: मंडे की बात हम करें, अगर संडे मंडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे
0: हाँ पूरे
1: फ्राइडे
0: 7 दिन
1: सैटरडे
0: खुला
1: संडे
0: हुआ
1: सब
0: है
1: जगह,
0: जी जी
1: ओके। तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आप लोग ने सुन लिया एम अंसारी जी से, जो कि वहां पर प्रिंसिपल क्यूरेटर हैं, उन्होंने हमें ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी।
0: थैंक यू सर।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप बना सकते हैं और जा सकते हैं यहां पर देखने। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब जाएंगे अपने बच्चों के साथ, या आप बड़े भी जब अकेले जाएंगे, तो आप याद रखिए कि करोड़ों साल पुराने जमाने में आप पहुंच जाएंगे। आपने अभी बस सुना है डायनासोर कैसे चला करते थे, कैसे आवाज होती थी, लेकिन यहाँ डिजिटल डायनासोर बिल्कुल लगेगा कि जीवित है, और आप देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

दोस्तों गीतकार आनंद बख्शी ने तो 5 मौसम के बारे में बताए, लेकिन हमारे स्टूडियो में पूरे 6 मौसम होते हैं। जी हाँ, मनोरंजन का मौसम 24 घंटे बना रहता है, और इसीलिए हम एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेकर आते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जैसे कि अभी 6 बजे से आपके साथ जुड़ जाएंगी भगवती लेकर मैसेज मसाला मिक्स, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। इस भीषण बाढ़ में 7 लोगों की मौत हुई है। नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने से बिहार में आई अचानक बाढ़ और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें से 2500 स्वीकृति पत्र एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। ईश्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए, ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उल नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और दुनिया भर में रह रहे केरलमवासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

जिंदगी के सफर में ना हम अक्सर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं. कोई प्रमोशन मिले, कोई बड़ा अवार्ड मिले, किसी एग्जाम में टॉप करें, तभी लगता है कि हाँ आज कुछ हासिल किया. लेकिन जरा सोचिए, क्या हर अचीवमेंट का बड़ा होना इतना जरूरी है? कभी पहली बार किसी डर का सामना कर लेना भी अचीवमेंट होता है, नहीं? कभी किसी मुश्किल काम को बिना किसी की मदद के पूरा कर लेना भी अचीवमेंट होता है. कभी अपने लिए समय निकाल लेना और किसी को माफ कर देना, या बस एक मुश्किल दिन को मुस्कुराते हुए पार कर जाना भी अचीवमेंट होता है. तो आज जो है MMM में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी जीतों की जिन पर हमें खुद पर गर्व हुआ. हमारा आज का सवाल है, आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी छोटी अचीवमेंट है जिसकी वजह से आपको आज भी खुद पर गर्व होता है? तो चलिए आज बड़ी सफलता की नहीं बल्कि छोटी सी जीत की बड़ी सी खुशी सेलिब्रेट करते हैं. छोटी सी जीत की बहुत बड़ी वाली खुशी मनाते हैं. 9868107070 है नंबर. 9868107070 है नंबर जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी छोटी सी उपलब्धि थी पर उसकी वजह से जो है आपको अपने पर जो है बहुत गर्व महसूस होता है, आज भी आप जो है प्राउड फील करते हैं. शेयर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए. भगवती है आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में और इंतजार कर रही है आपके मैसेजेस का जो हो इस विषय पर, इस टॉपिक पर. यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड.

हितेंद्र दास आसम से कहते हैं गुड इवनिंग आरजे जी। गुड इवनिंग हितेंद्र जी। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं मुझे पहली बार जब खाना बनाना आया था, जब मैं घर में अकेला था तो मैंने अपने लिए खाना बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था पर बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। ऐसी चीज़ें तो मिलता है ना कॉन्फिडेंस, जब कभी अपने आप से जो है ना किसी चीज़ की कोशिश कर डालते हैं, उस काम को कर डालते हैं और हिम्मत करके जो है, तो ऐसी बातों से अपने ऊपर जो है विश्वास और मजबूत होता है। रजत मयूर विहार फेज़ वन से कहते हैं मैं 11th क्लास में था जब 2014 में, तब मैंने अकेले महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और वो भी सोलो ट्रिप पर खुद की पॉकेट मनी से। क्या बात है, मतलब खुद की पॉकेट मनी के पैसे बचा के, और तब कोई एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। ये मुझे लगता है कि छोटी बट बड़ी अचीवमेंट है। नहीं रजत, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बिल्कुल ऐसी ही अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं आज। ये है अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, कह रही हैं कि मैं जब 2019 में मैंने जो है 12th क्लास में टॉप किया था तब हमें बहुत गर्व महसूस हुआ था, एंड वैसे तो स्टार्टिंग से अब तक फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुई हूँ, बट जो है उस समय इन्हें और ज़्यादा जो है खुशी और गर्व का एहसास हुआ। ये तो बड़ी अचीवमेंट है अंशी

तो आप सब भी बताइए ना, ऐसी कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी अचीवमेंट जिस पर आपको गर्व होता है, जिसे हम आज यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। 9681070707 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर। और मैं हूँ भगवती।

अकोला महाराष्ट्र से विजेंद्र हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग और मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं तो फिर कोई ऐसी बात भी तो हमें बताइए ना जो आपकी छोटी सी अचीवमेंट हो पर जिसके बारे में सोचकर आपको बहुत अच्छा लगता हो आज भी। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की छोटी अचीवमेंट वो है कि कुछ साल पहले तक खेती किसानी जो है उसको करने में बहुत साल जो है असफल रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से सफल हो रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी की छोटी उपलब्धि है और इस बात पर मुझे गर्व भी है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस काम में जो है ना बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। मतलब कि अपनी तरह का एक पैशन चाहिए इसके लिए भी, तभी आप सफल हो पाते हैं इसमें। अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं मेरी छोटी सी उपलब्धि काव्य लेखन सीखा सन 2020 में और इससे वरिष्ठ उम्र में व्यस्त रहता हूँ, जिससे मैं खुश हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। कोई जो है मेरे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि 70 वर्ष में फिट, फाइन, हेल्दी, स्मार्ट दिखता हूँ। इसका श्रेय जो है ईश्वर को देता हूँ। अनिल शर्मा है सरिता विहार से। एंड आई एम श्योर सर आप ज़रूर बहुत हैंडसम, बहुत फिट, बहुत स्मार्ट दिखते होंगे, इतनी प्यारी प्यारी मैसेजेस करते हैं आप। गुड इवनिंग सर। किशन मंजनी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हैं, कह रहे हैं कि आज से 35 साल पहले हमने आपका मैसेज ना मुझे बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसा पढ़ रही हूँ, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो क्षमा चाहूँगी और चाहूँगी कि आप उसे जो है बिल्कुल ठीक करके बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब कि क्लैरिटी के साथ दोबारा मुझे भेजें। कहते हैं कि हमने युवाओं आई थिंक युवाणी केंद्र कहना चाह रहे हैं, युवाओं के केंद्र से कह रहे हैं, ऑडिशन दिया था और उसके बाद जो है मैं कुछ प्रोग्राम शायद पेश किया, उसके बारे में कह रहे हैं और कह रहे हैं यही हमारी छोटी सी अचीवमेंट है और आज भी इस पर हमें गर्व है। ये मैसेज ना आप अगर प्लीज़ प्लीज़ दोबारा हमें लिख भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम इसे बहुत क्लियरली अपने सारे लिसनर्स तक पहुंचा पाएंगे। इकबाल सिंह छाबड़ा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, उम्र 66 साल। लॉकडाउन के दौरान मैंने जुम्बा सीखा और एरोबिक सीखा और म्यूज़िक के साथ काफ़ी प्रैक्टिस की। क्या बात है, सुपर। कहते अब अपने 10-12 दोस्तों के साथ सुबह नदी के किनारे सबको डांस करवाता हूँ और एंजॉय करता हूँ, बहुत आनंद आता है। ऐसा सब कुछ करके मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है। जी सलाम है आपको, हमारा बिग सल्यूट। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स भगवती के साथ और आज भगवती आपसे जानना चाह रही है कि कोई छोटी सी उपलब्धि आपकी और जिस पर आपको आज भी बहुत गर्व होता है। हम ऐसी छोटी छोटी उपलब्धियों को आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं उन्हें हम।

0: गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं भगवती। मनोहरलाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कहते हैं कि 2018 में मुझे एक दोस्त मिला पम्मी कपूर। मेरा बिजनेस काम धंधा जो है कमज़ोर पड़ गया था, मगर उन्होंने मुझे कुछ गुर सिखाए, नसीहत दी और उनकी नसीहत मेरे काम आई और मेरा काम धंधा फिर से चल उठा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व है और आज हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं और दोनों ही जो है आकाशवाणी रेनबो के फैन हैं। जानकर अच्छा लगा हमें और अच्छा लगा कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपकी इस तरह से मदद करते हैं और आपको उन पर जो है गर्व होता है। साथ में हमारे साथ शेयर कीजिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अपनी अचीवमेंट जो आपने कुछ किया हो ऐसा जिस पर आपको गर्व होता हो। ये हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ लिसनर्स जो है वो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, किस टॉपिक पर उन्हें मैसेज करना है। तो मतलब गलती किसकी है इसमें? आपने शुरू से ट्यून इन नहीं किया ना, आपने सुना नहीं ना शुरू से हमें, इसीलिए आपको पता नहीं चला आज का टॉपिक क्या है। तो आज भगवती जानना चाह रही है आपसे कि आपकी कोई भी छोटी सी अचीवमेंट हो ऐसी जिस पर कि आप आज भी गर्वान्वित महसूस करते हो, प्राउड फील करते हो, उसके बारे में सोचकर आपको अच्छा लगता हो, वो सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, कर देंगे हम सबके साथ शेयर, वो तो हमारा काम है ना। जोगिंदर सिंह हैं जम्मू कश्मीर से, कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आज का, अच्छा देखिए ये कह रहे हैं ना विषय क्या है आज का, भी अभी बताया हमने विषय, अब तो आपको पता चल गया होगा। देन सौरभ अनिचा गाजियाबाद से कह रहे हैं गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक। आज आप लेट क्यों हो गए सौरभ जी? और दिन तो आप जो है जस्ट प्रोग्राम शुरू होते ही बिल्कुल 6 बजे जो आपका मैसेज पहुंच जाता है हम तक, आज इतना लेट क्यों पहुंचा? आरिफ रबानी फ्रॉम जिला हापुड़ कहते हैं मैं आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी किसी को माफ़ किया था केवल उसकी खुशी के लिए और वो थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी। किसी गलतफहमी की वजह से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया जो 3 साल से था। उसने लास्ट टाइम जाते हुए कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझको कोई बद्दुआ मत देना, और मैंने भी उसकी खुशी के लिए उसको माफ़ कर दिया। मतलब किसी को माफ़ कर देने से बड़ा जो है कुछ नहीं हो सकता, खुद को भी राहत मिलती है।

सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कह रहे हैं कि हमारे जीवन की उपलब्धि है हम संतोषी, सहनशील और साफ सफाई से रहते हैं। बिल्कुल जी, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है।

नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। और कहते हैं हमें अपने आप पर प्राउड है क्योंकि हमारी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हम आर्मी से डिस्क्वालीफाई हो गए तो डैडी ने कहा कि बेटा खेती कर लो, तो तब से लेकर अब तक जो है हम किसान बने हुए हैं और देश में जो है अनाज भंडारण दे रहे हैं। दैट इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। ये तो बड़ी उपलब्धि है कि आप जो है सबको अनाज दे रहे हैं, सबके लिए अनाज उगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है किशन वंजनी, नीलम स्वाति और केशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। कहते हैं कि आज के टॉपिक पर हम यही कहना चाहते हैं कि आज से 35 साल पहले हमने भिवानी केंद्र से मनभावन और बाहर कार्यक्रम पेश किया था और यही हमारी छोटी सी उपलब्धि है जिस पर हमें गर्व है। दैट्स अमेजिंग। रोहित खेड़ा दिल्ली 9 से कहते हैं छोटी बड़ी का तो पता नहीं, जो मिलता है प्यार से मिलता है इतना काफ़ी है जीवन में, हमसे सभी खुश रहें काफ़ी है। ये मतलब बहुत बड़ी अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत एक मतलब प्यारा सा अनुभव होता है जब सब आपसे प्यार से मिलते हैं। क्योंकि क्यों मिलते हैं आपसे सब प्यार से? क्योंकि आप उनसे इतना प्यार से मिलते हैं ना। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती हैं मैंने बीए पास इंग्लिश मीडियम में किया था जिसमें हिस्ट्री और पॉल साइंस जो है इंग्लिश मीडियम में थे, पर क्लास में टीचर हिंदी में पढ़ाती थी क्योंकि सारी लड़कियां हिंदी मीडियम की थी, तो मैं हिंदी मीडियम की हिस्ट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखती थी और मेरी हिस्ट्री की टीचर जो है बहुत इंप्रेस हुई और कहा कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आएगी अगर ऐसे ही आंसर्स लिखोगे फाइनल एग्जाम्स में तो। और फाइनल ईयर में मेरी हिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन आई थी। दैट्स सो कूल। हीरामणि वर्मा ददरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कहते हैं मेरी छोटी सी उपलब्धि है मैं 5वीं क्लास में संकुल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बेस्ट प्लेयर बन के उभरा था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इनामी राशि व पदक दिए थे जो आज भी याद है और उन्हें जो है सहेज कर रखा हूं। मतलब ऐसी ही तो कुछ यादें होती है ना जो हमेशा हमेशा दिल के करीब रहती है और आप जो है बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर।

कपिल हैं और टैम्पा फ्लोरिडा से कहते हैं कि मैंने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर ऐप बनाया है एआई की मदद से और मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। जब आप अपने आप से कुछ करते हैं ना खुद से तो उसकी खुशी तो अलग ही होती है।

0: रवि जोशी मेरठ से कहते हैं कि इन्हें गाने इतने पसंद आ रहे हैं, आवाज पसंद आ रही है कि ये विषय ही भूल गए। मतलब अच्छी बात है ये कहने की जगह कि मैं विषय सुनना भूल गया, आप कह रहे हैं कि आपको विषय का ख्याल ही नहीं रहा। तो बताए देते हैं अगला मैसेज जरूर जरूर आना चाहिए इसी टॉपिक पर। हम जानना चाह रहे हैं आपकी कोई छोटी सी अचीवमेंट। हर रोज हमारी कोई ना कोई छोटी उपलब्धि होती है जिसे हम उपलब्धि मानने से कई बार मना कर देते हैं, और कई बार जो है हम ऐसी छोटी उपलब्धियों पर जो है गर्व भी महसूस करते हैं। कई सारी जो हमें पिछले मतलब जो गुजरे हुए समय की जो हम याद करते हैं, वो टाइम याद करते हैं, तो फिर हमें कुछ बातें याद आती हैं और हमें सोचकर अपने आप पर जो है गर्व महसूस होता है कि अच्छा हम ऐसा कर पाए थे, हमने ये किया था। तो ऐसी ही किसी बात को आपको शेयर करना है हमारे साथ और हम उसे शेयर कर डालेंगे सबके साथ। आप टाइप कर रहे हैं कुछ एंड आई एम वेरी श्योर कि जरूर जो मैंने पूछा है उसी का जवाब टाइप कर रहे होंगे।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: ये मैसेज है भुवनेश का, अशोक विहार दिल्ली से कह रहे हैं कि once I had sent a message to, इन्होंने मैसेज भेजा था अपने फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को, उनको उनके बर्थडे पर विश करते हुए इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर उन्होंने इनके मैसेज का जवाब भी दिया और इन्हें थैंक्स भी कहा। और ये कहते हैं कि ये इनकी बहुत छोटी सी अचीवमेंट है जिस पर इन्हें जो है गर्व होता है, खुशी होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है ना कि जिनके आप फ़ैन होते हैं, अगर आप उन्हें कोई मैसेज करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है वहाँ से, तो उसमें जो खुशी होती है ना, उसका तो मतलब कई तरह की उनसे जो है खुशियों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये है विजेंद्र अकोला महाराष्ट्र से, कहते हैं कि इन्हें गाने पसंद आ रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है अकोला में और इसलिए मैं थोड़ा नाराज़ हूँ। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, रोज़ बारिश आती थी। कहते हैं मैं किसान हूँ, आपकी नाराज़गी समझ आती है, इंद्रदेव से नाराज़गी है ना आपकी। ये मैसेज हर्षवर्धन पांडे का है, ज़िला पन्ना मध्य प्रदेश से, कहते हैं कि मेरी उपलब्धि ये है कि मैं कंप्यूटर चलाना जो है जानता हूँ और समय मिलता है तो मैं और भी लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा देता हूँ और इससे मुझे अपने जीवन में बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल जब भी हम ना किसी बिल्कुल सेल्फलेसली जो है किसी स्वार्थ के बिना किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। एक अलग तरह का संतोष होता है, एक अलग तरह की सुकून की फीलिंग होती है वो। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स भगवती के साथ।

0: नीता अमरावती से कहती हैं कि मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भी आपके मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। कहते जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, लेकिन कुछ साल बाद घर के हालात ख़राब होने के कारण मैंने उनको स्कूल से निकाल के मराठी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दी उनकी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे गर्व है कि उन्होंने मराठी मीडियम से जो है पढ़ा और बच्चों ने इंजीनियरिंग पूरी की। एक बच्चा जो है वो बाहर से जो है अब्रॉड पर है और वहाँ से उसने MS पूरा किया है। और कहती हैं कि लड़की इंजीनियरिंग करके जो है अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, तो मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर। बिल्कुल, जो बच्चों की उपलब्धियां होती है ना, कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी होती हैं, तो गर्व करना तो बनता है ना उस पर। ये है प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से, कहते हैं कि जो है मैं अपने जीवन में कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बेटी ने किया, उसने खूब पढ़कर जो है उसकी जॉब लग गई, कड़कड़ूमा कोर्ट में सरकारी जॉब है। और कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले उसकी शादी भी की है इन्होंने, तो इन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। बेटी का नाम कह रहे हैं कि पारुल है। तो वही जैसे हमने कहा कि गर्व करना तो बनता है ना, और ऐसा नहीं है कि अकेली उनकी मेहनत है, उसमें आपकी मेहनत, आपका प्रोत्साहन भी तो है। कहते हैं, दिस इज़ अमन प्रतीक दराड फ्रॉम नोएडा, कहते हैं मैंने अभी तक 5 रोड साइड एक्सीडेंट विक्टिम्स को टाइमली अपने कार में हॉस्पिटल पहुंचाया है, और कहते हैं कि इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अ बिग सल्यूट टू यू सर, क्योंकि इससे अच्छा काम, मतलब इससे बड़ा काम और क्या ही हो सकता है।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: गुड्डू धाकर उज्जैन जिले के बेडावन गांव से कहते हैं, मेरा सपना एयरफोर्स में जाने का था पर परिस्थितिवश मैं हलवाई बन गया और आज जब मुझे लोग कहते हैं कि मैं जलेबी और समोसे बहुत शानदार बनाता हूं, इस उपलब्धि पर मैं खुश हूं। बिल्कुल खुशी की बात है ये, क्योंकि उसे खाकर जो है लोगों को कितनी खुशी मिलती होगी, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, है ना।
1: खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू।
0: कविता देवभूमि उत्तराखंड से कहती हैं कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। धरती का स्वर्ग है हमारी देवभूमि। बिल्कुल जी, पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपके इस कथन से।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आज के आपके इतने सारे मैसेजेस पढ़कर एक बात तय है, उन मैसेजेस से जो लगता है कि अचीवमेंट का साइज छोटा हो सकता है लेकिन उससे मिलने वाली खुशी कभी छोटी नहीं होती। हो सकता है कि आपकी उपलब्धि किसी ट्रॉफी में ना हो, किसी सर्टिफिकेट पर आपका नाम ना हो, शायद किसी ने आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी ना किया हो, लेकिन अगर किसी एक पल में आपने खुद से कहा था हाँ मुझे खुद पर गर्व है, तो बस वही आपकी जीत है। और इसी के साथ आपकी दोस्त भगवती लेती है आपसे अनुमति, घंटे भर बाद फिर होगी आपसे मुलाकात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम

0: And this message I am receiving all the way from Panchkula, from Nidhi. And she says, thank you for sharing such amazing, fascinating information about Northeast India. It was such a wonder. I mean, it was wonderful to learn more about the beauty and diversity of the incredible region. Thank you so much, Nidhi. You've been so sweet and writing such lovely words of appreciation. They really, really mean a lot to us and, of course, for tuning in. This is your own station. You can absolutely find the kind of vibrancy in the music as well as in the content right here on your very own FM Rainbow, Akashwani's most happening station, that is. And I have another message. This is from Colonel Gupta from Chandigarh and says, good evening, Jyoti. I started my military career from Shillong, followed by Mizoram, Nagaland later in life. So I'm sure you must have had a great, great time, you know, serving in the northeast of our beautiful country. Yes. Thank you, my dear, dear listeners. I do hope that you enjoyed this edition of the Northeast Hues with me, Jyoti Alhawat. And we traversed from Arunachal to Tripura, Himalayas of Brahmaputra to Brahmaputra, the hills of Meghalaya to the valleys of Manipur, the colorful shoals of Nagaland to the silk of Assam. The Northeast reminds us that India's diversity is not a collection of separate stories. It is one magnificent tapestry, yes. And each state contributes a thread, a color. An artisan contributes a pattern and they create the fabric of India. Yes, as they say, threads are weak, but when they stand alone, but when together, they become a fabric strong enough to last for generation. I do hope that you enjoyed this edition of Northeast Hues with me, Jyoti Alhawat. I'm going to take leave of you as my dear, dear, you know, friend Bhagwati is in. Now, Bhagwati, hello.
1: Hi.
0: Namaskar. Swagat hai aapka. अगले कार्यक्रम के साथ जो कि है अपने शब्दों में बोलिए म्यूजिक मस्ती. सो आई एम गोना हैंड इट ओवर टू माय डियर फ्रेंड भगवती. स्टे विद अस डियर लिसनर्स एज दिस इज योर ओन स्टेशन एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार.
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती.
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है. 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता.
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी.
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है.
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार.

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य में यूरेनियम खनन और यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित करने का विरोध करते हुए आज एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया। ईश्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए, ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और दुनिया भर में रह रहे केरलमवासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार। भगवती करती है स्वागत आपका म्यूजिक मस्ती में, पूरी मस्ती के साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या

0: बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती। और म्यूजिक मस्ती में साथ है आपका और भगवती का एक और मस्ती भरा ट्रैक प्ले कर रही हूँ आपके लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी

0: सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

अभी आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। बस एक और ट्रैक प्ले करूंगी आपके लिए, इतना ही समय रह गया है। और इसके बाद से यानी कि 9 बजे से प्रियंका त्रिपाठी आपके साथ रहेंगी आपकी याद आती रही प्रोग्राम लेकर। 10 बजे से सुनिएगा ज्योति अहलावत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रेनबो क्लासिक। और 11 बजे से रंगे महफिल लेकर एक बार फिर आपके साथ होंगी प्रियंका त्रिपाठी। और अब समय आपकी दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति। नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर।

मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। ईश्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए, यह भारत के संगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। बीजिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद उल मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देशभर में केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। घरों और मंदिरों में फूलों से बनाए गए पारंपरिक ओडुपुलक्कम सजाए गए और विशेष पूजा अर्चना की गई। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद 4थे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट और 229 रन बनाए। मैच में भारत की पकड़ मजबूत। AIR FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

हेलो यस मैं आ गई आपका फेवरेट 90s के सॉन्ग्स लेकर 90s की बातें लेकर और 90s की फिल्मों के कुछ पटाखेदार कुछ धमाकेदार कुछ खास खास खास खास खास पॉइंट्स लेकर लेकिन उन्हें डिस्कस करने के बाद में क्योंकि 90s के जो सॉन्ग्स हैं ना जब आप उनको सुनने रखते हो ना तो आपके जहन में फिर कुछ नहीं आता है जो भी आता है सब 90s के सॉन्ग्स आते हैं। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर और आपकी याद आती रही मतलब किसकी सोचिए आप और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए ये सॉन्ग और इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और अगर आपको

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पता है कभी कभी जब आप ड्राइव करते हो और सामने, मतलब वैसे तो फिलहाल बारिश का सीजन भी है ये, और बारिश के सीजन में जब आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से, मतलब आप सफर करो और बारिश शुरू हो जाए, आपकी गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें गिरने लगे, तो जस्ट इमेजिन कि आपके जहन में ना सबसे पहले कौन से गाने याद आते हैं। मतलब अभी आप नोटिस कीजिएगा कि कौन सा सॉन्ग आपके जहन में सबसे पहले आता है, रेन से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड। आई एम श्योर देयर शुड बी 90s, यस, क्योंकि ना 90s की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना वो है उसका मिलेडियस होना, यस। मतलब कोई भी फिल्म आप उसकी उठा लीजिए, कुछ गिरी चुनी अगर आप छोड़ दें, तो दे ऑल आर द म्यूजिकल हिट्स। और इतनी खूबसूरत जो म्यूजिक डायरेक्टर रह जाए, आप नदीम श्रवण जी की बात कर लीजिए, ए आर रहमान जी की बात कर लीजिए, जतिन ललित जी की बात कर लीजिए, अनु मलिक की बात कर लीजिए, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर नोज क्या चाहिए ऑडियंस को, दे नोज वेरी वेल, यस। इसीलिए 90s के जितने भी सॉन्ग हैं, दे आर सो मेलोडियस सॉन्ग्स। मतलब आप कहो ना कि एक तरीके से वो मेलोडी गोल्ड है तो गलत नहीं होगा। और वहीं से उस गोल्ड में से एक और निकाला है हमने आपके लिए, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, आपकी याद आती रही है। एंड द सॉन्ग इज़

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, प्रोग्राम आपका चल रहा है, आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और बात हम 90s के कर रहे थे कि व्हाट इज अ बिग प्लस पॉइंट ऑफ द 90s म्यूजिक, 90s बॉलीवुड फिल्म्स, ऑफ कोर्स द 90s एरा, ऑफ कोर्स। देखिए, बाकी तो खैर छोड़िए जो हम इंटरनेशनल मूवीज हैं, बट अगर हम इंडियन मूवीज की बात करें, अपने बॉलीवुड की बात करें, अपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो 90s में ना एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली

इमोशनल कनेक्शन. यस, एक इमोशनल कनेक्शन मतलब जो डायरेक्टर्स थे तब, जो आर्टिस्ट थे, दे अंडरस्टैंड द ऑडियंस मूड. ऑफ कोर्स इतनी खूबसूरत सी इनोसेंट सी लव स्टोरीज वो क्रिएट किया करते थे, इतनी इनोसेंट सी लव स्टोरीज वो बनाया करते थे, जस्ट टच द हार्ट ऑफ कोर्स. और उसी दौर में अगर आपको याद हो 1998 में एक फिल्म आई थी, यू नो व्हाट, कुछ कुछ होता है, एंड द टाइटल सॉन्ग ऑफ दिस मूवी सुपर डुपर हिट ऑफ कोर्स. और फिल्म का तो फिर क्या ही कहिए, मतलब उस दौर में तो हर कोई अपने आप को टीना और राहुल अंजलि समझ रहा था. एंजॉय दिस वन आपके अपने रेडियो स्टेशन पर. टाइटल सॉन्ग ऑफ द मूवी कुछ कुछ होता है.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

और वक्त हो चुका है मेरे जाने का। आप अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी म्यूजिक है जो कि आएंगे। ऑफ कोर्स वेस्टर्न म्यूजिक आएगा आपके पास, एक से बढ़कर एक उसमें वेस्टर्न सॉन्ग्स होंगे जो कि आपके दिल को टच कर जाएंगे। यस, फिलहाल एक और सॉन्ग है, मैं आपको उसी सॉन्ग के साथ छोड़ के जा रही हूँ। 11 बजे फिर से मिलेंगे आपसे रंगे महफिल में। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेडमो

0: Yes, dear listeners, time for me to take a short little break. But stay with us because we have lots more messages and, of course, music. You want to send across a message? It's never too late. 9868107070 is the number. 9868107070. Stay with me. I'll be right back after this short little break.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. सेल
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात.
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही. रेनबो पर रात 9 बजे.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार।

और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत कर नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू को प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने

धार्मिक श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देशभर में केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। घरों और मंदिरों में फूलों से बनाए गए पारंपरिक उडुपुक्कलम सजाए गए और विशेष पूजा अर्चना की गई। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है। और हंगरी में वीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन में भारत के वी चौटरानी और वेलमन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में कल दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में आमना सामना होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंग महफिल, और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जी जनाब, अगर जिंदगी में कभी आपको कोई पड़ाव ऐसा आए जिसमें आपको लगे कि गम ज्यादा है, आंखों में नमी थोड़ी बढ़ गई है, माथे पर शिकन थोड़ी गहरी हो गई है, सांस जरा भारी हो गई है, तो घबराइएगा मत। हमेशा याद रखिएगा कि हर शाम के बाद सुबह जरूर होती है, और उसी सुबह के सहारे, उसी शहर के सहारे वो गम की शाम काटी जा सकती है, है ना? प्रोग्राम रंगे महफिल है, और इस प्रोग्राम में ये रंग जो हम घोल रहे हैं जगजीत साहब की आवाज़ में, इस गज़ल का गौर फरमाइए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं।

0: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

छपी थी जिस की गजल में जमाने भर की खुशी, छपी थी जिसकी गजल में जमाने भर की खुशी, खुद उसकी जिस्त का नामा अजाब से उभरा।

तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, लौट कर हम जरूर आएंगे। चलिए जनाब, वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। ख्याल रखिएगा अपना। लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन में पेंचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय

बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज के इस जीरो आवर शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुमार सानू जी की आवाज से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसके बोल हैं, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 12:16 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने।

0: सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: 12:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। जीरो आवर शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आज आपका दोस्त अर्चित। तो आइए एक और बेहतरीन से गाने को सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 1 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित 500 लोग लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन के पेचिंग में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वैक्स ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:04 हो चुके हैं और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 1:39 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाओ, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन के पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-14-28-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमावार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रण

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:04 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए ना बने। और आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन।
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

2:31 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अलचित के साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

2:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए न बने। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 3 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनः निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन में पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0008618514284905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रण करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:04 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बस दूर, भाई बस दूर। अब

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ఏక పేరైనా యా గోళా బోల్లా యా చతుర బోల్లా గా
1: ఎక చతుర నార్.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत।

0: मकसद की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

चार बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 750 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रेवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन में पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00861851429405 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत और सहायता मिल सके। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंप दिए हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय

चेट रानी और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

Goody goody. Goody goody. Goody goody.

हाथ का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रातः के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आए भीषण बाढ़ में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 750 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन में पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00861854249005 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत और सहायता मिल सके। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंप दिए हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन निर्धारित है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका फॉल ऑन के बाद आज 5वें दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलेगा। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।